0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
5: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीने, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन।

0: दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम वन भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम वन की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम वन इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
4: हम बहुत खुश है हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बना के।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं।

0: सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा। प्रत्यक्ष चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्स इंडियाज ग्रोइंग प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम, मीट स्काईरूट एरोस्पेस फाउंडर्स आफ्टर विक्रम 1 सक्सेस। Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about their journey and insights into their future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
3: पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
2: बिहार एंड असम गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ केसेस एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट ओवर नीट एग्जामिनेशन। Bihar's Home Department assured that it will immediately initiate the legal process

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
7: गुड मॉर्निंग सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। दोस्तों एक बहुत ही प्यारी सी सुबह लेकर आई है, एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और हर दिन की सुबह बहुत खास होती है, आपको भी पता है। हर दिन की मॉर्निंग बहुत ही स्पेशल होती है और हर दिन यहाँ पर मेरी और आपकी बातचीत होती है। बातों का ये जो सिलसिला है, ये जो रावता है, ये और भी अमेजिंग हो जाता है जब यहाँ पर मैं होता हूँ, आप होते हैं और ये प्यारी सी वाइव होती है। श्रोताओं आपको बता दें सुबह के 8:21 हो रहे हैं हमारे स्टेशन की घड़ी में और इस वक्त आप आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। दोस्तों आज दिन बहुत खूबसूरत है, मंगलवार का, और आज के दिन की आपको हम ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ आपके लिए अच्छी अच्छी बातें भी यहाँ पर लेकर आ गए हैं और कुछ आप भी अच्छी अच्छी बातें पहुँचाते हैं, तो ये सुबह और ये दिन दोनों ही खूबसूरत हो जाते हैं आपकी बातों से। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। सच में यार आप लोगों की वजह से इतना खूबसूरत जो एक माहौल बनता है ना, वाकई में बहुत ही मज़ा आ जाता है। और मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ इस वाले घंटे का कि यार कब 8 बजेंगे, कब ये सुबह सुबह की वाइब मुझे महसूस होगी और कब हम आपके पास आकर आपसे बातचीत करेंगे। श्रोताओं कहते हैं सफलता की खूबसूरती बात जो होती है ना, वो आपकी मेहनत से होती है। और कहते हैं सफलता की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो केवल मेहनत करने वालों के दरवाजों पर दस्तक देती है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए फिर ये जो दस्तक है ना, वो आपके घर पर जल्दी आपको मिलने वाली है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, शुरू हो चुका है आज का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। थोड़ी देर में से लौट कर आएंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आनंद को। 8:22 हो रहे हैं जी, सुप्रभात।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: हाँ मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

श्रोताओं, कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से ही आपकी जो ये सफलता है वो सबसे बड़ी पूंजी बनती है। यस, और जो आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनती है, मैं रिपीट करूंगा, मेहनत, धैर्य और आपका आत्मविश्वास, यही है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी आपकी पूंजी होती है। अगर आपके पास ये है तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। 8:37 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, जहां पर हमारे लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रोताओं, बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आप लोग बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन और बहुत ही कमाल की चीज़ें जो है आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलवार की सुबह है श्रोताओं, बिना किसी देरी के चलिए आइए बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, यानी कि आज बहुत ही खूबसूरत सी ये सुबह है, ट्यूज़डे की मॉर्निंग है, 28 जुलाई है, और आज के दिन के बारे में बात करना तो बनता है। आज का इतिहास 28 जुलाई का क्या कहता है, एक नज़र डालें। चलिए श्रोताओं, बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, और आज का दिन बहुत ही विशेष है, खास करके आज के दिन जो है हर साल 28 अगस्त को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे विस्तार से थोड़ी सी देर में, एंड आपको बता दें आज का दिन और भी तमाम सारी चीज़ों के लिए खास है। आपको बताते चले, सन 1821 में पेरू को स्पेन से जो है आज़ादी मिली थी आज ही के दिन, और आज ही के दिन एक बहुत ही कमाल के कलाकार का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जिनको याद करने का दिन तो बनता है, आज के दिन उनको डेफिनेटली याद करना बनेगा, बिकॉज इन्होंने इतना अच्छा काम भी किया है यार। तो कौन है वो कमाल के सुपरस्टार जिनके मैं बात करने वाला हूँ, जरूर उनके बारे में बात करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत महान इंसान का नाम लेना तो बनता है आज की सुबह। मैं बात कर रहा हूँ सुभग शर्मा जी की, सुभग्य जी, जो 1983 में इनका जन्म हुआ था, भारतीय कलाकार हैं, चित्रकार हैं और बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसके अलावा अनिल जन विजय जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1957 को, हिंदी के कवि, लेखक और जाने माने, एक ऐसा नाम जो डेफिनेटली कोई नहीं भूल सकता, और हिंदी भाषाओं के जो साहित्य अनुवादक रहे वो यही रहे, इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ श्रोताओं। और इसके अलावा एक और नाम जो आज के दिन को बहुत खास बना देता है,

देखो यार, कभी कभी ना गड़बड़ मेरे से हो जाता है, क्योंकि मैं जुलाई अगस्त में ना बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, 28 अगस्त की सुबह है आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी ना फटाफट से पहले पानी पी के आना ही पड़ेगा यार, और थोड़ी सी ना और आंखों को वॉश करने पड़ेगा। कि आनंद प्यारे जागो, हम अगस्त में एंटर हो चुके हैं। बीबी क्या कह रहे हो आप, अभी अगस्त नहीं है, अभी तो जुलाई चल रहा है। बिल्कुल सही कहा, अभी अगस्त आने में बहुत सारा टाइम है, अभी जुलाई चल रहा है। मैं आपको बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ, जुलाई जाने वाला है, अगस्त आने वाला है। अगस्त की एक्साइटमेंट हो रही है, बिकॉज इतने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं अगस्त में, ढेर सारी। मैं अभी लिस्ट भी चेक कर रहा था, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं जो अगस्त में होंगी, लेकिन फिलहाल अभी 28 जुलाई है। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अभी मैं नींद से उठ चुका हूँ। अब आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको सही सही बोलूँगा, बिल्कुल सही सही बोलूँगा जी, आप टेंशन ना लो। अच्छा, हो जाता है यार कभी कभी, हम इंसान हैं, AI थोड़ी है। हाँ, 28 जुलाई है आज, डोंट वरी। अच्छा देखो, मेरे को एक मैसेज आ गया है यहाँ पर। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है, आज क्या हो रहा है, क्या मैं आपके लिए चाय भिजवा दूँ? यार मुझे भी ऐसी लग रहा है, आप भिजवा दो शिखा जी चाय, मुझे लग रहा है शायद आपकी चाय पी के मेरी आंखें खुल जाएं और कुछ अच्छा हो जाए। एनीवे, इन्होंने लिखा है यार, कभी कभी बहुत ही फनी हो जाती है ना चीज़ें, एब्सोल्युटली मैम, कभी कभी सच में बहुत फनी हो जाती है। हाय गुड मॉर्निंग, आज 28 अगस्त नहीं है, आज 28 जुलाई। यार देखो मतलब कितने लोग सुन रहे होते हैं। एक और मैसेज है, आनंद जी प्लीज़ नींद से उठ जाइए प्यारे, आज जो है अगस्त है भाई मेरे। अच्छा, अरे सर आप अगस्त कैसे बोल रहे हो, आज तो जुलाई है। ओ भाई मुझे मारो, क्या ही हो रहा है। हाय गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है। देखो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया ना, मैं उनके मैसेज को पढ़ रहा हूँ। सर आज 28 जुलाई है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आप एक काम कीजिए, पहले ना पानी पी कर आ जाइए। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज आया मेरे पास, ये किसका मैसेज है, गुड मॉर्निंग सर, आज 28 जुलाई है, आज अगस्त नहीं है। आपने सारी बातें सही बताई, लेकिन आपने अगस्त बोल के ना एकदम दिल पे छुरियां चला दी हैं, मेरे को झटका लग गया। ओ भाई मुझे मारो, ये क्या हो रहा है। अच्छा गाइज, एक काम करते हैं ना, एक गाना सुनते हैं। मैं सच में पानी पी के आता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आंखों को जो है ना अभी ऐसे जगा देने वाली जरूरत है मेरे को। मैं कभी कभी वो टैगलाइन मारता हूँ ना कि उठो आंखें खोलो मेरे यार, पानी लेकर आयो, जरा मुंह तो धो लो मेरे लाल। तो आज मुंह धोने की आवश्यकता ना मुझे है, तो मैं फटाफट से ना मुंह धो के वापस आता हूँ। तब तक आप ये गाना सुनो, बहुत ही अच्छा गाना चला रहा हूँ, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आज 28 जुलाई है भाई, सच में पता चल गया मुझे। एक और मैसेज आ गया, हेलो आनंद गुड मॉर्निंग यार, कैसे हो आप। मैं आई एम वेरी वेरी गुड। ये मैसेज मुझे किन का है, एक मिनट का नाम पढ़ लेता हूँ। जीशान, हाय गुड मॉर्निंग जीशान, थैंक यू सो मच यार। अच्छा चलो, ये गाना सुनते हैं फिर लौट कर आते हैं, ठीक है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

सुप्रभात, वेलकम बैक है। कहाँ हैं आप, कहाँ हैं पाजी? मुझे ये आप बताएंगे मैसेज करके। हाँ जी, 28 जुलाई की सुबह, ये मंगलवार की मॉर्निंग है। जय श्री राम, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट में निकाल दिया है मोहम्मद रफी एंड आशा ताई की आवाजों में। बहुत ही प्यारा ट्रैक है, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। आज मंगलवार मॉर्निंग है। कभी कभी पुराने गाने सुन के ना फ्लैशबैक में पहुंचने का मन करता है, और ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। इसी को सुनते हैं और आपसे कहते हैं, आप भी कहो मेरे साथ मिलके। जियो बिंदास लौट कर आते हैं कुछ खास बातों के साथ।

0: सच में यार, सच में बहुत ही अच्छा गाना, और इसको सुन के मेरे को बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर आपको भी आया होगा। 8:54 हो गए हैं, 8:54 हो रहे हैं जी। आज 28 जुलाई है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह। थैंक यू सो मच इस प्यारी प्यारी माहौल को और भी प्यारा बनाने के लिए, शुक्रिया मेरे भाई। सच में आप लोग बहुत प्यारे मैसेज करते हो, सुन के बड़ा मजा आता है यार। और ये देखो सुबह सुबह बनारस की साड़ियां मेरे पास पहुंचा रहे मोहसिन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड साथ में अपनी आवाज।
1: आरजे आनंद भाई, आपको गुड मॉर्निंग।
0: आपको भी गुड मॉर्निंग सर।
1: मंगलवार की सुबह FM मुरादाबाद में मैं जुड़ गया हूँ, और सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छे गाने

0: के साथ हुई है और आप इतने अच्छे अच्छे जानकारी देते हैं आनंद भाई। जो नई अपडेट आती है तो आप तुरंत ही दे देते हैं, तो उसका लाभ हम लोगों को मिलता है, तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। तो इसीलिए FM मुरादाबाद सभी लोग सुनते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। FM मुरादाबाद RJ आनंद भाई के साथ बजाते रहे। मैं मौसी मंसारी बनारस से आपके प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ। और एक बात और आनंद भाई, ये जो संगीत बजाते हैं चांद तारे फूल शबनम, ये गाना भी बजा दीजिए किसी दिन, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग आनंद भाई।
1: थैंक यू मोहसिन भाई, डेफिनेटली यार नेकी और पूछ ये मैं डेफिनेटली प्ले करूंगा, ऐसी बात है तो। लेकिन सच में यार बहुत मजा आता है आप लोगों से, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप करते हैं, मतलब दिन अच्छा बना देते हैं। और यार ऐसा काम कौन नहीं चाहेगा जहां पर आप जो है इतनी प्यारी बातें करते हैं, इतनी खूबसूरत जो है ये वाइब आप फील करा देते हैं, यार सच में बहुत मजा आता है। दिल से थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और मैसेज आया, हाई गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हो आप, मैं बहुत ही हैंडसम हूँ जी, आप जाके मुझे सोशल मीडिया पे देख सकते हो। एक मैसेज और आया, हाय आनंद कैसे है भाई, मैं अच्छा हूँ जी, ये मुझे महाराष्ट्र से मैसेज आ रहा है। रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं विकी सागर जी, एंड ये बबली अंजान गीता कश्यप, साथ में इनकी भाभी जी जुड़ रही हैं लक्ष्मी जी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी को पहुंचाते हैं। आज सपना चौधरी जी जुड़ी हैं हमारे साथ, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। इसके अलावा एक और मैसेज आया, हाय मॉर्निंग मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। गायत्री नगर से सपना जी आप जुड़ रही हैं, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आनंद सर, आप कैसे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। चमनलाल साहब पुतली घर रोड से मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। एक और मैसेज आ गया है नगर पंचायत पागवाड़ा से, ये सपना भूपी शर्मा जी मेरे साथ जुड़ी हैं, अरे वाह क्या बात है। हाय हेलो नमस्ते आनंद जी, कैसे हालचाल है। इन्होंने एक लाइन लिखी है, नजरें चाहे कितनी भी खुली क्यों ना हो, यदि समझ बंद हो तो सत्य भी दिखाई देना बंद हो जाता है। हाँ यार ये बात तो है, कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने पर समझ आती है। अरे वाह,
2: करनी है हमको खता।
1: देखो मैं कोई खता नहीं करना चाह रहा हूँ, बस इतना कहना चाह रहा हूँ, 9 बजने को है, थोड़ी सी देर में आपको बताते हैं, कल 2 से 2.5 घंटे की बारिश ने ना मुरादाबाद को किस तरीके से जो है पानी पानी कर दिया, मतलब कितनी सारी जगहों पर जल भराव रखा था भाई, और बहुत भयंकर तरीके से वाटर लॉगिंग हुई थी मुरादाबाद में, कहाँ कहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई थी कल उसके बारे में बताऊंगा। यार इतना पानी भर जाता है मुरादाबाद की रोड्स पे, मैंने कल जाके एक्सप्लोर किया यार, कौन कौन से एरिया में पानी भरा हुआ था, मैं डेफिनेटली उस पर बात करूंगा। और अगर आपके आसपास में भी ऐसा कुछ होता है, थोड़ी सी बारिश में पानी खूब सारा भर जाता है, मुझे जरूर बताना आज की सुबह। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है निखत फातिमा का, ये मैसेज मैं लौट कर आता हूँ उसके बाद पढ़ूंगा। फिलहाल ये गाना, कुछ एड ब्रेक, उसके बाद मेरी एंट्री होगी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। वेरी गुड मॉर्निंग, आई विल बी राइट बैक।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
7: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
8: लेकिन सोनिया
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
8: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
9: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आनंद के साथ ही आप लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, 9:05 हो रहे हैं। जी हाँ, ट्यूजडे की सुबह है और फटाफट से बात कर लेते हैं भैया पैसे के बारे में। काहे बात कर रहे हैं अपन? वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भैया भारत में जो है अब आएंगे प्लास्टिक के नोट। आपको पता है 10 और 20 रुपए के जो है नोट से ट्रायल शुरू होने की तैयारी हो गई है। मतलब केंद्र सरकार ने यानी कि RBI ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 10 और 20 रुपए के और साथ ही साथ 100-100 रुपए के जो भैया प्लास्टिक वाले नोट है ना, इनको एक ट्रायल के तौर पर अनुमति दे दी है। अब देखते हैं कि आगे भैया क्या होने वाला है। अच्छा, आप कितनी एक्साइटेड हैं इन पैसों को लेकर के? मतलब ना ये कभी ख़राब हो सकते हैं और भीगने पर भी जो है कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, एंड ये पैसे जो है बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। मतलब ये जो नोट्स होने वाले हैं बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, इसे बताया जा रहा है। क्या इनमें स्पेशलिटी छुपी होगी? सीरियसली आई डोंट नो आइडिया, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में। लेकिन फिलहाल इन नोट के बारे में मेरे तो सिर्फ इमेजिन ही कर रहा हूँ कि कैसे दिखेंगे ये नोट यार। बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ ट्रायल होगा, ये नोट पूरी तरह देश में तुरंत लागू नहीं होंगे। पहले देखा जाएगा कि भारत के मौसम और हालात में ये कितने टिकाऊ हैं, कितने ज़्यादा मतलब जो है स्टेबल हैं। अगर लगता है कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में ख़राब नहीं हो रहे हैं, उसके बाद ही जो है इन्हें अलाउ किया जाएगा। 10, 20 और 100 रुपीज़ के जो है ये नोट टेस्टिंग के लिए जारी होंगे, यानी कि अभी इनको सिर्फ ट्रायल के तौर पर यूज़ किया जाएगा। और भैया क्यों लाए जा रहे हैं ये प्लास्टिक के नोट? देखिए, इसलिए इसके एडवांटेज बहुत सारे बताए जा रहे हैं। सबसे पहले ये ज़्यादा मजबूत होगा, लंबे समय तक चलेगा, जल्दी खराब नहीं हो सकता है, साथ ही साथ लंबे समय में छपाई का खर्चा भी कम हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। एंड कई देशों में इसका पहले से इस्तेमाल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई और कंट्रीज हैं जहां पर इन इस्तेमाल हो रहा है, इन पैसों का जो है वहां पर यूज कर रही है वहां की ऑडियंस, वहां की जनता। अब भारत में भी इस तकनीकी को जो है अपनाया जाएगा, यानी कि पहले इसका ट्रायल होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद ही भैया कंफर्मेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे? आपके मन में एक क्वेश्चन होगा। तो सरकार ने साफ किया है कि भैया कागज़ के नोट चलते रहेंगे, पेपर के नोट के साथ साथ ही प्लास्टिक के नोट के साथ साथ जो हमारे पहले वाला पैसा है वो भी बिल्कुल चालू रहेगा। और भाई साहब, कुछ लोगों का कहना है कि सच में इससे डिजिटल पेमेंट पर कोई असर पड़ेगा, तो अभी कुछ कहना मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी हो सकती है। एंड RBI के मुताबिक UPI प्लस कार्ड एंड कैश, इन तीनों की अलग अलग भूमिका है। मुझे ऐसा लगता है UPI अपना काम करता है, जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, ये अपने अलग अलग रोल प्ले करते हैं, और आपका कैश ऑफकोर्स यार ये तो हमेशा अलग अलग तरीके से आपकी हेल्प करता ही है ना। देखते हैं, बाकी अभी तो ये नोट का ट्रायल होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाले ये पैसे। आप एक्साइटेड हैं देखने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, हर एक शहर की ना अपनी एक USP होती है, अपनी एक स्पेशलिटी होती है। अगर बात करें खाने पीने की, तो कुछ ना कुछ हर एक नुक्कड़ पे चौराहे पे कुछ ना कुछ फेमस होता है, राइट? जैसे बुध बाजार में अगर आप जाओ, बारिश हो रही है तो वहाँ पे भुट्टा खाओ, आए हाय बड़ा मजा आता है। बुध बाजार के भुट्टे बड़े कमाल के होते हैं यार, है ना। पीलीकोठी पे जाओ, वहाँ पे आप दाल खाओ, आए हाय हाय मजा आ जाता है यार, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। चटोरी गली में जाके आप मोमोज ट्राई करो, क्या बात है यार, आए हाय हाय, मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ अमीरों की गली में आ गए यार। अच्छा, आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं इस वक्त, चाहे आप मुझे दिल्ली में सुन रहे हैं, लखनऊ में सुन रहे हैं, या आप मुझे मुंबई में सुन रहे हैं, या आप मुझे कर्नाटक में सुन रहे हैं, या आप कहीं भी आप सुन रहे हैं, किसी भी शहर में आप मुझे सुन रहे हैं, आपके शहर की गली चौराहे नुक्कड़ की कोई ना कोई चीज़ तो बहुत पॉपुलर होगी, है ना। मैं बहुत बड़ी और बहुत पॉपुलर चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह पर कुछ ना कुछ चीज़ें फेमस होती हैं, बट हमें पता नहीं होता है ना, बट वो बहुत ही बढ़िया होती हैं, एकदम रीजनेबल प्राइस पर आपको मिलती हैं, खाने में मज़ा आता है और बड़ी अच्छी मेमोरी भी वहाँ पर बन जाती है। तो आप मुझे बता सकते हो आपके आसपास में कौन सा वो नुक्कड़ है, कौन सा चौराहा है जहाँ की एक चीज़ बहुत फेमस है, और आप बता सकते हो कि यार अगर आप यहाँ पे कभी आए तो डेफिनेटली आप ये चीज़ ट्राई करें। जैसे मैंने कल बुध बाजार में भुट्टे खाए, मेरे को बड़े मजेदार लगे, तो ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी मुझे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकते हैं अपने शहर के बारे में। 9837896896, कौन सी चीज़ है आपके शहर की गली नुक्कड़ पे जो बहुत ज़्यादा चलती है, बिकती है, एंड अक्सर लोग वहाँ पर जाते तो हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं, उनको लगता है नहीं यार वहाँ कुछ खास होगा नहीं, लेकिन जो जाता है वो वाकई में याद रखता है यार। तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो आज की मॉर्निंग। डडरी पिक्चर से निकाल दिया है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रैक आज की सुबह की शुरुआत, यानी कि एक स्टार्ट हो रही है इस अच्छे गाने के साथ, एंड दिस इज माई लास्ट स्टार, कमाल खान साहब की आवाज़। एंजॉय करेंगे इस गाने को, विशाल ददलानी एंड शिखर जे साहब का म्यूजिक है, बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुनते हैं साथ में। आई विल बी राइट बैक।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
8: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक सुन के सच में मजा आ गया। पीकी मूवी का एक गाना था, इसको सुनते हुए जो है हम और आप आगे बढ़े मंगलवार की सुबह। वेलकम बैक है, 9:19 का समय हो रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन। 28 जुलाई की मॉर्निंग है और आप सभी को एक सुपर डुपर वाली गुड मॉर्निंग बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी ने बहुत ही कमाल की बात लिखी है, बहुत प्यारी सी, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ये जिंदगी का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। वाह जी वाह। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए यार, जोरदार तालियां। आप लोग सच में बहुत ही पावरफुल मैसेज करते हो जिसको पढ़ के ना मेरी एनर्जी सुपर डुपर लाउड हो जाती है, और ये लाउडनेस बहुत जरूरी है, ये भौकाल बहुत जरूरी है यार। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कल 2 से 2.5 घंटे की बारिश हुई और उस बारिश ने जो है ना मतलब झमाझम बारिश ने चारों तरफ वाटर लॉगिंग कर दी मुरादाबाद, स्पेशली जो दीनदयाल नगर है मुरादाबाद का, ये रामगंगा फेयर की तरफ भाई बहुत ही पानी भरा हुआ था उधर। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इधर अपने रामलीला ग्राउंड पे तो पानी भर ही जाता है, इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन मैं उधर जहां से भी निकल रहा था उधर पानी भरा हुआ था भाई। मतलब छोटी छोटी गलियां हैं अंदर रामगंगा विहार की तरफ, मैं देख रहा था काफी सारी जगह पर पानी भरा हुआ था, और मतलब इस 2-2.5 घंटे की बारिश ने जो है ना इतना जलभराव कर दिया कि लोगों को परेशानी होने लगी भाई। लोगों की गाड़ियां जो है मतलब वही बीच में बंद हो जा रही है, ज्यादा पानी भर जाता है ऐसे में, कहीं कहीं पे खड्डे भी हैं रोड्स पे, उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हुई हैं कल, मैंने नोटिस किया कि यार मुरादाबाद के कितने सारे ऐसे एरिया जहां पर कितनी वाटर लॉगिंग हो जाती है इतनी सी बारिश में, इतना पानी भर जाता है। और अभी तो बहुत सारी बारिश बची है यार, सोचो अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो मानसून पूरा का पूरा पड़ा हुआ है ना, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे में यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे आपके एरिया में भी कहीं पानी वानी भर जाता है कि जरा आप मुझे बताना जरूर मैसेज करके। कोई अथॉरिटी अगर हमें सुन रही है, कोई ऐसा इंसान हमें सुन रहा है जो इस चीज़ों पे कुछ अगर काम कर सकता है तो प्लीज़ करो यार, क्योंकि इतना पानी भरना मतलब ये बहुत दिक्कत हो जाएगी मुरादाबाद के लिए। अभी तो बहुत ज़्यादा, और मानसून जो है अभी आने वाला है और अच्छे से मानसून शुरू होगा, अभी तो बारिश और जमाझम होने वाली है, तो ऐसे में यार बहुत खास ख्याल रखना है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए आप प्लीज़ आप भी अपने आसपास के जो है लोगों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, है ना। आज भी मैं देख पा रहा हूँ वेदर जो है बारिश वाला रहने वाला है। फिलहाल आपके एरिया में भी कहीं पानी जमा हो जाता है क्या, ऐसे कहीं पानी भर जाता है, कोई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, तो आप डेफिनेटली रेडियो पे अपनी बात को रख सकते हैं, शायद आपकी बात वहां तक पहुंचे जहां आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आपको बताते चले, जंतर मंतर से हटाया गया है 60,000 किलो का कचरा। ओ माय गॉड, मतलब जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था भाई। आप सोच सकते हैं जंतर मंतर दिल्ली के अंदर जो ये 36 डेज तक लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पर, एंड नीट पेपर को लेकर जो बात हो रही थी, उसके बाद जब ये पूरा प्रोटेस्ट खत्म हुआ उसके बाद जो ये कचरा हटाने की बारी आई, तो इसमें एक पूरा का पूरा स्कोर निकल कर आया जिसमें पता चला 60,000 किलो का कचरा जो है इस एरिया से साफ किया गया है। तमाम सारी मशीनों के माध्यम से जो है सड़कों की धुलाई हुई, दीवारों की जो है धुलाई हुई, सारी जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे सब कुछ को जो है वापस ठीक करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ से इतना सारा कचरा हटाया गया है, सोचिए आप यार। और फिलहाल एक कड़क अपडेट और है मेरे पास जो मैं अभी आपको लौट कर आऊँगा तो बताऊँगा, एंड RBI ने एक बड़ी चेतावनी जो है जारी करी है, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, बिकॉज आजकल ना मार्केट में एक और नया स्कैम आ गया है, तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अक्सर हम ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अवॉइड कर देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम देके अगर उसको सुन लें तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। RJ आनंद को सुन रहे हैं आप, 9:23 हो रहे हैं स्टेशन की घड़ी में, एक और अच्छा गाना आपका इंतजार कर रहा है। इस गाने के बाद मैं जल्दी से लौट कर आऊँगा तो आपसे ढेर सारी बात करूँगा, बिकॉज मुझे बातें करने का बहुत मन होता है आपके साथ, लेकिन टाइम का भी ख्याल रखना होता है यार। जिंदगी में आने वाला गाना वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट,
1: तन्हा था जिंदगी में,
0: ये गाना
1: गम ही थे हर खुशी में, तन्हा था जिंदगी में।
0: वैसे मैंने इस गाने में थोड़ी सी स्टोरी भी बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हो, यू हैव टू गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम ID रेडियो वाला आनंद के नाम से इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ।
1: लेके उम्मीद से मेरी रातें सजाने
0: एवरीबॉडी।

रेडियो की सबसे स्पेशल चीज पता क्या होती है, हमें पता ही नहीं होता अगला गाना कौन सा आने वाला है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो गाना भी इमेजिन कर रहे होते हैं, वो गाना हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हमारे जहन में चल रहा होता है, और तुरंत वो गाना अगर रेडियो पे आ जाए, हाय हाय, फिर तो मतलब 440 के बोर्ड लग जाते हैं। चलो इस गाने को सुनते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इस गाने के बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर, गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम
0: मिस कर दिया तो रीलोड
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
6: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
7: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
6: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
7: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
6: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
7: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
8: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: Mamamaka, nalaya ka beta.
1: Hanji, good morning, namaskaram, kya hal chal?
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: क्या बात है यार, नेम चले, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग। और सच बताऊं, ये ऐसे गाने सुन के ना मजा आ जाता है। और ये जब गाने ऐसे मतलब हमारे लूप पे चल रहे होते हैं, हम इसको लगातार ऐसे गाने को सुन रहे होते हैं, मजा आता है। चाहे हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी हो, रील्स हो, जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो ये ट्रेंड में आ ही जाते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है? चलो यार, आगे बढ़ते हुए आप सभी का वार्म वेलकम करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच में आप लोग बड़े कमाल के मैसेज करते हो यार। एंड मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था यार, हर एक शहर की ना एक यूएसपी होती है, उसके गली नुक्कड़ चौराहे पर कुछ ना कुछ तो ऐसा स्पेशल मिलता है जिसके बारे में ऑफकोर्स हर कोई अक्सर बात नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और आप लोगों ने क्या मैसेज किए हैं यार, ताबड़तोड़ संदेश मेरे पास पहुंचे हैं, मैं डेफिनेटली शामिल करूंगा। लेकिन उससे पहले बताता हूँ, आज 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी कि धरती की हरियाली जो है उसको मेंटेन रखना मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। छोटे छोटे पेड़ पौधे हम लगाते हैं, फिर उसका ध्यान रखना भी जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। वेल, आज 28 जुलाई और हर साल आज ही के दिन जो है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कहते हैं धरती की हरियाली है जीवन का आधार, संभालें इसे मिलकर और करें इसका सत्कार, है ना। तो इसको ध्यान जो है, इसका ध्यान कौन रखेगा भाजी, मैं और आप ही तो रखेंगे। तो आज का ये दिन बहुत ही स्पेशल है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है आज मनाया जाता है। समय पर इसके जो है टीके लगवाने बहुत जरूरी है, टीका लगवाएं, इसकी रोकथाम बिल्कुल संभव है। अगर आप इसका समय पे ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके इससे डरने की जरूरत भी नहीं है। और ये जो दिवस है वो हर साल इसीलिए मनाया जाता है 28 जुलाई को, ताकि आप भी जागरूक रहें और औरों को भी जागरूक करें, एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है इसको मनाया जाता है। श्रोताओं, हर साल 28 जुलाई को। इसके अलावा आज नेशनल चॉकलेट मिल्क डे मनाया जाता है, एंड आज नेशनल वाटर पार्क डे मनाया जाता है। हम लोग जाते हैं ना अच्छा स्विमिंग करने के लिए, हाँ जी, तो आज उसका वाला दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो कुछ हुई वो बातें जो आप तक मुझे पहुंचानी थी फटाफट से, कि भैया आज कौन कौन से दिवस जो है मनाए जाते हैं उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। अच्छा, मैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस से जुड़ी कुछ और बातें आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि 28 जुलाई को इसको हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये लीवर को प्रभावित करने वाला गंभीर संक्रमण माना जाता है। समय पर जाँच और टीकाकरण से जो है इसे रोका जा सकता है। यह दिवस स्वस्थ जीवन और रोकथाम पर जोर देता है, तो आज के इस दिन को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। आज के दिन जो है अवेयरनेस का दिन है, अगर कोई इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है तो उसका मोटिवेशन बने, उसको जो है आप हिम्मत दें और उसको इसके बारे में सही जानकारी दें, है ना। जब सही जानकारी अगर हमारे पास होगी तो हमें डर भी नहीं लगेगा और हम उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से करा पाएंगे, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं जी, और आज और किनका बर्थडे मनाते हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतनी प्यारी प्यारी मैसेज जो आपने भेजी है ना भाई, इनसे तो मेरा जो सुबह है वो और भी अच्छा हो गया यार, माइंड ब्लोइंग हो गई मेरी मॉर्निंग आज। वैसे भी ट्यूसडे है तो दिन तो अच्छा होना ही है। जरा इनकी आवाज़ सुनते हैं फटाफट से, इन्होंने क्या पहुंचा दिया है। हमारे रेगुलर लिसनर हैं जी,
1: नमस्कार। नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और सभी सुनने वाले लिसनर भी बहुत अच्छे से होंगे। प्रभु उनके स्वास्थ्य को बनाए रखे, हमेशा उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। मॉर्निंग मोटिवेशन। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहें एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन हमको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से बोल रहा हूँ। आपके लिए लाता हूँ दैनिक सुविचार। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज आरजे आनंद के साथ प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग में, और भेजते रहिए अच्छे अच्छे वॉइस नोट मैसेज नंबर 98 3 98 8 96। नमस्कार
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार, शुक्रिया मेरे भाई। चलिए दोस्तों, फिलहाल जो जो भी लोग अभी रेडियो ट्यूनिंग जिन्होंने जस्ट अभी राइट नाउ किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रेडियो ट्यूनिंग कर लिया है। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, आप सभी का स्वागत है। आज 28 है जुलाई और इस पे हम और भी बातें करेंगे, और भी कुछ खास चीज़ें हैं जो मुझे आप तक पहुँचानी है। फटाफट से मैं अभी लौट कर आता हूँ, और जो आपने मैसेज किए हैं वो डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ दो चार पढ़ ही दूँ यार, क्योंकि समय बहुत कम बचा है मेरे पास, तो मैं इमीडिएटली आपके मैसेज को फटाफट से यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा, नहीं तो फिर बाद में ना यार, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है मेरे को। एक बहुत ही फैबुलियस गाना आपके रेडियो पे निकल गया आफ्टर लॉन्ग टाइम, इस गाने को आप सुनेंगे मेरे साथ, एंड दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग रीमेक, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। दिस इज सो मच अमेजिंग सॉन्ग यार, जो तेरे संग काटे कुणाल की आवाज, जिए जो हंसी लम्हे, सच में है ना कमाल का गाना। ईदगाह गेट से शफी अहमद अंसारी, रईस दूला अंसारी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेरी नाइस शो, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो आरजे आनंद के साथ, नई नई ताजी जानकारियां मिलती हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच यार, सच में क्या बात है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल हैं? गुड मॉर्निंग, ये मोहसिन साहब मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, लिखते हैं, ऊपर वाला आपकी हर दुआ कबूल करे, चेहरे पर हमेशा मुस्कान भरपूर करे, जिंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, हर दिन खुशियां आपके जो है दरवाजे पर आती रहें, और आपका घर भी खुशियों से ऊपर वाला भर दे। क्या बात है यार, बहुत ही सुंदर, इन्होंने बनारसी साड़ियों की फ़ोटो शेयर करी है, अरे वाह क्या बात है। ये बहुत ही खूबसूरत बात लिखते हैं, लिख रहे हैं, आनंद भाई आज आपने लाल टी शर्ट पहनी है, लाल कैप लगाई है, आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ओ माय गॉड, आपने इंस्टाग्राम चेक कर लिया मेरा, क्या बात है यार। गाइज, आप भी चेक आउट कर सकते हो, मेरा ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, जहाँ पे आपको सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर पर्सनली आरजे आनंद को फॉलो करना चाहते हो तो हमारा मेरा अपना पर्सनल इंस्टा हैंडल है रेडियो वाला आनंद के नाम से, मिलता हूँ रेडियो वाला आनंद के नाम से, फटाफट जाओ चेक आउट करो। आई विल बी राइट बैक इस गाने के बाद, डोंट गो एनीवेयर।

0: यार इस गाने के बीच में मुझे सॉरी इंटरप्ट करना पड़ा, वैसे तो गाना एंड हो गया है अब। क्या झमाझम बारिश हो रही है बाहर, ऐसे में एक कप चाय, एक तरफ क्रिस्पी पकौड़े और अच्छे गाने। सुबह सुबह का समय यार, 9:43 हो रहा है, बाहर का मौसम एब्सोल्युटली ऑसम भाई। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बारिश में भीगने जा रहा हूँ। अच्छा, अगर आप बारिश में हैं इस वक्त, मतलब आप भीग रहे हैं या नहीं भीग रहे हैं, अगर आप गाड़ी में हैं, आप कहीं भी निकल चुके हैं और बारिश तेज हो रही है, एक सेल्फी भेजो यार, एक फोटो भेजो। मैं बता रहा हूँ, नहीं तो पाप लगेगा आपको। कहीं रुके हो, बारिश हो रही है बहुत तेज, एक फोटो खींच के भेजो। मुझे पता है आपने ईयरबड्स लगा के आप एंजॉय कर रहे हैं बारिश और गाने, एक छोटी सी सेल्फी खींच के फटाफट व्हाट्सएप करो 9837896896 पे। देखता हूँ कौन सबसे पहले फोटो भेजेगा। बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कौन है इस बारिश का जो मजा ले रहा है, मुझे एक पिक्चर शेयर करो। गाड़ी में हो तो एक छोटा सा वीडियो शेयर करो फटाफट से, एंड यार मेरे को भी अच्छी फीलिंग आ जाएगी भाई। इसी बात पे एक बारिश वाला गाना प्ले करूंगा अभी फटाफट से। मेरे को एक फोटो शेयर करो, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, कहाँ बारिश हो रही है, आपके कौन से लोकेशन में आप हो, वहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है, फटाफट मेरे को व्हाट्सएप करो यार।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सावन बरसे, निकल गया एक बहुत ही प्यारा ट्रैक, आप जहाँ भी हैं
2: क्यों ना निकले घर से। दिल
1: इतना प्यारा मौसम हो रहा है,
2: बरखा भी दिल प्यासा है।
1: बहुत ही फैबुलस ट्रैक, दिस इज वेरी वेरी एवरग्रीन ट्रैक आपके रेडियो सेट पे आज ट्यूसडे सुबह, मंगलवार की मॉर्निंग है यार।
2: देखो कैसा
1: हरी हरन साहब की आवाज
2: है, भरे
1: साधना सरगम देगी साथ
2: यार।
1: सावन का जो फुल ऑन माहौल बनने वाला है इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
2: सावन बरसे तरसे,
1: क्या बात है यार,
2: क्यों ना।
1: बारिश बाहर हो रही है, मौसम बहुत औसम है, वैसे में ये गाना तो यार आज की मॉर्निंग बनता है, ये तो मुझे लगेगा मेरे को पाप चढ़ जाएगा। बहुत आगे बढ़ते हैं, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग।

What a song. You think about Akshay Khanna, you think about Sonali Bindre. Such an amazing song, यार. बहुत ही प्यारा गाना है. 90s वाला ये माहौल बना दिया इस गाने ने. मतलब इतनी अच्छी यादें ताजा कर दी है ना. Such an amazing song, यार. हरिहरन साहब की ब्यूटीफुल आवाज साथ में साधना सरगम दे रही थी सर. सच में मन जो है ना एकदम से डांस करने पे मजबूर हो गया था. इतना बढ़िया गाना. आपको कैसे लगा ये गाना मुझे जरूर बताना. फिलहाल बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ वीडियोस एंड फोटोज शेयर कर दिए. यार क्या मौसम है बाहर का. इतने सारे मेरे पास देखो. सोनालिका ने वीडियो शेयर किया मेरे पास. ये पुष्पा जी ने एक फोटो शेयर किया है. साथ में मनप्रीत ने मुझे अपनी गाड़ी से वीडियो बना के भेजा है. शुभम ने वीडियो बना के भेजा है. तारुण ने मेरे साथ वीडियो शेयर किया है. एक और मैसेज मेरे पास आ रहा है. ऐश्वर्या ने मेरे को फोटो भेजा है. एंड साथ में ललिता कश्यप ने फोटो भेज दिया है. और साथ में वीडियो शेयर किया है. रिजवान खान साहब ने वीडियो शेयर किया है. रिहाना ने वीडियो शेयर किया है. मनीष ने मेरे को फोटो भेजा है. एंड इसके अलावा ये कौन है, ये हमारे साथ डॉक्टर शुभम है. इन्होंने मेरे को वीडियो शेयर किया है. मतलब विक्की सागर ने मेरे को फोटो भेजा है. एक और मेरे पास मैसेज पहुंच रहा है ये बुद्ध बिहार से. ये इनका नाम क्या है, सरदार जी ने मेरे को मैसेज किया. सरदार जी अपना नाम लिख दो यार. पाजी ऐसे कैसे चलेगा यार. इन्होंने मेरे को एक अच्छा वीडियो शेयर किया. एक और मेरे पास फोटो आया है. ये कहां से आया है, पागवाड़ा से मेरे पास फोटो पहुंचा है. पता नहीं इन्होंने नाम नहीं लिखा है. एक और मेरे पास वीडियो शेयर किया है किसी ने गाड़ी में. ये दिल्ली रोड वाली मुझे इन्होंने वीडियो बनाकर भेजी है. वाओ यार माइंड ब्लोइंग. मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाके ना मतलब बाहर घूम के आऊं. इतना अच्छा मौसम और इतने प्यारे वीडियो. थैंक यू सो मच. मैंने आपसे कहा था ना कहीं बारिश वारिश हो रही है तो मेरे को छोटा सा एक डेमो वीडियो वाला शेयर करो बनाकर के या फोटो भेजो. सच में यार आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज कर दिए, मजा आ गया. यही तो खास बात होती है यार. अपना जो एक प्रेम होता है जिसे कहते हैं ना एक दिल से जुड़ने वाला प्रेम, वो आप लोग सच में निभाते हो यार वादा. नो डाउट. मतलब प्यारे लिसनर है यार आप. मतलब एकदम जेन्युइन वाले लिसनर जिसे कहते हैं वो आप हो यार. नो डाउट. ये जो मोहब्बत है वो हौले हौले बढ़ेगी. मेरा और आपका साथ हॉली हॉली बढ़ता रहेगा. आने वाला गाना सुखविंदर सिंह की बहुत ही प्यारी आवाज में. लेकिन उससे पहले आपने जो मैसेज किए मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा. और मेरा एक कड़क सवाल है जिसका जवाब आपने मेरे को व्हाट्सएप करके देना है. पर उससे पहले मैं आपको मैसेज पढ़ के बता देता हूँ. मेरे पास कुछ बहुत प्यारे प्यारे संदेश पहुंचे हैं. हाई गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मोहन है और मैं बुद्ध बिहार में रहता हूँ. आनंद जी कैसे हैं आप, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. इन्होंने लिखा है आनंद जी आपकी रेडियो सुन के ना हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं. अरे वाह, थैंक यू सो मच. हमारी तो सर यही कोशिश होती है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन रेडियो के थ्रू मिल जाए. एक और मेरे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर. इनका नाम क्या है, अनवर जी का मैसेज आया. इन्होंने लिखा सर बुद्ध बाजार में आप भुट्टे खाओ चाट खाओ बहुत फेमस मिलती है. और इंपीरियल चौराहे पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर भी जो है आप इधर की तरफ आपको बहुत सारे टेस्टी फूड्स मिल जाते हैं. आप ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ पर. एंड मुझे रामगंगा बिहार में किसी ने लिखकर पहुँचा है कि यहाँ पर मोमोज बहुत टेस्टी मिलते हैं. आनंद जी बहुत ही मज़ा आता है. एंड साथ में स्प्रिंग रोल भी आप ज़रूर खाएं. ये कौन सा रोल आ गया भाई, काठी रोल्स बहुत फेमस होते हैं यहाँ पर. गांधीनगर पीतल नगरी आप आइए, यहाँ पर भी बहुत अच्छी कचौड़ी मिलती है. एंड जलेबी किसी ने मुझे बताया है, यहाँ पर एक हलवाई का नाम बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लूँगा. इन्होंने बताया यहाँ पर जलेबी बहुत टेस्टी मिलती है. टाउन हॉल के आसपास आप टिक्की गोलगप्पे दही बड़े खाइए, आपको आनंद आ जाएगा. कांट रोड पर ही एक मैसेज आया मेरे पास यहाँ पर, ये प्रीति ने मेरे को पहुँचाया. आनंद आप कुल्हड़ वाली चाय पीकर आइए, आपको बड़ा मज़ा आएगा. किसी ने मुझे लिखा है कबाब खाने आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा. अरे वाह क्या बात है, मैं जरूर आऊंगा. लेकिन कहाँ कहाँ पर क्या फेमस है

आपको ये भी बताना था, एक मैसेज मेरे पास आया है, गुड मॉर्निंग सर, दिल्ली के चांदनी चौक वाले पराठे खाए या नहीं आपने? यार अभी तक तो नहीं खाए हैं। एक मैसेज और आया है, ये मुंबई महाराष्ट्र से मैसेज आ रहे हैं, लिखा है मुंबई का बड़ा पाव आप कहीं भी खा लो आपको बड़ा मजा आएगा। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। और बनारस से एक मैसेज और पहुंचा है मेरे पास पल्लवी का, इन्होंने लिखा है आने चाहिए यहाँ पर ना कचौड़ी जलेबी और बनारसी पान बहुत फेमस है और हमारे टमाटर की चाट तो बहुत पॉपुलर है। अरे बाप रे। एक संदेश और पहुंचा है, सर गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? इंदौर से मेरे पास मैसेज आ रहा है प्रियंका का, लिखती है यहाँ पर तो पोहा जलेबी बहुत फेमस है आनंद भैया, प्लीज यू हैव टू कम। अच्छा जी, मैं ट्राई करूंगा। हाँ मैं चाहता तो हूँ मैं जरूर इंदौर पहुंचूं, लेकिन जब भी कभी मौका मिला तो मैं जरूर आना चाहूंगा। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार के भुट्टे मुझे बहुत पसंद आए, बाकी आप लोगों ने अपने अपने अलग अलग एरिया से जो बताया है उसके लिए दिल से थैंक यू यार, बहुत मजा आया है। आप लोगों ने सच में बहुत ही जेन्युइनली अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे लिख के बताया है। मयंक शर्मा पीतल नगरी से जुड़ रहे हैं, आज इनका हैप्पी बर्थडे होता है। मयंक वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे भाई, आप अपना बर्थडे किनके साथ मनाते हैं मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कड़क सवाल आ गया है, इसका जवाब आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आज की मॉर्निंग में एक ट्रैक प्ले कर रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर नंबर, इस गाने को पहचानना है, ये गाना जो बज रहा है वो कौन सा गाना है, एंड बहुत प्यारा ट्रैक है। चलो जी 3 2 1 गो स्टार्ट, ये म्यूजिक आपको पकड़ना है कौन से गाने का है। ठीक है जी, बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा म्यूजिक है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, इसको सुनेंगे तो आपको भी बहुत मजा आ जाएगा। और सच बता रहा हूँ कुछ गाने सच में बहुत प्यारे होते हैं, जैसे कि ये जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ ये बहुत प्यारा गाना है। सो चलो आप बिना किसी तरीके सवाल सीधा आप तक पहुँचाते हैं, 3 2 1 गो स्टार्ट, बताओ कौन सा गाना है।

व्हाट्सएप करके आपको मेरे को बताना है अभी जो आपने म्यूजिक सुना है वो कौन से गाने का है। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही पॉपुलर गाना है। छोटे छोटे फोन आते थे ना पहले, उसमें भी गाना आता था, बड़ा मजा आता था सुन के। फ्लैश बैक की बात अगर मैं करूँ तो बचपन की मेमोरी ताजा हो जाती है। मेरी बहुत सारी मेमोरी है यार वो बचपन वाली। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अभी उस पर बात नहीं करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आज का सवाल, आपको बताना है कौन सा गाना है।

चलो मैसेज करो, भी इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। किसी ने लिखा है बाहर धूप निकल गई है। व्हाट इज दिस यार, कहाँ धूप निकल गई है? अच्छा ये दूसरे शहर से मैसेज आया है। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ अभी कहाँ धूप निकली है। फिलहाल आप ये गाना सुनते हैं, आपके साथ हम इंजॉय करते हैं इस गाने को। 10 बजने वाले हैं यार, 9:58 हो गए हैं। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, यह है आपकी शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, आपकी शहर का फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप आरजे आनंद को सुनते हैं मंडे टू सैटरडे, और आपका मॉर्निंग मैगजीन शो होता है जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। यह है आपकी शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुखविंदर सिंह की आवाज में एक बहुत ही प्यारा गाना निकाल दिया है मैंने की सुबह में आनंद के साथ। अभी लौट कर आता हूँ जरा सी देर में। आपको आनंद आ रहा है ना? वेरी गुड।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

आ गया। आज आनंद इज

0: आईवी मूवीज में भी आप एंजॉय करें, बहुत ही प्यारा गाना। सच अमेजिंग ट्रैक यार, क्या मोटिवेशन देता है गाना, सुबह सुबह एनर्जी से भर देता है भाई। 10:10 हो गए हैं, स्टेशन की घड़ी में आनंद के साथ सुन रहे हैं आप आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो। अभी फिलहाल कुछ एड ब्रेक का टाइम।
1: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
0: चलिए ब्रेक का हुआ टी एंड, आनंद की हुई वापस एंट्री, थैंक यू वेरी मच। 10:11 लेडीज एंड जेंटलमैन, 28 जुलाई की सुबह आपकी मॉर्निंग को बना रहे थे सुपर पुल आउट। पूछा था आपसे मैंने एक बड़ा सिंपल सवाल, आपको गेस करना था एक चुटकी सॉन्ग में गाना कौन सा है।

0: अमेजिंग कोरियोग्राफी की थी ऐश्वर्या राय बच्चन ने, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर नंबर। ऑफ कोर्स आप लोगों ने बहुत सुना है इस गाने को, आपके टाइम का गाना है। मिलेनियल्स के लिए तो बहुत ही इजी हो गया होगा एक क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सिंपल गाना यार। सच में यार इस गाने में जो जिक्र हुआ है ना, अक्सर उसमें विटामिन सी होता है, वो हमारी आंखों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूरी पिक्चर मैंने क्लियर कर दी है, अब तो भैया सारे क्लू मैंने आपको दे दिए हैं। और यही बताने के लिए ढेर सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किए हैं यार, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सच में बहुत प्यारे प्यारे संदेश पहुंचाए हैं एंड आई कैंट बिलीव दिस कि इतने सारे लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया जवाब दे दिए इतने कम टाइम में। आई एम वेरी वेरी हैप्पी यार, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्लैड, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये नाम इन्होंने नहीं लिखा है बट इन्होंने मेरे को मैसेज करके बता दिया है कि आनंद जी दिस इज राइट आंसर एंड ये लकी वाला आपका क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा लकी विनर तो आप बनते, वैसे नंबर के 4 डिजिट हैं, 222 222 मतलब 4 × 2 हैं, बड़े VIP नंबर है इनका। सो नाम प्लीज अपना लिखिएगा अगर आप मुझे सुन रहे, तो कांग्रेचुलेशन आज की सुबह आपने सबसे पहले सही आप दिया है एंड दिस इज राइट आंसर। कौन सा है ये गाना? ऑफ कोर्स आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं अब आपको सुनवाई देता हूं यार। इतना प्यारा गाना है यार, ये तालियां बिल्कुल ऑफ कोर्स आपके लिए बजेंगी, लेकिन एक बार मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम जरा दोबारा बोलो।
1: नी मुड़ा नी मुड़ा नी मुड़ा, नी मुड़ा नी मुड़ा नी मुड़ा,
0: ओए होए, अच्छा जी
1: छोटा छोटा
0: ला दो यार। यस दिस इज राइट आंसर, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मोहसिन अंसारी बनारस से जुड़े थे, इन्होंने एकदम राइट आंसर दिया है, दोनों ने मतलब थोड़ा सा फर्क था बाकी सही आंसर एकदम पहुंचा दिया है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने भी बहुत सारे लोगों ने सही सही जवाब दिए हैं। देखिए डॉक्टर सुरेश मेरे साथ सही जवाब के साथ जुड़े थे प्रकाश नगर से एंड बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़े थे। गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, लिखते हैं मुंबई की गलियों में बड़ा पाव बहुत फेमस है। रोहित जी मेरे साथ अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं आज की सुबह, इन्होंने मेरे को वीडियो शेयर किया है रोहित राणा जी ने कि आनंद जी देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है एंड देन मैं यहाँ पे आपका शो एंजॉय कर रहा हूँ, क्या बात है, थैंक यू वेरी वेरी मच यार। आप लोग सच में इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो ना, मन जो है एकदम खुश हो जाता है और इतने अच्छे अच्छे मैसेज आप पहुंचाते हो, मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है सुनकर आपको। गाइज थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, ये मैसेज मेरे पास आया है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है, भूपी शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से सही जवाब दे रहे थे एंड ये मेरे पास मैसेज पहुंच रहा था अलीशा का मुरादाबाद से एकदम सही वाला जवाब। गौरव टीलर जुड़े हैं नवीन नगर से, लिखते हैं हाय आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, इनको शो अच्छा लग रहा है और ये चाय पकौड़े की बात कर रहे हैं, मतलब बच्चे को लालच दे रहे हैं, वेरी वेरी बैड यार। हाय गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है, पिंटू जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग। सही जवाब पहुंच रहा था मेरे पास सोनालिका का, साथ में निधि भी जुड़ी है राइट आंसर के साथ एंड ये पंकज मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की मॉर्निंग एंड ये मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर सुजीत जी का। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंच रहा है नोनेश कुमार जी का, ये लक्ष्मी जी माता मंदिर से जुड़ रही हैं। इसके अलावा ये मैसेज पहुंच रहा था मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, ललिता कश्यप नवीन नगर से मैसेज पहुंचा रही हैं और इन्होंने क्या धाकड़ वीडियो शेयर किए हैं बारिश के, थैंक यू रिजवान खान साहब, आपका भी शुक्रिया, आप भी हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर जेठालाल मेरे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं आज की सुबह, बहुत ही खूबसूरत बातें लिखते हैं रणवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। इसके अलावा आज हमारे पास मैसेज पहुंच रहा है यहाँ पे, हाई गुड मॉर्निंग हाउ यू, जय श्री राम, ये मेरे पास कल्याणपुर से मैसेज पहुंच रहा है दुर्गेश जी का, थैंक यू सो मच। गाइज आप लोगों ने सच में सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं और अभी फिलहाल मेरा जाने का समय हो गया, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। जोरदार तालियां जिन लोगों ने टेक्स्ट मैसेज किए हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाय गुड मॉर्निंग आनंद हाउ यू, कैसे हो आप, आपने बहुत ही अच्छे गाने प्ले किए हैं, थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा हमारा शो। हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम लोकेश है, आनंद कैसे हैं आप, आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाते हो, थैंक यू लोकेश जी। हाय गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है, मेरा नाम प्रीति है, आनंद आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, अरे वाह क्या बात है, थैंक यू गाइस, बाय, कल मिलते हैं वेंसडे मॉर्निंग में, टिल देन टुमारो मॉर्निंग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, बारिश हो रही है प्लीज ऐसे में जो है ना अपने आपको आप जो है हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए बहुत जरूरी है, बारिश चाहे कितनी भी हो प्यास आपको नहीं लगेगी फिर भी आपको पानी पीते रहना है ठीक है एंड इस बारिश से कोशिश करिए बचिए, अगर आप भीग रहे हैं तो घर जाके तुरंत चेंज कर लो यार, कभी ऐसा हो कि बाद में बीमार पड़ जाओ ना, मैं तो पड़ चुका हूँ आप नहीं पड़ने चाहिए। चलो कल मिलते हैं, टेक केयर, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, ऐसे ही रेडियो सुनते रहिए यार, रात 12:30 1 बजे तक शायद हमारा रेडियो चालू रहता है, आपका इस सफर का साथ ही रहेगा। यो यो हनी सिंह को बोलने देते हैं, हम कल बोलेंगे, बाय बाय।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
0: गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय किया, जे आर ए एंड अनुष्का शर्मा, साथ में रणवीर सिंह बहुत ही खूबसूरत से नजर आए। और मैं आपको बता देती हूँ साथियों कि ये जो गाना था ना, एआर रहमान जी का म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत था, और इस खूबसूरत से गीत को गाया था नीति मोहन ने, बहुत ही प्यारी आवाज़। एंड मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, पता है क्या होता है, और सच में ना देखिए जिया ने ट्रैक सुनकर ना, और सच कहूँ जिया तो हमारा भी करता है कि इस प्यारी सी बारिश में खुलकर हम भी एंजॉय करें, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारियाँ भी ज़रूरी हैं, ऑफिस आना, आपसे बातचीत करना और आपकी सुबह को मुस्कुराहट से भर देना, ये भी तो अपने आप में एक खूबसूरत एहसास है। वैसे बारिश का मज़ा सिर्फ भीगने में नहीं आता है, कभी खिड़की से उसे निहारने में, कभी चाय की चुस्कियों में, और कभी अपनों से दो पल दिल की बातें करने में भी होता है। तो इसी मंगलमय मंगलवार की बारिश भरी सुबह को दिल से महसूस कीजिए, मुस्कुराइए, क्योंकि हर बूंद जैसे यही कह रही हो जिंदगी छोटी छोटी खुशियों का नाम है। और मैं वक्त बता देती हूँ साथियों, वक्त हुआ है 10:27, 28 जुलाई है आज, और खूबसूरत सा अपने आप में दिन है मंगलवार का। आपका जीवन भी मंगलमय बीते, हम तो यही कामना करते हैं। और हाँ, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइएगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। और मैं आपको बता देती हूँ कि एक प्यारा सा गीत आप सभी के लिए मैं प्ले कर रही हूँ, इसको एंजॉय कीजिएगा, बाहर का मौसम बहुत ही ऑसम है।
5: जिंदगी सदियों बरसी थी।
6: अरे सुन सुन।
7: यस मां।
6: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है।
7: आई विल सी यू इन द इवनिंग।
6: अरे सुन।

क्या बात है दोस्तों, अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना नेहा कक्कड़ और साथ में रोहन प्रीत की खूबसूरत आवाज में। तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम। दोस्तों क्या खूबसूरत एहसास है ना। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे बारिश के साथ साथ ना बारिश में आप सबके प्यारे प्यारे संदेश भी बहुत पसंद है। सच मानिए, आपकी हर फरमाइशें, हर मैसेज और हर मुस्कुराहट इस मौसम को और भी खूबसूरत बना देती है। दोस्तों पता है आपको आज सुबह क्या हुआ मेरे साथ? बताती हूँ आपको आज मॉर्निंग में क्या हुआ। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बारिश को भी ना मेरा ड्यूटी टाइम टेबल एकदम पता है। जैसे ही मैं तैयार होकर घर से बाहर निकली, तभी बादलों ने कहा चलो भाई अब हमारी भी एंट्री का टाइम हो गया है। मैं तैयार होकर घर से निकली ही थी कि तभी झमाझम बारिश शुरू हो गई और छाता साथ भले ही था लेकिन बारिश में ऐसे कैसे हो सकता है घर से बाहर निकले और भीगे ना। तो हम भी भीग गए थे लेकिन भीगते भागते आ ही गए ऑफिस। आपका जो प्यार है ना वो हमें खींच कर ले आया। अच्छा दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? जैसे ही घर से बाहर निकलो बारिश शुरू हो जाती है यहाँ। लेकिन मानना पड़ेगा सावन तो आया नहीं है, लेकिन हाँ सावन से पहले ही खूबसूरत बारिश आने लगी है और ये जो मौसम शरारती करता है ना तो और ज्यादा खूबसूरत लगता है। बारिश का भी ना अपना अलग ही स्वैग होता है, कभी बिना बताए आ जाती है तो कभी इंतजार करवाती है। और मजेदार बात तो बारिश सिर्फ सड़कों को ही नहीं भिगोती, ये पुरानी यादों को भी ताजा कर देती है। किसी को कागज की नाव याद आती है, किसी को गर्मा गर्म चाय और किसी को पकोड़े, तो किसी को वो एक खास इंसान जिसके साथ बारिश में भीगने का सपना कभी देखा था। अच्छा दोस्तों आप मुझे बताइए, बारिश का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले याद कौन सी आती है? हाँ मुझे बताइए, मुझे भी बताइएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ आपके खूबसूरत मैसेजों का। नंबर हमारा है 9837896896 और हमारे पास यहाँ पर लगातार खूबसूरत मैसेज आ गए हैं एवरीडे की तरह। एंड हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट मैसेज हमें पहुंचाती हैं ललिता कश्यप जी नवीन नगर मुरादाबाद से। कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। कहती हैं कि खुशी जी आपकी धमाकेदार एंट्री एंड बिंदास सॉन्ग, अरे वाह आपको पसंद आया ना मैम, बस यही तो हमें चाहिए और क्या चाहिए। आपको पसंद आने चाहिए ना, आपकी पसंद में ही हमारी खुशी है।

थैंक यू मैम, आपका प्यार ऑलवेज ऐसे ही बना रहे। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये भी नवीन नगर से हमारे पास मैसेज आया है गौरव टेलर जी का। कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं सर, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। एंड कहते हैं कि आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, धन्यवाद आपका। और इन्होंने भी एक बारिश के गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। तो चलिए दोस्तों, ये बारिश के गाने भी सुन लेते हैं और अभी लौट कर आते हैं, एक बिंदास इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है। तो उसके लिए आप कहीं मचाइए, बने रहिए, चिपके रहिए खुशी के साथ। ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जम के ना इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाइए, ठीक है। और अगर घर से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप रेनकोट अपने पास रखें और छाता ले जाना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पी या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
5: कोई मिल गया
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने बातें होती हैं दिल से दिल तक यादों का सितारा गीतों का सहारा मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का नंबर वन रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 9.6 और मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, जी हाँ कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 28 जुलाई से 29 जुलाई की सुबह तक मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, बरेली और सोनभद्र समेत कई इलाकों में भारी से बहुत ज्यादा बारिश, गरज चमक और वज्रपात की संभावनाएं जताई गई हैं। अगर आपको बहुत जरूरी काम ना हो तो बेवजह घर से बाहर निकलने से बचिए। तेज बारिश के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और मौसम विभाग की अतिरिक्त सलाह का पालन करें। बारिश का आनंद जरूर लीजिए लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है। दोस्तों बारिश की हर बूंद सुकून लेकर आए लेकिन जरा सी लापरवाही मुसीबत भी बन सकती है, इसीलिए अपना और अपनों का ख्याल अच्छे से रखें। ये तो थी वेदर अपडेट और मैं वक्त बता देती हूँ आपको। समय हुआ है 10:53 10:53 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। आपकी खुशी है आपके साथ और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं। हेलो मैम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पिंटू है। पिंटू जी वेरी गुड मॉर्निंग, हम तो अच्छे हैं। आप सब बताइएगा क्या कर रहे हैं इस वक्त? बारिश तो हो रही है या बंद हो गई है बताइए, क्योंकि मुरादाबाद का जो मौसम है ना वो पल पल बदलता रहता है। उसके अलावा हमारे पास मैसेज आया यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी का, कहते हैं खुशी मैम कैसी हैं आप? सर बहुत ही अच्छे हैं हम, प्रभु राम जी की कृपा है और आप सभी पर बनी रहे। और इन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, हम पूरा प्रयास करेंगे सर इसको प्ले करने का। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ललिता जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये कहती हैं बारिश आते ही बचपन की यादें याद आ जाती हैं। और ये कहते हैं कि मैम रिमझिम बारिश हो रही है अभी। ओके थैंक यू सो मच मैम अपडेट देने के लिए। उसके अलावा हमारे पास एक वॉइस नोट भी आया है तो उसको भी हम क्विकली प्ले कर लेते हैं। हमारे पास क्या पहुंचाते हैं आज की मॉर्निंग सर, ज़रा उनका थॉट भी सुन लेते हैं क्योंकि एवरी मॉर्निंग सर कुछ ना कुछ न्यू हमारे साथ शेयर करते ही हैं और अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं, तो चलिए सुनते हैं।
1: पूजा करते हो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो। नमस्कार, राधे राधे, मैं भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला आरजे खुशी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जिसको बजाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है और मुस्कुराना पड़ता है। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छे अच्छे वॉइस नोट जो सुनाई देंगे सारे शहर को, सारे देश को और हो सकता है सारे संसार को। नमस्कार, राधे राधे।
0: आपको भी राधे राधे
1: जी। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सर।

0: लूना।
1: थैंक यू सो मच भूपी शर्मा जी, आपने अपना वॉइस नोट हमें पहुंचाया है। और दोस्तों, आप भी अपना वॉइस नोट, अपना मैसेज, अपना थॉट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये मौका, खुशी आपको दे रही है, तो क्यों मिस करना। हाँ, जल्दी से फटाफट अपना मैसेज पहुंचाइए। नंबर मैं अगेन आपको बता देती हूँ, 9837896896। और चलिए सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी, साथ में रईस दूल्हा अंसारी जी हैं। कहते हैं, हाउ आर यू खुशी मैम? आई एम गुड सर, हैव अ नाइस डे, वेरी नाइस शो। थैंक यू, इतनी सारी तारीफें आपने कर दी है आज की सुबह। और ये एक ट्रैक सुनना चाहते हैं, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना। इस तरह से लिरिक्स हैं, पर गाना बहुत प्यारा है। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, है ना, इस तरह से कुछ है ना। चलो बिना किसी तरीके सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत, और भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। बस आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, किसी को बिल्कुल नहीं घुमाना है आपको। हाँ, और हाँ, मुस्कुराना मत भूलना, ठीक है।
2: ख्वाहिश नहीं तेरी, जदो मर्जी पूरी कर लवे, ले बन मेरी, मैं प्यार हां तेरा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

दोस्तों अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना, अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज सावन आया है। बस एक दिन और बीच में है, लाइक कल का दिन है, परसों से सावन स्टार्ट हो रहा है और कल तो बहुत ही खूबसूरत दिन है, कल गुरु पूर्णिमा भी है, तो कल की भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और दोस्तों ये है मॉर्निंग मसाला, आपका फेवरेट शो। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों मैं आपको समय भी बता देती हूँ, वक्त हुआ है अभी 11:07। और दोस्तों कहते हैं अगर प्रकृति मुस्कुराती है तो हमारी जिंदगी भी खिलखिलाती रहती है। आज 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि धरती सिर्फ हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। और इस समय में मानसून चल रहा है, यानी पेड़ पौधे लगाने का सबसे बेहतरीन मौसम। बारिश की नमी नए पौधों की जड़ों को और मजबूत बनाती है और उन्हें कम देखभाल में भी अच्छी बढ़त मिलती है। लेकिन सिर्फ पौधे लगा देना ही काफी नहीं है, उसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। पौधों की चारों ओर ट्री गार्ड या फिर बोर्ड लगाइए, लाइक बाड़ कीजिए, ताकि उस पेड़ को ना ठीक से वो रुक सके, उसको सहारा मिल जाए और समय समय पर उसकी साफ सफाई करते रहें, क्योंकि घास वगैरह भी उग जाती है। एंड ज़रूरत के अनुसार पानी दें, जलभराव ना होने दें, जैविक खाद का उपयोग करें और हर पौधे को अपने परिवार के सदस्य की तरह अपनाएं और उसकी नियमित देखभाल करें। याद रखिए दोस्तों, एक पेड़ सिर्फ छाया नहीं देता बल्कि सांसें, बारिश, ठंडी हवा और आने वाले कल की उम्मीद भी देता है। तो इस बारिश में अगर आप एक पौधा लगाएंगे तो आने वाले वर्षों में वही पौधा ना जाने कितने जिंदगियों को ठंडी छांव और स्वच्छ हवा देगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस मानसून में आप भी कुछ पौधे लगा सकते हैं, जैसे नीम का वृक्ष, पीपल, बरगद का, एंड कदम, जामुन, आम, आंवला, आंवला भी लगा सकते हैं और गुलमोहर का भी आप लगा सकते हैं पेड़। आप पौधे लगाइए और ये पेड़ जब बड़े हो जाएंगे, छाया देंगे, कितना खूबसूरत होगा ना। इस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लें, इस मानसून कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और प्रकृति को हरा भरा बनाएंगे, अपना योगदान देंगे, क्योंकि जब धरती रहेगी हरी भरी तभी हमारी जिंदगी रहेगी खुशियों से भरी। तो इस मानसून आपको एक पेड़ जरूर लगाना है, ठीक है। और आइए आपके खूबसूरत जो संदेश आए हैं मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मुरादाबाद से रणवीर जी का, कहते हैं हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, कल भी इन्होंने यही गाना सुना था और आज भी इसी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है। लगता है सर को ये गाना शायद ज्यादा ही पसंद है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और इनके साथ में इनकी फैमिली भी इस वक्त रेडियो को सुन रही है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी का, साथ में उस्मान खान जी भी हैं, दीपक भी हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर।

ओके श्योर, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके फेवरेट ट्रैक को प्ले करने की। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है राजा कश्यप जी का, कहते हैं मैम आपको राम राम, आपको भी जय श्री राम। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर, ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं पूजा जी विकास नगर से, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आज का मौसम बहुत ही औसम है, अच्छा लग रहा है बाहर का नज़ारा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इस मौसम का लुत्फ उठाइए और मैं प्ले कर रही हूँ एक शानदार सा गाना।

0: ऐ मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका आपके अपने प्यारे से रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। और दोस्तों देखिए, हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे वॉइस नोट भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और हमारे पास एक मैसेज यहाँ पर आया है पाकिस्तान से, और ये वॉइस नोट पहुँचाया है एक हमारे रेगुलर लिसनर हैं, तो चलिए उनकी आवाज़ भी सुन लेते हैं। क्या आप पहुँचाते हैं पाकिस्तान से सर की वॉइस, सर का वॉइस नोट सुन लेते हैं। इतने प्यार से जब हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं तो कैसे ना उनका मैसेज हम शामिल करें, बताइए दोस्तों।
1: हेलो, आदाब अर्ज है आरजे खुशी जी, आपका शो सुन रहा हूँ और मैंने एक लिंक गाने का भेजा है, हो सके तो देख लीजिएगा। और मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, जब से आपकी बर्थडे हुई है उसी दिन से मैंने शुरू किया सुनना। हो सकता है कि मैं आपको आगे भी सुनता रहूँ, बड़ी खुशी हो रही है आपका प्रोग्राम सुनकर। मैं कराची पाकिस्तान से राशिद नाज बात कर रहा हूँ।
0: थैंक यू सो मच सर अपना वॉइस नोट पहुंचाने के लिए और इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनने के लिए, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं किसी भी खूबसूरत सॉन्ग में हमें शामिल कर लीजिएगा। और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं हमें अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं। लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं राधे राधे खुशी जी, आपको भी राधे राधे सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आ रहे हैं लगातार, तो उनको भी हम शामिल करेंगे। एंड दोस्तों आज बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल अभिनेत्री का भी बर्थडे है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लौट कर आएंगे तो बताएंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा और बने रहना है खुशी के साथ, मुस्कुराते रहना है। इस सुहाने से मौसम में आज क्या बनाने का मन है आपका, ज़रा बताइए हमें, शायद आपसे हमें कुछ आइडिया मिल जाए। तो सुनने वाले तमाम श्रोता भी शायद आपकी जो रेसिपी आज आप बनाने वाले हैं, जो कोई डिश आप अगर बनाने वाले हैं, वो सामने वाले को भी पसंद आ जाए, आपकी एक प्यारी से मैसेज की वजह से शायद किसी और का भी दिन खूबसूरत हो जाए। तो बताइएगा ज़रूर आज आप क्या बना रहे हैं स्पेशल।

0: बिल्कुल दोस्तों, जब बारिश आती है ना तो मौसम अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, और जब खुशी का शो आए तो मौसम और भी ऑसम लगता है, राइट ना? दोस्तों आज मैंने अभी बात की थी ना कि अभी लौट कर आने वाली हूँ, बताने वाली हूँ मैं आपको कि एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत अभिनेत्री का आज बर्थडे है। तो दोस्तों आज जन्मदिन है बॉलीवुड की दमदार और बेहतरीन अभिनेत्री हुमा कुरैशी का। दोस्तों 28 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में जन्मी हुमा एक साधारण परिवार से थी। उनके पिता सलीम कुरैशी रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि उनकी माँ अमीना कुरैशी गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं। उनके भाई शाकिब सलीम भी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। दोस्तों हुमा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। कई बड़े विज्ञापनों में काम करने के बाद उनकी प्रतिभा पर फिल्म जगत की नजर पड़ी। साल 2012 में फिल्म गैंग्स ऑफ बासपुर से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी पहली ही फिल्म से ये साबित कर दिया कि अभिनय से असली पहचान उन्हें मिली। एंड और कहते हैं ना दोस्तों कि अभिनय में असली पहचान हुनर से बनती है। इसके बाद उन्होंने एक थी डायन, डेढ़ इश्किया एंड बदलापुर, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अपना मतलब काम किया है। बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है और कई ब्यूटीफुल किरदार भी उन्होंने निभाए हैं। तो हुमा जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप तक बताने वाली हूँ, आप तक पहुँचाने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, चिपके रहना है। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आए हैं। मैंने आपसे मालूम किया है दोस्तों कि सुहाने से मौसम में आज आपके घर में क्या स्पेशल डिश बन रही है, क्या आप बना रहे हैं स्पेशल रेसिपी, जरा हमें भी बताइए। हमारे श्रोताओं तक भी पहुँचेगी आपकी दिल की बात है, क्योंकि पता नहीं शायद आपकी एक मैसेज से किसी और को भी हेल्प मिल जाए, क्योंकि तमाम हमारे श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, कुछ आइडिया उनको भी मिल जाए, वो भी कुछ स्पेशल बनाए। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, राधे राधे, सच्चाई की राह कठिनाई कठिन जरूर होती है, सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन मंजिल हमेशा सम्मान देती है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज अपना पहुँचाती हैं सपना शर्मा जी, भूपी शर्मा जी, उत्कर्ष शर्मा एंड वेदिका कौशिक। और ये मैम एक गाने की रिक्वेस्ट हमें पहुँचाती हैं, पूरी कोशिश करेंगे मैम इसको प्ले करने का, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। उसके अलावा मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो गुड मॉर्निंग दी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। निखत फातिमा जी अपना मैसेज पहुँचाती हैं और ये कहती हैं, दी आज हम खाने में बना रहे हैं गर्मा गर्म पीली तहरी। ओ हो हो हो, क्या बात है, मटर आलू की बना रहे हो, किस चीज की बना रहे हो? हाँ मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। अरे वाह, क्या बात है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है यहाँ पर गुजरात से मधुबाई चौहान जी का, कहते हैं जय श्री कृष्णा, आपको भी जय श्री कृष्णा। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से निशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर, इनको भी हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो चलिए दोस्तों आप भी अपने मैसेज हमें पहुंचा दीजिएगा, इंतजार है। एंड अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद कुछ म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद खुशी आने वाली है और अभी आपको बताने वाली है हुमा कुरैशी जी के जर्नी के बारे में, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप तक पहुँचानी है, तो बस आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी जूली LLB 2 से पुष्पा पांडे और काला में जरीना के रूप में उन्होंने हिंदी के साथ तमिल सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं हुमा कुरैशी के बारे में। आज उनका बर्थडे भी है। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत अभिनेत्री हैं एंड उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनकी फिल्में भी बहुत ही खूबसूरत रही हैं। और हमने आपसे पूछा था कि दोस्तों, इतना प्यारा सा मौसम है बाहर का, तो आज क्या स्पेशल आप बनाने का सोच रहे हैं? तो हमारे पास इतने सारे मैसेज आए हैं, आई कांट बिलीव दिस यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे श्रोता इतने एक्टिव हैं और इतनी प्यारी प्यारी डिश बना रहे हो। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं आपके घर आ जाऊं, पर क्या करूं, आ नहीं सकती। दिल है कि मानता नहीं। हाँ, और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है रिया का, कहती है गुड मॉर्निंग खुशी मैम।

मैम आपकी आवाज सुबह को और भी खूबसूरत बना देती है। आज मौसम इतना सुहाना है कि हमने सोचा कि कुछ स्पेशल बनाया जाए और आज हमारे घर में शाही पनीर, जीरा राइस और गर्मा गर्म तंदूरी रोटी बनने वाली है। आप बताइए आपका फेवरेट क्या है। ओहो हो भैया, देखो आप जो बना रहे हो ना, सच बता रहे हैं, हमें बहुत पसंद है पनीर की सब्जी, चाहे वो शाही पनीर हो, मटर पनीर हो या फिर पालक पनीर हो। बताएंगे बताएंगे हमारा फेवरेट क्या है आपको। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दीपशिका का और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, सबसे पहले तो आपकी प्यारी आवाज के लिए ढेर सारा प्यार। आज की ठंडी ठंडी बारिश और सुहाने मौसम में हमारे घर में इन्होंने बताया है पनीर, बटर मसाला और गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर खाने का मजा ही अलग होता है जब पूरे परिवार के साथ हम खाना खाते हैं मिलकर। एग्जैक्टली राइट यार। और आपका शो सुन रहे हैं, खाना बनाते बनाते आनंद दो गुना हो जाता है। अरे वाह, थैंक यू सो मच दीपशिका। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर रोहित जी का आया है और ये कहते हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, आज का मौसम दिल खुश कर देने वाला है एंड आपकी बातें सुनकर हमने भी तय किया है कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए और हमारे घर में आज बन रहा है। इन्होंने बताया है कि आज इनके घर बन रहा है बूंदी का रायता एंड इन्होंने बताया है कि काशी फल और सलाद तैयार हो रही है। आपका शो हमारी सुबह को हमेशा खास बना देता है। अरे वाह, वैसे आपका ये मैसेज भी हमारे लिए बहुत खास होता है। उसके अलावा ललिता जी हमें कहती हैं कि मैम आज हम खाने में बना रहे हैं सोयाबीन की सब्जी साथ में गर्मा गर्म रोटियां। अरे वाह क्या बात है, वैसे सोयाबीन की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। और हमारे पास गुजरात से मैसेज आया है, ये सर कह रहे हैं कि हम तो गर्मा गर्म काढ़ा का भजिया बना रहे हैं। मैं समझ नहीं पाई, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ मैं सर, बट थैंक यू आपने अपना मैसेज पहुंचाया है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर अमरोहा से नेहा जी का आया है, कैसी हैं खुशी मैम आप, मैं ठीक हूँ, हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है। ये मैसेज हमें 10:24 पे मिला था और अभी हमने शामिल किया है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, नमस्ते दीदी, मेरा नाम मोहिनी सैनी है और मुझे एक गाना सुनना है। ये मैसेज अपने पहुँचाती हैं कुंदनपुर मुरादाबाद से, सॉरी। तो चलो दोस्तों अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलने वाली हूँ आपको सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान और गर्मा गर्म लजीज खाने का लुफ्त उठाइए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और अपने हर दिन को, हर एक पल को अच्छे से जीजिएगा। जिंदगी का मजा तभी है जब हम हर पल को खुशी खुशी बिताते हैं, इंजॉय करते हैं अपनों के साथ एंड बहुत सारी बातें कर ली है मैंने। तो चलो अभी मुझे दीजिएगा इजाजत, मैं चलती हूँ। ये लड़की जब बोलती है ना तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। हाँ तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन, मुस्कुराते रहा करो, फ्री की स्माइल है लेकिन इससे फायदे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो जो चीज मुफ्त में मिलती है ना उसका लुत्फ उठाना चाहिए।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
3: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
2: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई। यार यहाँ इतने मच्छर कहाँ से आ गए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट RJ रीना। आज हम बात करेंगे, उफ अरे भाई, यहाँ प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन लगता है कि जो हमारे यहाँ फूलदान है उनमें मच्छरों ने अपना घर बना लिया है और पार्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज के कार्यक्रम की अपने सेहत सही लाभ कई की कड़ी की, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका बरसात के साथ साथ एक लंबा रिश्ता है।
4: नमस्कार आरजीना, किसका रिश्ता किसके साथ लंबा है भाई? अब हमारा रिश्ता भी आपके साथ, माफ करिएगा, हमारे अपने सामुदायिक रेडियो के साथ बहुत लंबा हो गया है।
3: नमस्कार भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका और सेहतिया भैया का रिश्ता पूरे समुदाय के साथ तो था ही, लेकिन रेडियो के साथ भी काफी लंबा हो गया है और उम्मीद है कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। आप हमें ज्ञान देंगी और हम उसका लाभ
4: ही ज्यादा काटते हैं, खासकर सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे के बीच। ये छोटा काला सफेद धारीदार मच्छर होता है और जब ये डेंगू वायरस वाला मच्छर काटता है तब आदमी 5 से 6 दिन के अंदर बीमार पड़ जाता है।
3: तभी तो मैं परेशान थी, सर्दियों में बहुत मच्छर थे, अब ये मच्छर भागने के नाम ही नहीं ले रहे हैं और फिल्ट भी किया। तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं भाभी?
4: डेंगू में तेज बुखार अचानक चढ़ जाता है, सिर दर्द, आंखों के पीछे जलन, बदन में दर्द, भूख कम लगना, शरीर पर चटके, उल्टी या मिचली, ये सब हो सकता है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो नाक मुंह से खून बहुत ज्यादा, उल्टी, बेचैनी, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत, ये गंभीर लक्षण होते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
3: अरे तो क्या इसका इलाज हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर है क्या, जहां लोग जाकर इलाज करवा सके?
4: क्यों नहीं, हमारे हर नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर डेंगू का टेस्ट होता है और जिस हिसाब से लक्षण दिखते हैं उसी हिसाब से इलाज होता है। पर ये भी जान लो कि डेंगू का कोई खास इलाज नहीं होता।
3: भाभी, जब डेंगू की कोई खास दवा नहीं है तो क्या लोग क्या करें?
4: डेंगू का कोई पक्का इलाज नहीं होता, पर इसका इलाज लक्षणों के हिसाब से होता है, जैसे बुखार कम करना, खूब सारा पानी पीना और अगर जरूरत पड़े तो खून या प्लाज्मा देना। और ये सब हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के समक्ष स्वास्थ्य कर्मी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एस्प्रिन या इब्रुफेन नहीं लेना चाहिए, सिर्फ पैरासिटामोल की गोली चलेगी।
3: समझ गए भाभी, अब बताइए ये मच्छर पैदा कहाँ होते हैं?
4: ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर, बाल्टी, फूलदान, टंकी, फ्रिज के नीचे, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने टायर, जहाँ भी साफ पानी जमा हो जाए। और सोचो, इसके अंडे बिना पानी के भी 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं।
3: भाभी, मैं भी यही कह रही हूँ कि ऑफिस के सारे गुलदस्ते बाहर रख देने चाहिए, क्योंकि हर घर में खतरा छुपा बैठा है।
4: एकदम, इसीलिए हफ्ते घर के सारे पानी वाले बर्तन धोएं, कूलर खाली करो, आसपास सफाई रखो, इसे कहते हैं वीकली ड्राई डे। सबसे सस्ता और साधारण उपाय है, पानी जमा ही मत होने दो।
3: भाभी, और क्या क्या उपाय होते हैं मच्छर को रोकने के लिए?
4: और अगर रास्ता और किफायती उपाय चाहते हो तो ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। डेंगू से बचाव के लिए हमें कई स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत सुरक्षा के तहत पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना चाहिए और बच्चों को दिन में भी मच्छरदानी में सुलाना चाहिए।
3: अच्छा अच्छा, पर आपने कई स्तर की बात की है, तो बाकी के स्तर?
4: अरे तो पूरी बात तो सुनो, जैविक उपयोगों में पानी की टंकी और तालाब में गबूसिया जैसी मछलियाँ डालनी चाहिए जो मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं। साथ ही बायोसाइट का उपयोग भी करना चाहिए। पर्यावरण की देखभाल में छत, पोल्टिको और सनसेट की नियमित सफाई, पानी को ढककर रखना और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।
3: ईके पर इसमें हमारे रेडियो या सामुदायिक का भी कोई योगदान हो सकता है क्या?
4: फिर वही बात, पूरी बात तो सुनो। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जैसे रेडियो, पोस्टर और लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और हाँ, सामुदायिक की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसमें मोहल्ले के लोग मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें।
3: भाभी, आप तो डेंगू की डॉक्टर निकली। गांव में कई लोग सोचते हैं कि बस बुखार है, दो दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे?
4: मैं तो बस इतना ही कहूँगी, मत सोचिए, चल दीजिए। हर तेज बुखार डेंगू हो सकता है, इसीलिए तुरंत नजदीकी AAM, PHC, CHC या आशा दीदी से संपर्क करो। जल्दी पता लगेगा तो इलाज भी आसान होगा।
3: और अगर किसी को डेंगू हो जाए तो घर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
4: डेंगू के मरीज की देखभाल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मरीज को अधिक मात्रा में पानी पिलाना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बुखार और दर्द के लिए केवल पैरासीटामोल दें, एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाइयों से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि ये हालत को और बिगाड़ सकती है। इलाज हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें, खुद से कोई दवा ना दें। साथ ही ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि मरीज के आसपास मच्छर ना पनपे, जिससे बीमारी अन्य लोगों में ना फैले।
3: भाभी, आपने जैसा कि बताया था कि इस श्रृंखला के बाकी एपिसोड की पोषण हर बीमारी से लड़ने का पहला हथियार होता है, तो डेंगू से लड़ने के लिए क्या क्या खान पान होना चाहिए?
4: हाँ, अब लग रहा है कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनती हो और पल्ले से बांध लेती हो। डेंगू के मरीज के लिए खान पीन का ध्यान कैसे रखा जाए, इस बात का कुछ साधारण उपाय हैं। डेंगू में शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसीलिए सही खाना और भरपूर पानी पीना बहुत जरूरी होता है। इससे शरीर की ताकत भी बनी रहती है और जल्दी ठीक होने की मदद मिलती है।
3: अरे भाभी, तो बताइए तो क्या करना होगा हमें अगर डेंगू से ग्रसित हो जाए कोई तो?
4: हाँ हाँ, बता रही हूँ। तुम भी ऐसे उतावली हो रही हो जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट के लिए उतावले होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि डेंगू में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी पीना भी बहुत फायदेमंद होता है, इससे शरीर के नमक इलेक्ट्रोलाइट की भरपाई होती है। ORS यानी नमक चीनी का घोल, या बाजार नहीं है तो आंगनवाड़ी से मुफ्त मिलने वाला पैकेट का ORS देना चाहिए, जिससे शरीर में पानी और ताकत बनी रहे।
3: अरे भाभी, तो बताइए तो खाने का भी तो बताइए, इतना इंतजार करना पड़ेगा।
4: अरे बहन, आज क्या हो गया है तुम्हें, इतना उतावलापन? खैर, तो चलो अब बात करते हैं खाने की। तो डेंगू में ऐसा खाना चाहिए जो पचाने में आसान हो, हाँ, और शरीर को ताकत दे, जैसे फल, पपीता, अनार, संतरा। जैसे फल बहुत फायदेमंद होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है जो प्लेटें बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। हरी सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सहजन के पत्ते, इनमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हैं। दूध, अंडा, चिकन, मछली और पनीर, ये सब चीजें शरीर के अंदरूनी घाव भरने में मदद करती है। दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल जैसे चीजें जो पचाने में हल्की हो और ताकत भी दे।
3: तो इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो ये भी बता दीजिए भाभी कि किस किस चीजों से बचना चाहिए।
4: तले भुने तेल मसाले वाले खाने से परहेज करना चाहिए, ये पेट को और कमजोर बना देता है। बाजार की मीठी चीजें और पैकेट वाले खाना नहीं खाना चाहिए। चाय, कॉफी या शराब जैसी चीजें बिल्कुल नहीं, ये शरीर को और सुखा देती है और बीमारी बढ़ सकती है।
3: हाँ हाँ, बताइए बताइए, मैं तो आपसे जितनी भी ज्ञान लूँ ना उतना ही कम है, संकोच बिल्कुल भी नहीं करती मैं।
4: अच्छी बात है, फिर ये भी सुनती जाओ, पपीते की पत्ती का रस। कुछ अस्पतालों का कहना है कि ये प्लेटें बढ़ाने में मददगार हो सकता है, लेकिन अभी और रिसर्च की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, इससे शरीर को ताकत मिलती रहती है और भूख भी बनी रहती है। और सबसे जरूरी है, अच्छी नींद लो, पूरा आराम करो, तभी शरीर जल्दी ठीक हो पाएगा। पानी खूब पियो।
3: भाभी, ये तो आप बहुत बढ़िया बता रही है, लेकिन एक बात और बताइए, डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कुछ डूज और डोज भी समझा दीजिए।
4: ये कुछ और जरूरी बातें भी ध्यान में रखो। डेंगू से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद आवश्यक है। जिन बर्तनों में रोजाना पानी नहीं इस्तेमाल होता उन्हें हमेशा उल्टा करके रखना चाहिए ताकि पानी जमा ना हो। फूलदान, पौधों की तस्तरियां और फ्रिज के पीछे जमा पानी को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। अगर छत, आंगन या नालियों में पानी रुकता हो तो उसे तुरंत साफ करवाना चाहिए नालियों को खुला ना छोड़ें, उन्हें ढक्कन से ढकें या मच्छरदानी जैसी चीजों का उपयोग करें। साथ ही मोहल्ले में साफ सफाई बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वही कुछ बातों से बचना भी उतना ही जरूरी है। बरसात के बाद किसी भी बर्तन, गड्ढा या टायर में पानी जमा ना होने दें। बेकार पड़े कूलर या अन्य बर्तनों को हफ्ते तक बिना सफाई के ना छोड़ें। बुखार आने पर उसे हल्के में ना लें और इलाज में देर ना करें। अगर मच्छर दिखाई दे तो उन्हें नजरअंदाज ना करें, तुरंत उपाय करें। और सबसे जरूरी, सफाई को केवल घर तक सीमित नहीं रखना, घर के बाहर और आस पड़ोस की सफाई भी बराबर ध्यान दें।
3: वाह भाभी, आपने तो बहुत ही कमाल की बातें बताई। अब हर कोई ध्यान रखेगा क्या करना है और क्या नहीं। भाभी एक सवाल और, बिहार और यूपी में डेंगू के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना?
4: हाँ बहन, 2024 में बिहार में 10,157 केस थे और 16 मौत हुई थी। यूपी में 15,845 केस और 8 मौत हुई थी। ये बीमारी मजाक नहीं है, सबको मिलकर रोकना पड़ेगा।
3: आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अब आखिर में डेंगू के खिलाफ एक संदेश दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
4: डेंगू से डरना नहीं, उससे लड़ना है। मच्छरों को पनपने मत दो। हर हफ्ते घर के कोने कोने में झांको और याद रखो, साफ गांव, स्वस्थ गांव।
3: बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी, आपने इतनी जरूरी बातें ऐसी अच्छे अंदाज में समझा दी। श्रोतागणों, आप भी डेंगू से बचाव में अपना योगदान दें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अब तक के लिए साफ आंगन की रखो पहरेदारी, डेंगू से मिले पूरी सुरक्षा की तैयारी।
2: FM मुरादाबाद से मैं हूँ आरजे रीना, और आज हम आए हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ डेंगू से रिलेटेड उनके बारे में क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो आज हम आए हैं यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करने के लिए। सर आपका नाम?
5: डॉक्टर अर्पित गोयल।
2: अर्पित गोयल, हाँ। सर तो ये बताइए कि डेंगू जैसे फीवर होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें डेंगू ही फीवर है?
5: डेंगू के लक्षण होते हैं बुखार होना, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द रहना, शरीर में चकत्ते पड़ जाना और उल्टी हो जाना, ये सब डेंगू के लक्षण होते हैं। वो हम थर्मामीटर के थ्रू पहले बुखार नापेंगे और फिर पता लगेगा कि बुखार कितना है। फिर इसका टेस्ट होता है, 2 से 7 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है कि जब हमारा बुखार और लक्षण रहते हैं। इसमें अधिकतर कोई ज़्यादा कोई दवा नहीं होती है। बुखार के लिए हमें नॉर्मल पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन के नाम से भी आती है जो दवा, वो देनी होती है। बुखार कंट्रोल करने के लिए खूब पानी पीना होता है, दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना होता है, और शरीर में दर्द के लिए दर्द की दवा दी जाती है। और इसको हम मेनली ये होता है मच्छर के काटने से, जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है उसके काटने से होता है। तो इससे बचाव हम ऐसे कर सकते हैं कि हम घर में जो रेपेलेंट्स होते हैं, मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, वो मार सकते हैं। और ये जो मच्छर है ये मोस्टली साफ पानी में पनपता है, तो हम जो जितना भी पानी इकट्ठा होता है हमारे घर में आसपास, वो पानी हम हटा सकते हैं। साफ सफाई रखें हम घर पे, और पेट्रोलियम जो होता है वो डाल करके, अगर कोई पानी का काफ़ी समय से हम साफ पानी अगर इकट्ठा हुआ है, यही सब हो। डेंगू का कोई ऐसा डेफिनेटिव कोई टीका भी कोई वो नहीं आई है वैक्सीनेशन, तो मोस्टली इसको हमें प्रिवेंट करना होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है इसके ट्रीटमेंट के।
2: अच्छा सर, क्या गंभीर डेंगू का कोई इलाज हो सकता है?
5: गंभीर डेंगू का भी इलाज होता है, वो हम टर्शरी केयर सेंटर पे हम देखते हैं उसमें क्या क्या पेशेंट को सिम्टम्स हैं। और इसमें मोस्टली प्लेटलेट काउंट हमारे काफ़ी गिर जाते हैं। अगर मरीज के प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाते हैं और उसको शरीर में कहीं से भी खून निकल रहा होता है तो हमें प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं मरीज को, या फिर 10,000 से कम होते हैं और शरीर में से कहीं से खून नहीं आ रहा था तब भी हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं मरीज को, वो मरीज की कंडीशन देख के और उस हिसाब से हमें पूरा इलाज देना होता है उसको।
2: और जो हमारे लिसनर सभी हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि डेंगू से हमें कैसे बचना चाहिए?
5: डेंगू से बचाव के लिए हमें पहले तो घर में साफ सफाई और जो साफ पानी है उसको इकट्ठा होने से रोकना है। दूसरा, कभी भी बुखार जैसा लक्षण दिखता है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, घबराना नहीं है, उसके लिए इलाज लेना है। खूब अधिक मात्रा में पानी पीना है, 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना है दिन में। और अगर डेंगू आता भी है जांच में तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो जो तुम्हें दिक्कतें हैं उसका इलाज लेना है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद मरीज ठीक हो जाता है और इससे कोई घबराने की दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है हमें और इलाज लेना है और इलाज से ठीक हो जाता है।
2: सर, मैंने बहुत से ऐसे मतलब आदमियों से मिली हूँ जिनको फीवर होता है और वो बोलते हैं कि मतलब इग्नोर मारते इसको, कुछ नहीं होगा, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे?
5: इग्नोर नहीं मारना है हमेशा, कभी भी बुखार आता है पहले तो अगर शरीर टूट रहा है या ऐसा शरीर गर्म लग रहा है तो हमेशा आपको थर्मामीटर लेके या पास में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उधर जाके आपको पहले थर्मामीटर से बुखार नपाना है, उधर आपको दवा लेनी है। और अगर वहाँ पे जो NS1 एंटीजन टेस्ट होता है डेंगू का, उसमें अगर डेंगू आता है तो भी घबराना नहीं है। अगर कहीं से खून आता है, कहीं शरीर में छकत्ते पड़ जाते हैं तो ज़रूर दोबारा से डॉक्टरों को आके दिखाना है और स्वास्थ्य की सेवा, प्राथमिक सेवा लेनी है उनसे और घबराना नहीं है और हमें इलाज लेना है उसका सही तरीके से।
2: ओके, थैंक यू सो मच सर।
4: आइए हम सब मिलकर लेते हैं एक शपथ।

0: हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
4: अपने दिल में बसा लो, अपनी बाहों में भर लो, आज जी भर के हमसे मोहब्बत कर लो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, पिछले दो कार्यक्रमों में हमने गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS, पोषण और माध्यम तथा गंभीर अनीमिया में IBFCM जैसे उपचार विकल्पों के बारे में बात की थी। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ, क्या माँ का प्रसव के बाद कमजोर होना सामान्य है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है और इसका असर माँ और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी और साथ में टीकन देवी जी। सेहतिया सिंह जी, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोर होना तो सामान्य बात है, क्या ये बात सही है?
1: देखिए, प्रसव के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है, इसलिए कुछ थकान महसूस।
2: बिल्कुल, हमारे ही इलाके की शबाना की कहानी सुनिए। शबाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी शबाना को लगातार कमजोरी रहती थी। वह जल्द ही थक जाती थी, बच्चे को गोद में लेकर ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी। घर वालों ने कहा, अभी अभी बच्चा हुआ है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने घर आकर हालचाल पूछा और आगे जांच की सलाह दी, तब पता चला कि उसे अनीमिया है। उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका सहयोग किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हुई और वह अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से कर पाई।
0: यानी प्रसव के बाद की कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए?
2: बिल्कुल।
0: सेहतिया जी, प्रसव के बाद अनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या बच्चे पर भी?
1: माँ और बच्चे दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित हो सकती है।
0: और बच्चे के संदर्भ में?
1: जब माँ स्वस्थ रहती है तो वह अपने नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाती है, इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जांच करवानी चाहिए?
1: हाँ, अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दे या महिला में कमजोरी और अन्य लक्षण बने रहें तो जांच करवाना जरूरी है।
0: यानी प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद की देखभाल दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देते हैं।
0: टीकन देवी जी, शबाना की कहानी सुनकर एक बात समझ आती है कि कई बार महिलाएं खुद भी अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर देती हैं।
2: बिल्कुल, प्रसव के बाद अक्सर महिला का पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है। वह सोचती है कि पहले बच्चे की जरूरतें पूरी हो, अपनी तकलीफ बाद में देखेंगे, लेकिन यही सोच कई बार परेशानी बढ़ा देती है।
0: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रखती है?
2: जी हाँ, हमारे समाज में यह बहुत आम बात है। अगर बच्चा रो रहा हो, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी, चक्कर या थकान के बारे में बताने से भी हिचकिचाती है। कई बार उसे लगता है कि लोग कहेंगे कि वह शिकायत ज्यादा कर रही है।
0: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, बच्चे की देखभाल जितनी जरूरी है, माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
0: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद महिलाओं के जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, क्या यह भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है?
1: बिल्कुल, बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़ता है, आराम कम हो जाता है, शरीर प्रसव से उबर रहा होता है और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है।
0: यानी ये समय केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए इस समय परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर महिलाओं को आराम का समय मिले, उनकी बात सुनी जाए और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए तो उसकी रिकवरी बेहतर हो सकती है।
0: टीकन देवी जी, क्या परिवार कभी अनजाने में ऐसी बातें कह देता है जिसे महिलाएं अपनी परेशानी बताने से बचने लगती हैं?
2: ऐसा अक्सर होता है, जैसे कोई कहता है हमारे समय में भी ऐसा ही होता था, थोड़ी कमजोरी तो सामान्य है, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में ये बातें सामान्य लगती है, लेकिन इससे महिला अपनी समस्या बताना बंद कर सकती है।
0: यानी उसकी बातें सुनना भी देखभाल हिस्सा है?
2: बिल्कुल, अगर महिला बार बार कह रही है कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या वह पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रही है, तो उसकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए।
0: सिहतिया सिंह जी, क्या प्रसव के बाद स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क बनाए रखना जरूरी है?
1: बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया, अब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतें खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह, घर पे मुलाकात और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है।
0: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती?
1: बिल्कुल नहीं, वास्तव में प्रसव के बाद का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गर्भावस्था का समय।
2: और मैं सभी परिवारों से कहना चाहूंगी कि जब घर में नया बच्चा आता है तो केवल बच्चों की खुशियां मत मनाइए, उस माँ का भी ध्यान रखिए जिसने उसे जन्म दिया। उसकी सेहत, उसका आराम और उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: सचमुच स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती है। टीकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है?
2: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है और माँ की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
0: परिवार क्या कर सकता है?
2: सबसे पहले तो माँ को पर्याप्त आराम मिले, इनका ध्यान रखे। दूसरा, उसे समय पर पौष्टिक भोजन मिले। तीसरा, अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत हो तो परिवार उसका साथ दे। चौथा, अगर कोई दवा या पूरक खुराक दी गई हो तो उसे नियमित रूप से लेने में मदद करे। और सबसे जरूरी बात, उसकी कमजोरी या परेशानी को नजरअंदाज ना करे।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात। सिहतिया सिंह जी, पिछले कार्यक्रम में हमने IFA, MMS और IBFCM के बारे में बात की थी। क्या प्रसव के बाद भी डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है?
1: बिल्कुल, हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए आगे देखभाल, दवाओं या पूरक खुराक के बारे में वही सलाह माननी चाहिए जो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर दे।
0: यानी अपने मन से दवा बंद या शुरू नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही, स्वास्थ्य केंद्र की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात तो साफ हुई कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया जाए।
2: अगर प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी हुई है, चक्कर आते हैं या शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा हो तो इसे सामान्य मानकर टालिए मत।
1: समय पर जांच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ की रिकवरी बेहतर हो सकती है, और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देख भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
0: तो चलते चलते कार्यक्रम की चार महत्वपूर्ण बातें याद रखिए दोस्तों। पहली बात, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है। दूसरी बात, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज ना करें। तीसरी बात, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच जरूर करवाएं। चौथी बात, माँ को पौष्टिक भोजन, आराम और परिवार का पूरा सहयोग दें।
2: माँ की सेहत पर ध्यान देना, बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना
1: और समय पर पहचान तथा उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ला सकती है।
0: इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम में मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से। और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहां जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन पिलाई जाती है। और

0: तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग टीडी का वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
0: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो टीडी टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को। इससे माताओं को भी डिप्थीरिया, जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है, डिप्थीरिया से बचाव होता है और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
0: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
0: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उप केंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और अब मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगा।

0: की सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था। सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए। और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
0: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है। और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है। ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारत वर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है। और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस

तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां। तेरे मेरे फासलों के बीच छुपी हुई है बहुत सी नजदीकियां।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथी यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है मैम।
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं, जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने पाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ आप रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: हैं। फैमिली ज्यादा
3: है। जी मैम,
2: हमारे जो माननीय के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया, एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन,
2: जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
5: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
5: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुँचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
5: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
5: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थाई किसानों और बाजारों में आता है।
5: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
5: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
5: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
5: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
5: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप, और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, अपना टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है, और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त हैं और एक और दोस्त हैं। तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया। नया जब हम आप लोग एफएम पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, तो कुछ नया है।
3: कुछ नया है
2: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
3: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ आरएसएम पब्लिक स्कूल
2: जी
3: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
2: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है। तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाय करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
2: जी।
4: मैं कुमकुम आप सबकी प्यारी दोस्त फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
2: जिसका नाम है सोच बदलो।
4: जिसका नाम है सोच बदलो।
2: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
5: हेलो एवरीवन, मैं आरजी रीना, आप सभी मुझे जानते हैं, और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
2: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग। तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है, जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
3: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
2: करेक्ट?
3: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छी से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं, तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
2: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है। जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं। जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग,
3: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है। वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
2: एडवाइस
3: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारे हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
2: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है।

0: मुझे भी ऐसे लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना। बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं। मुद्दे की बात यह है, क्योंकि उनको कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
1: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
0: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
2: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोग की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
0: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें चार लोगों के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपने फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा, पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ।

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते जो हमारे

0: मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो
1: क्या
0: भी कहते
1: बात
0: हैं
1: है,
0: जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
1: करेक्ट करेक्ट। मुझे लगता है कि श्रोताओं, सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी। और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए, कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं, जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम, जरूरी है ना?
2: मैं एक बात कहती हूँ,
1: हाँ, प्लीज।
2: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं। जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है, हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
1: करेक्ट करेक्ट।
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे। बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
1: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
1: करेक्ट, सही कहा है।
2: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा।
2: हाँ,
0: चार लोग
2: अच्छे भी होते हैं।
0: चार लोग केवल निगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी होते हैं।
1: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
2: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव ही चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि NDA संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
4: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
5: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
6: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
7: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
8: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरिया के सागर और यात्रुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशो रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशो शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने

का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है महिला मंच शो में और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो लगभग हर घर, हर उम्र और हर महिला की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज का टॉपिक है सोशल मीडिया का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं, लेकिन इनके कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो आज हम जानेंगे सोशल मीडिया महिलाओं की जिंदगी कैसे बदल रहा है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और सबसे जरूरी इसे स्मार्ट वर्क में कैसे इस्तेमाल करें।
5: हाय दोस्तों, गुड वाली आफ्टरनून है और आपको भी पता है कि अकेले नहीं आते महिला मंच शो में, खुशी और आर्जेरीना जरूर आते हैं। जिस दिन आर्जेरीना आएगी खुशी भी आएगी, खुशी आएगी उस दिन आर्जेरीना भी आएगी, मतलब हम दोनों आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। और कहते हैं ना, तकनीकी तभी खूबसूरत बनती है जब वह हमारी जिंदगी को आसान बनाए, मुश्किल नहीं। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लेकिन समझदारी के साथ करना होता है। श्रोताओं, कभी कभी हम आपके पास, जैसे हमारे पास फोन आ जाता है, हम क्या करते हैं, फोन में इतने लीन हो जाते हैं कि जो हम काम एक्चुअल में करने वाले थे उसको तो बीच में ही भूल जाते हैं। कम से कम 2 घंटे के बाद हमें याद आता है, अरे यार मतलब क्या काम करना था अभी। तो इसीलिए फोन हमारे लिए, सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और नुकसान वाला है। नुकसान इसलिए है कि हम काम की चीजें ना देखकर रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं। सोचिए जिस रील्स को आप देख रहे हैं, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा डालिए जहाँ से आपको अर्न भी होएगा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलती हैं। तो इसीलिए टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप कुछ अच्छा करिए।
4: बिल्कुल रीना, आपने सही कहा है कि सोशल मीडिया पर अपना हम टाइम को हमें खराब नहीं करना है, उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। और हमारे साथ देखिए, मैं खुशी तो हूँ लेकिन एक खुशी और हमारे साथ में है, तो वो भी कुछ कहना चाहती है इस ब्यूटीफुल सेशन में। तो खुशी, आप क्या कहना चाहेंगी आज सोशल मीडिया को लेकर हमने ये कार्यक्रम चुकी है।
6: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ आपकी अपनी खुशी और आज मैं आपको बताऊंगी सोशल मीडिया के फायदे। तो आजकल सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है। महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं, होम वर्कर्स, मेकअप आर्टिस्ट, टीचर्स और आर्टिस्ट अपनी पहचान बना रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग के जरिए नई स्किल्स सीख रहे हैं, हेल्थ, फिटनेस और मेंटल वेलनेस की जानकारी ले रहे हैं, अपनी आवाज और टैलेंट दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यानी अब पहचान सिर्फ शहर तक नहीं दुनिया तक बन सकती है।
4: अरे वाह, आपने तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है और बताया भी है। अच्छा ये बताइए खुशी, आप सोशल मीडिया यूज करती हैं? ओके, तो सबसे ज्यादा कौन सी एप्लीकेशन आप चलाते हैं?
6: मैं सबसे ज्यादा यूट्यूब यूज करती हूँ। एक्चुअली अभी मेरी पढ़ाई चल रही है तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ।
4: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा माध्यम है। देखिए दोस्तों, हमारी ये प्यारी सी सखी भी अभी YouTube से स्टडी कर रही है, सीख रही है और आप भी फालतू का टाइम ना वेस्ट करके कोई ऐसी चीजें आप देख सकते हैं जिससे आप अपनी चीजों को और ज्यादा, अपनी स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए इस्तेमाल करें सोशल मीडिया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की चुनौतियों के बारे में। और कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सोशल मीडिया की कुछ परेशानियां भी हैं जैसे जरूरत से ज्यादा स्क्रीनिंग टाइम, दूसरों से कंपेयर करना, फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड एंड ऑनलाइन फ्रेंड, प्राइवेसी की समस्या। कई बार लोग सिर्फ दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखकर अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं होता है ना ऐसा खुशी?
6: बिल्कुल ऐसा होता है।
4: रियल लाइफ हमेशा सोशल मीडिया से ज्यादा खूबसूरत होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? लोग देखिए सोशल मीडिया पर देखते हैं जो कंटेंट बनाते हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, तो सब देखते हैं कि अरे ये फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, मुझे भी करना चाहिए, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी स्किल्स हैं, अपने टैलेंट हैं, तो आपकी कॉपी ना करके आप खुद का करें वो ज्यादा बेस्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
6: मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हर किसी में अलग अलग टैलेंट होता है, तो अपने अपने टैलेंट के हिसाब से सब चीजें यूज कीजिए, क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। जरूरी नहीं है कि कोई और बंदा अगर उसके अंदर टैलेंट है और वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है या कुछ भी ऑनलाइन कर रहा है तो आपके लिए भी वही ना हो। हो सकता है आप बेस्ट टीचर बन सकते हैं, बेस्ट लॉयर बन सकते हैं, इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है। तो अपने अपने टैलेंट को पहचानिए, ना कि दूसरों की सरीकत कीजिए।
4: बहुत सुपर। अब रीना को भी बोलने का मौका दे देते हैं, वो भी मुस्कुरा रही है बैठी बैठी। तो रीना आप क्या कहना चाहेंगी, जरा बता दीजिएगा।
5: देखो मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे लिए सोशल मीडिया अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आज के समय में ना चैट जीपीटी भी आ गए हमारे बीच में,
4: एआई का जमाना है।
5: हाँ, और हम कभी कभी सोचने बैठते हैं तो सोच नहीं पाते, तो यही सोचते हैं यार क्या करें। तो देखिए आज के टाइम चैट जीपीटी एआई सबसे अच्छा दोस्त है, जो कि आपको दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जाने ही नहीं देगा जब आपसे आप उनसे बात करेंगी, क्योंकि आज के टाइम में वो सबसे अच्छा वाला दोस्त बन गया है। क्योंकि हर कोई अपनी माँ का अगर नहीं सोच पा रहा है तो चैट जीपीटी से कुछ ना कुछ आइडिया जरूर लेता है, और चैट जीपीटी भी उतना ही काम करता है जितने आप उसको बताते हो। इसीलिए उसको ग्रो करने के लिए आपको भी ग्रो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप सोशल मीडिया से जो चीजें आप कॉन्टेक्ट उठा रहे हो वो सही हो। क्या पता आपके जो आइडिया है, जो आपने सोचा है, वो और भी ज्यादा उससे बेटर हो जाए। तो इसीलिए सोचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। फोन का इस्तेमाल जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ रील्स देखें, आप वहां से स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे कि खुशी ने भी बताया कि मेरे पास फोन है लेकिन मैं उसको स्टडी के लिए यूज करती हूँ। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ने जा सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, तो उनके पास फोन है घर में, बल्कि उस फोन से देखिए। फोन हमारे पास ये नहीं है कि वो सिर्फ आप कॉल पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, बल्कि आप वहां से स्टडी भी कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल वहां से सीखिए। वहां से कोई भी आपको पैसे नहीं लगेंगे, आप फ्री में, ऑफ कोर्स आपके पास, आप उसको चाहे जितनी बार रीटेक करके देखें आप देख सकते हैं। फोन है, आप उसको स्किप करके भी देख सकते हो, रीटेक भी ले सकते हो, हजार बार करो कुछ नहीं कहेगा वो, बल्कि आपको वहां से सीखने के लिए ही मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप सीख क्या रहे हो, क्योंकि अच्छी चीजें सीखनी है, जरूरी नहीं कि आपको कुछ और चीजें सीखनी है। तो हमारे घर में भी फोन बहुत यूज होता है भैया, और सबसे ज्यादा यूज करने वाली मैं ही लड़की हूँ।
4: अच्छा, आप सबसे ज्यादा, आपने बोला है कि रीना मैं ही फोन यूज करती हूँ, तो आप सबसे ज्यादा क्या फोन में रिसर्च करते हो, क्या देखते हो आप?
5: मैं यही देखती हूँ कि मतलब मैं ज्यादातर न्यूज पर फोकस करती हूँ, क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पे क्या
4: अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। अपडेटेड रहना भी।
5: बिल्कुल भी, देखो आपके पास फोन है तो उसका यूटिलाइज करो, कि हमें पता नहीं होता ना कि अगले दुनिया में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आपके आस पड़ोस में भी कुछ हो जाता है आपको नहीं पता रहता, लेकिन फोन एक ऐसा जरिया है जो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहता है। तो फोन है उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन अच्छे के लिए इस्तेमाल करिए। और आजकल पता है फोन सिर्फ कॉल चैटिंग के लिए, मैंने जैसे बोला भी था, आप वहां से शॉपिंग भी कर सकते हो, खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। मतलब फोन सिर्फ एक आसान चीज नहीं है, वो आपके लिए बवाल है। घर बैठे बैठे आपके लिए हर चीज वो आपके पास पहुंचा सकता है, बस आपने यूटिलाइज कैसे करना है वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है।
4: बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखिए महिलाओं की सफलता की अगर बात करें हम रीना, तो आज हजारों महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट बेच रही हैं, कोई कुकिंग चैनल चला रही हैं, कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है, तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है।
5: अगर आप इनमें से बन चुके हैं तो आपके पास जो भी आइडिया है वो YouTube से आप अर्न भी करने के लिए सीखिए। जरूरी है जो आपके पास स्किल है वो आप ही तक सीमित रहे, आपके आस पड़ोस तक सीमित रहे। सोशल मीडिया डिजिटल जमाना है, देश दुनिया तक अपनी बातें पहुंचाइए, क्योंकि आपके पास एक आसान जरिया है पहुंचाने के लिए।
4: बिल्कुल। और कहते हैं कि टैलेंट को अब सिर्फ मंच नहीं मोबाइल भी मिल गया है, सबसे अच्छा माध्यम है। और मोबाइल, ऐसा कोई इंसान नहीं है आज के टाइम में खुशी जो जिसके पास मोबाइल ना हो। जो एजुकेटेड है उसके पास भी फोन है, जो अनएजुकेटेड है उनके पास भी फोन है। हर कोई फोन का इस्तेमाल कर रहा है। और आपको पता है कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन हमारे इंडिया में ये अभी भी कंटिन्यू में है, लेकिन इंडिया से बाहर ये चीजें बैन हो चुकी है।
5: नहीं, यहाँ बैन हो गई है।
4: इंडिया में भी बैन हो गया है ना।
5: हाँ, कि 16 साल के जो बच्चे हैं, 16 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं।
4: बिल्कुल 18 प्लस नहीं होंगे तब तक वो फोन नहीं इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये सबसे अच्छी बात है ना यार,
5: पढ़ाई पे फोकस करिए। बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, फिर वो काम नहीं कर पाते, इसीलिए पहले एक चीज पर फोकस करिए। आगे आने वाले समय में आप और अच्छे काम कर सकते, क्या पता और अच्छा प्लेटफॉर्म आ जाए आप सभी के लिए। इसीलिए अभी का जो समय है उसे अपने काम के लिए यूटिलाइज करिए। लेकिन और भी ढेर सारी बातें करने से पहले हम यहाँ पर लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। श्रोताओं, एक बहुत ही प्यारे गाने के बाद लौट कर आते हैं, तब तक बने रही एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बचाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: हेलो एवरीवन, देखिए प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं। ये खुशी तो यहाँ पर है, खुशी और हमारे साथ है, वो भी कुछ कहना चाहती है। आज हमने शो में इतना अच्छा टॉपिक चुना है तो मैंने कहा हम अकेले ही क्यों बातें करें, अपनी खुशी को भी इधर पकड़ कर लेकर आते हैं। तो खुशी, आप क्या कहना चाहती हो?
1: जी थैंक यू मुझे यहाँ पकड़ के लाने के लिए। और जो सेगमेंट अभी चल रहा है हम उसी के बारे में।
2: देखो एक मिनट, हम पकड़ के नहीं लाते हैं, जिसके अंदर जो टैलेंट होता है वो हमारे पास अपने आप खींचा हुआ आ जाता है।
1: कि टैलेंट पकड़ के लाया है।
2: अगर श्रोताओं आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो आप भी हमारे स्टूडियो में आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, आपको भी यहाँ पर बोलने का भरपूर मौका मिलेगा।
1: जी तो मैं अब आपको बताऊंगी मेंटल हेल्थ के बारे में, इसके वजह से क्या इशू होते हैं एंड इसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं। सो अगर आपको लगे कि बार बार फोन देखने की आदत हो गई है, बिना वजह एंग्जाइटी हो रही है, लाइक्स और कमेंट से मूड बदलता रहता है, तो थोड़ा डिजिटल ब्रेक लेना भी जरूरी है। क्योंकि कभी कभी जब हम एक कप चाय परिवार के साथ बैठ के पीते हैं और बातें करते हैं या खुली हवा में वॉक करते हैं, तो वो जो चीज होती है ना, वो हमें 1000 रील्स से ज्यादा खुशी दे सकती है। तो एक छोटी सी शायरी भी है जिसे मैं बताना चाहूंगी कि स्क्रीन की चमक में खुद को मत खो देना, असली मुस्कान अपनों के बीच ही मिलती है। फॉलोअर्स बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों का साथ कभी मत खो दे देना।
2: क्या बात है,
0: बहुत खूब, बहुत प्यारी लाइनें आपने कही हैं।
2: ये तो बिल्कुल सही बात की है। और जहाँ तक तुमने फॉलोअर्स की बात करी है, बहुत से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाते हैं, सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो हर तक पहुँचे और आगे बढ़े, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फॉलोअर्स और लाइक्स नहीं बढ़े हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक मन में एक ही झिझक आती है, यार छोड़ देते इस काम को ना, क्या ही जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मतलब वो तो एक तरीके से ये हो गया कि आप वहाँ पर हार मान गए, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। कहते हैं ना, जो आपकी मेहनत है वो एक ना एक दिन रंग जरूर लेकर आती है। आपको कुछ नहीं पता कि आपकी छोटी सी पॉइंट कब किसी को अच्छा लग जाए और आप उसी से ऊपर ग्रो कर जाओ। तो इसीलिए अपने काम को जारी रखिए, हारिए मत, क्योंकि हारना तो जिंदगी में लिखा ही नहीं है। अगर हार गए तो समझिए आप खुद को भी आपने खो दिया है। इसीलिए आगे बढ़ते रहे और सुनते रहिए हमारे रेडियो, जो आप सभी के लिए सुबह से लेकर शाम तक एंटरटेनमेंट करता रहता है। तो खुशी कुछ कहना चाह रही थी।
0: हाँ तो दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही याद रखिए, सोशल मीडिया ना अच्छा है ना बुरा, उसे इस्तेमाल करने का तरीका तय करता है। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर ना मेरा भी कुछ असर हो गया, उसका मेरे ऊपर कुछ असर हो गया है इस तरह से कि जब भी मैं कोई स्टोरी लगाती हूँ ना अपने इंस्टाग्राम पर, तो मैं क्या करती हूँ, एक घंटे तक तो मैं पहले गाना डिसाइड करती हूँ कि अपने स्टोरी पर गाना कौन सा लगाना है, ट्रैक कौन सा लगाना है। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ, उसके बाद कहाँ जाके मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरी फोटो पर, मेरी डीपी पर, मेरे को मतलब फोटो पर ये गाना शूट कर रहा है, तब मैं उस स्टोरी को गाती हूँ।
2: अच्छा ये बताओ, तुम सिर्फ गानों पर सर्च करती हो स्टोरी लगाने के लिए या कुछ और चीज के लिए भी फोन यूज करती हो?
0: नेक्स्ट मैं अपना कंटेंट निकालती हूँ जो मुझे रेडियो पर प्रेजेंट करना होता है, बहुत सारी तैयारियां मैं सोशल मीडिया से करती हूँ। एंड उसके अलावा मैं न्यूज वगैरह भी पढ़ती हूँ और थोड़ा सा मैं फोन भी चलाती हूँ, लाइक कुछ वीडियोस वगैरह देखती हूँ।

0: स्टोरी लगाते हो, फोन से नहीं लगाती हो?
1: नहीं, लगाती तो फोन से ही, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मैं देखो कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा यू नो लाइक कि हाँ बोर हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कपिल शर्मा शो,
0: कपिल शर्मा जब ये खाना खाती है ना तो इसका खाने का जो निवाला है वो कपिल शर्मा के शो देखने पर ही अंदर जाता है, अदरवाइज वो ऊपर ही रह जाता है।
1: अरे अरे ऐसा तो नहीं है यार।
0: अच्छा एक और खुशी है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी खुशी कि आप फोन किस चीज के लिए यूज करती हो?
2: मैं सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए यूज करती हूँ, नेक्स्ट मुझे फोटोज क्लिक करना भी बहुत पसंद है, तो मैं कुछ नहीं तो अपनी या तो खुद की सेल्फीज लेती रहती हूँ या किसी भी जो चीज मुझे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है तो उसकी पिक्चर क्लिक करती रहती हूँ।
0: देखो तुमने अभी पिक्चर की बात करी है ना
2: जी,
0: तो कहते हैं इंसान डेली आपके पास नहीं रह सकता है, लेकिन जो गैलरी पिक्चर से भरी हुई है ना वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, यानी कि यादें बन जाती हैं हमारे पास। देखो आज अभी मैं हमारे साथ हूँ, कल के लिए यहाँ पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा,
2: सही बात,
0: लेकिन जब चीजें दिमाग में घूमेंगी तो आप उस फोटो को जरूर देख सकते हो कि यार मैं यहाँ गई थी, है ना।
2: वो फोटो सिर्फ एक फोटो नहीं होती है, वो बहुत सारी
0: एहसास होता है हमारा,
2: बिल्कुल
1: यादें जुड़ी होती हैं,
2: एकदम से उसको देख के सब रिमेम्बर हो जाता है, हाँ हमने इस टाइम पर ये किया था, ऐसे मस्ती की थी, वैसे इसको स्पेंड किया था।
0: तो वही बात है ना, पिक्चर सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, महसूस एहसास करने के लिए होता है कि जब भी आप उस पिक्चर को देखती हो आपका जो दिमाग है आपका जो ब्रेन है वो संदेश वही देता है कि आप इस दिन कहाँ पर थे, क्या मूवमेंट चल रही थी आप। तो गैलरी में जो पिक्चर है ना दोस्तों वो भी हमारी याद से डबल दुगना होता है।
2: जी
0: कहना चाहोगी आज हमारे स्टूडियो में आई हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? और जो आजकल के जेन जी हैं जो फोन यूज करते हैं, कुछ रील्स बना रहे हैं वो हार मान जाते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगी?
2: देखिए हार तो कभी माननी ही नहीं चाहिए, चाहे रील्स में हो चाहे रियल में हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश ना वहाँ तक करनी चाहिए जहाँ तक सफलता ना मिल जाए। कोशिश का मतलब ही ये होता है कि जब तक मतलब वो कोशिश सफल ना हो जाए तब तक हमें उसे करते रहना चाहिए, अगर हमने बीच में ब्रेक लगा दिया तो वो हमारी कोशिश है ही नहीं, वो सिर्फ एक ट्राई था जो हमने किया और ठीक है हो गया।
0: मतलब वही बात है ना, सपने सिर्फ बंद आंखों से देखे जाते हैं, खुली आंखों से देखे जाते हैं, और खुली आंखों से देखे जाते हैं सपने वही पूरे होते हैं।
2: बिल्कुल, और सपनों को सिर्फ देखना ही नहीं है, उन्हें हर रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करके पूरे करने की भी कोशिश करनी है,
0: क्योंकि जिंदगी जीने का मौका आपको हर दिन मिल रहा है, हर एक उगता हुआ सूरज आपको एक जिंदगी दे रहा है, नई जिंदगी दे रहा है, कुछ करो आगे बढ़ो, कुछ पीछे चीजें छूट गई है उसको आगे लेकर आओ, क्योंकि जिंदगी आपको मौका दे रही है। और देखिए श्रोताओं, चाहे आप घर पर काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी करते हैं, चाहे टीचर है, व्हाटएवर आप जो भी जिस फील्ड में हैं, अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया से हम जुड़े रहे आगे बढ़े तो उसके लिए आपको समय तो निकालना पड़ेगा। देखिए समय इतना तो किसी के पास भी नहीं होता है, लेकिन उन्हीं में से अपने लिए समय

0: था आपकी बातों में, और मैं भी सोच रही थी कि मुझे भी यार ये बोलने का मौका दें, दोनों लड़कियां अपने आप ही बातें की जा रही हैं। मैं
1: देखिए जब हम बोलते हैं तो मौका नहीं देते किसी को, मौका उनको खुद लेना पड़ता है।
0: पर कहते भी है ना कि जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो थर्ड पर्सन को बोलना नहीं चाहिए।
1: नहीं नहीं नहीं, जहाँ काम की बातें हो वहाँ आप घुस जाओ भैया, ये मत देखो कि थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है, जहाँ आपको मौका मिले काम के लिए वहाँ पीछे नहीं हटना चाहिए।
0: अच्छा ठीक है, तो हम पीछे नहीं, अब हम आगे आ गए हैं।
1: आ जाओ आ जाओ।
0: तो दोस्तों देखिए, जैसे रीना जी भी बात कर रही थी सोशल मीडिया को लेकर, इतनी सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, खुशी ने भी इवन यहाँ पर बताई हैं, तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि देखिए अगर आपके अंदर कोई स्किल है, चाहे आप मेहंदी आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, या फिर यू नो कपड़े पर आप डिजाइन बनाती हो, और उसके अलावा अच्छा कुकिंग करते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं आप उसको सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाइए, और जो भी आप चीजें, जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं डांस बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मैं बातें बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मैं शायरी बहुत अच्छी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो आप अपना अकाउंट वहाँ सोशल मीडिया पर बना सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो या फिर वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो आपका फेवरेट ऐप हो, आप उस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, और ये चीजें जो भी मैंने भी आपको बताई, कोई भी स्किल जो आपके अंदर है आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे कंटिन्यू जब आप उस चीजों को अपलोड करेंगे तो वो आप तक नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में पहुंचेंगे, और जब पूरे वर्ल्ड में पहुंचेंगी तो आप ऑलरेडी पॉपुलर हो जाएंगे, और वहां से आपको अर्न भी होगा, आपकी स्किल, आपकी स्किल्स फिर आपकी नहीं रहेगी ना, फिर काफी लोगों को आपकी हेल्प, उनको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो चीजें तो चाहिए लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पाती हैं, शायद आपकी एक स्किल किसी और की भी स्किल बन जाए।
2: बिल्कुल, क्या पता जो आप कर रहे हैं उसको देख के सामने वाला भी सीखे, यार वो तो कर रहा है, शायद मुझे भी अपनी स्किल आगे बढ़ानी चाहिए।
0: और वो बड़ी एक प्यारी सी लाइन है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
2: बिल्कुल, क्योंकि इंसान की ना एक फितरत है, वो ज्यादातर देखकर ही सीखता है, एक्सपीरियंस उसे इतने मतलब मिलते हैं उनसे नहीं सीखेगा, लेकिन सामने वाला जब कुछ कर रहा होगा ना तो उससे देख के वो बहुत जल्दी सीख जाता है। तो हमेशा अच्छा करिए, और हो सके तो सिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी स्किल तभी और ज्यादा डेवलप होगी जब आप अपना सीखा हुआ दूसरों तक सिखाएंगे। कहते हैं ना विद्या बांटने से बढ़ती है, तो आपके अंदर कोई भी टैलेंट है उसको छुपाइए मत, निकालिए, निखारिए और दूसरों तक पहुंचाइए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने खुशी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैंने देखा है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर स्किल्स तो बहुत हैं लेकिन वो किसी के सामने नहीं बयां कर पाती हैं।
2: बिल्कुल,
0: कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है जो परमिशन नहीं होती है, लेकिन कुछ लड़कियों को मैंने ऐसा देखा है कि वो चोरी चोरी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करती है, एनहेंस कर रही है, और सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर रही है, काफी अच्छे व्यूज उनके आ रहे हैं, फैमिली की परमिशन नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना और उसमें अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है, आपको करना चाहिए, क्योंकि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, अगर गलत कर रहे हैं तो डरना ठीक है, लेकिन जब आप गलत नहीं है तो क्यों डरना, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि चार लोगों का काम तो है कहना, वो कहेंगे, लेकिन आप अगर पीछे रह गए उनकी सोच के तो फिर आप पीछे ही रह जाएंगे, तो इसलिए उनकी मत सोचिए, क्योंकि कभी वो भी उस मुकाम पर थे जहाँ उन्हें भी ऐसी ही चीजों का सामना करना पड़ा, इसलिए शायद आज वो वही है, तो आप उनको मत देखिए, आप अपने आप पे फोकस कीजिए।
1: चलिए श्रोता, हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जित करा है। और
0: अच्छा ये चार लोग कौन है?
1: पता नहीं यार, वो दिकास तक दिखे नहीं है।
0: मैंने सबकी जुबान भी देखा है, मतलब सबकी जुबान से मैंने सुना है कि वो चार लोग क्या बोलेंगे, वो चार लोग कौन बोलेंगे,
1: एक्चुअली में कोई नहीं होते वो।
0: वो चार लोग कौन होते हैं दोस्तों, हमें भी नहीं पता है, अगर आपको पता है तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा।
1: नंबर बता दो पहले, तभी बता पाएंगे।
0: नंबर बता देते हैं 9237896896, ये हमारा मोबाइल नंबर है, और अगर आपका इन चार लोगों से सामना हो गया होगा ना तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा,
1: कॉन्टेक्ट करिए, हम भी मिलना चाहते हैं कि आखिरकार कौन है ये चार लोग, जो कुछ भी बात हो बीच में जरूर आती है, चार लोग क्या कहेंगे,
0: वो लोग क्या कहेंगे।
1: एक्चुअल में देखिए ये हमारी सोच बन गई है कि चार लोग क्या कहेंगे। कोई मतलब बात वही करता है जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है, वो बीच में दूसरों के आगे टांग अड़ाता रहता है कि तुम ये मत करो वो मत करो, तो उनकी मत सुनो यार, वो हमेशा बोलेंगे आपको, वो बोलने के लिए बने हैं, आप काम करने के लिए बने हो, आप काम करो सीधा बात, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपने। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ से फिर होने की इजाजत, श्रोताओ फिर मिलेंगे आपको अगले कार्यक्रम में और अच्छे टॉपिक के साथ, जहाँ पर हमारी गपशप होगी, क्या पता अगली मुलाकात आपसे ही हो जाए हमारे स्टूडियो में। तो आप सुन रहे हैं हमारा रेडियो, तो कोई स्किल है तो आइए, मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में आपका, अपनी बातें रखिए, आपके अंदर जो टैलेंट है वो दिखाइए, जरूर मौका मिलेगा आपको यहाँ पर बोलने के लिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, बहुत जोर को भूख लगेगा इस, बाय।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है। नई राह है, नई मंजिल है।

0: मुंडे कुड़ियों भंगड़ा पाउन नू तैयार हो जाओ।
1: बिल्कुल दोस्तों, भंगड़ा पाने के लिए तैयार हो जाओ तुसी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका फेवरेट शो शुरू हो चुका है हेलो फरमाइश, और ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और श्रोताओं, आप भी इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, कोई टिपिकल काम नहीं करना है। आप जो आपका मोबाइल है ना आपके हाथों में, हाँ, उसी मोबाइल से आपको मुझे कॉल लगाना है। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल सा है। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, और आपको इस पर कॉल लगाना है 98378 96 896। ये हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर है जिस पर आपको कॉल करके खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। तो चलिए अभी करते हैं अपने शो की शुरुआत और बात करते हैं अपने कॉलर के साथ। कौन हमारे साथ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी सर।
2: हेलो,
1: हेलो जी सर, क्या नाम है आपका?
2: लतीफ अहमद रीना।
1: अच्छा, ओके, कश्मीर से बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ, कश्मीर
1: जी। बताइएगा, कैसे हैं सर आप?
2: बहुत अच्छा, आप ठीक हैं मैडम?
1: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका?
2: लतीफ अहमद रीना।
1: अच्छा, बताइएगा सर, कैसा मौसम है आपकी साइड का, कश्मीर का?
2: आज यहाँ बहुत गर्मी है।
1: अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मी है?
2: आज बहुत गर्मी।
1: बारिश नहीं हुई वहाँ पर?
2: नहीं, अभी बारिश नहीं हुआ तो गर्मी है अभी।
1: अच्छा अच्छा, ओके,
2: तीन दिन से मौसम ठीक है।
1: अच्छा ठीक है, वैदर हमारे इधर तो बारिश हुई है और अभी भी बादल हैं।
2: नहीं, अभी मौसम ठीक हुआ।
1: ओके, तो बताइएगा सर, आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया।
2: नाम है सलामी।
1: हाँ जी, बताइएगा।
2: सलामी फिल्म का कोई भी गाना?
1: सनम मूवी का।
2: सलामी सलामी
1: सलामी।
2: हाँ।
1: ओके जी, तो बताइएगा, कोई भी ट्रैक प्ले कर सकते हैं ना सर?
2: इसमें आप बोलिए ना कौन कौन ट्रैक है, मैं बोलूंगा कौन चलाइए।
1: ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना। आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: शुक्रिया।
1: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं इस्लामी मूवी का एक बेहतरीन सा गाना। और आपको भी मौका दिया जाता है तो आप भी बिना किसी देरी के मुझे कॉल लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ फिर से, 9837896896। और मैं हूँ आपके साथ आपकी प्यारी सी नटखट सी लड़की, मतलब आपकी आरजी खुशी। और ये जो लड़की है ना, जब बोलना स्टार्ट करती है ना, चुप नहीं होती है। तो अभी फिलहाल मैं चुप हो जाती हूँ और आपको सुनवाती हूँ ये खूबसूरत गीत। तब तक आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, चिपके रहिए खुशी के साथ।

0: देखिए दोस्तों, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सोच में पड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हेलो फरमाइश शो शुरू होता है ना, तो सब टेंशन दूर हो जाती है जब हम अपना फेवरेट गाना सुनते हैं, है ना दोस्तों। और सच में संगीत में वो जादू है जो इंसान को हर स्ट्रेस से, हर टेंशन से दूर कर देता है और हमें अच्छा फील होता है। चाहे हमें किसी से अगर कोई बात कहनी हो तो वो हम गाने के जरिए बयां कर सकते हैं। तो ये जो संगीत है, बड़ा ही खूबसूरत एहसास है। इस सफर में आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त खुशी। और अभी हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं, कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं, उनका नाम भी जान लेते हैं। हेलो फरमाइश। सर, आपके बैकग्राउंड में तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है।
1: राम राम जी।
0: जय श्री राम। बताइएगा सर, क्या नाम है आपका?
1: बस बढ़िया है, टिंकू सैन।
0: जी टिंकू जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: आज फरमाइश है
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। और दोस्तों, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप मुझे कॉल करें ना, तो प्लीज अपने बैकग्राउंड का विशेष ध्यान रखें, आपके बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा ना हो, ताकि आपकी आवाज स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर आए और सुनने में भी अच्छी लगे और आपकी बातें भी समझ आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए, अभी सुनिएगा ये शानदार से गाना, मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मजा आइए, यूं ही मुस्कुराइए।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIGG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIGG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश। आज बाहर का मौसम वाकई दिल जीत लेने वाला हो रहा है ना, कहीं बादलों ने आसमान को अपनी बाहों में समेटा हुआ है तो कहीं हल्की हल्की बारिश धरती को महका रही है। ऐसी सुहानी फिजा में एक प्यारा सा गीत और आपकी फरमाइश बस दिन बन जाता है जब आपकी पसंद के गाने हम सुनते हैं और तमाम हमारे श्रोता, क्योंकि आपका ये गाना ना जाने कितनों को खुशी देता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी गाना सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई गाना चुन रहे हैं ना तो आप सोच समझ करके डिसाइड करते होंगे ना। जहन में अगर कोई गाना हमारे आ रहा है तो हम बहुत सारी चीज़ें हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो अपनी रियल लाइफ हो या फिर लाइक कोई भी चीज़ें, मतलब अपने ज़िंदगी से जुड़ा हुआ वो ट्रैक हम सुनते हैं जो हम खुद कनेक्ट कर पाते हैं, खुद उसको फील करते हैं। तो ऐसा कोई गाना जो आपके दिन को, आपकी दोपहर को खूबसूरत बना दे, अगर आपने भी कुछ ऐसा डिसाइड किया है ना तो आप मुझे कॉल लगाइएगा और सुनिएगा अपना फेवरेट गाना। लाखों श्रोताओं तक सुनवा सकते हैं आप अपनी पसंद का गाना, तो ये मौका हम आपको दे रहे हैं। बिना किसी देरी के ना आप मुझे कॉल लगाइएगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और वक्त भी मैं आपको बता देती हूँ, समय हुआ है 3:28 और हमारे अगले कॉलर भी इंतजार करें तो उनसे भी बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: हीराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी,
0: भगवान सिंह परमार जी बात कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं आप सर?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, आपके यहाँ तो बरसात हो रही है अभी?
0: हाँ जी, हाँ जी सर, मौसम तो ऐसा ही है, बादल हो जाते हैं तो कभी बारिश हो जाती है।
1: जी दीदी, हमारे इधर बरसात नहीं हो रही, बहुत कम बरसात हुई इस साल, तो बहुत सूखा का साल मान लीजिए।
0: अभी अभी तो सर सावन आने वाला है ना, थोड़ा इंतजार कीजिए।
1: दीदी सावन अब देखते हैं, बरसात नहीं बरसता दीदी, अभी एक महीने से ऊपर होगा बरसात का, लेकिन दीदी बहुत कम पानी गिरा हमारे इधर।
0: हाँ, आ जाएगी बारिश, क्योंकि सावन में ऐसा ना हो कि सावन आए और बारिश ना हो।
1: जी जी
0: जी, तो आप बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: दीदी फिल्म का नाम है इंडियन बाबू और गाने के बोले जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको ना बुलाना।
0: ओके, तो ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं सर, कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत, लौट कर आते हैं हम, तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और हाँ मुझे कॉल लगाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। फिलहाल ये गाना सुनिएगा।

0: एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं आरजे खुशी को अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी हमारे साथ हमारे रेगुलर लिसनर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है आज। हेलो फरमाइश।
1: हाय दी।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ। मैम,
0: दरक्षा फातिमा जी बात कर रही हैं। कॉल लगाने से पहले मुस्कुराने लगती है भाई लड़की, पूरा विश्वास है कि कॉल में लगा कर ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ
1: हाँ जी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनाए रखो अपना, खूब आके जाओगे आप। बाकी बताओ कैसा मौसम है आपकी साइड?
1: मैम मौसम तो बहुत अच्छा है फिलहाल, सुबह से बहुत बारिश हुई है।
0: अरे वाह क्या बात है, और अभी तो बारिश रुकी हुई है ना?
1: हाँ जी मैम, अभी रुकी है बारिश और हवा चल रही है।
0: अच्छा हवाएं चल रही हैं, मौसम ठंडा हो गया है, मतलब अच्छा मौसम है।
1: हाँ मैम, कल बहुत गर्मी थी ना।
0: तो बताइएगा आज आपने हमें कॉल किया है, आज कौन सा गाना है जो आपको पसंद है, आज सुनना चाहती हैं आप?
1: आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, नजर मेरे बादशाह एक वादे के लिए।
0: ओके, और ये गाना आप किन के लिए सुनना चाहती हैं?
1: ये गाना मैं अपनी दोस्त रुकैया फातिमा के लिए, और मेरी दोस्त है अफरोज फातिमा, राइबा काजमी, और मेरी अप्पी नजमा अप्पी है, और राबिया, और आप सभी।
0: ओके, तो जो नजमा है वो आपकी बड़ी सिस्टर है?
1: जी मैम।
0: ओके हाँ, उनसे भी शायद बात हुई है मेरी, बड़ा प्यारा सा बोलती है वो, शर्माती भी बहुत है।
1: हाँ मैम, एक ही बार ही बात हुई है उनसे।
0: हाँ जी हाँ जी, तो बताइएगा सब मिलकर बहने क्या प्लान कर रहे थे कि कॉल लगाना है, तो ये वाला गाना डिसाइड करेंगे या ये वाला सुनने वाले हैं?
1: हाँ मैम, यही वाला डिसाइड किया था।
0: अच्छा, तो किसने डिस्कस किया, मतलब आप लोगों ने किसने ये गाना सिलेक्ट किया कि आज ये वाला गाना सुनेंगे हम सब बहने मिलकर?
1: मेरी बड़ी अप्पी ने बताया है।
0: अच्छा ओके, पसंद उनके है, नाम आपका है? हाँ
1: जी।
0: चलिए सुनवाते हैं ये प्यारा गाना, आपने कॉल किया शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आने वाले हैं हम, और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेवर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
4: कोई मिल गया
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने बातें होती हैं दिल से दिल तक यादों का सितारा गीतों का सहारा मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6

0: क्या बात है दोस्तों, इतना खूबसूरत गाना। ओए होए, मुझे पता है कि आपके बचपन की यादें फिर से ताजा हो गई हैं। तभी तो खुशी ने ये गाना प्ले किया था कि आप भी अपने बचपन वाले टाइम में फिर से चले जाएं। और दोस्तों, जैसे ही जन्माष्टमी आती है ना, कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये जो ट्रैक मैंने प्ले किया था ना अभी, हर गली में हर मंदिर में आपको सुनाई देता है। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो राधे कृष्ण का स्वरूप गेटअप लिए होते हैं और इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में राधे कृष्ण जी हमारे ही सामने हैं। वो नृत्य, वो खूबसूरत सा मासूम सा चेहरा बहुत ही प्यारा लगता है। मैं आपको बता देती हूँ, वक्त हुआ है अभी 3:55 और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइएगा आप कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ मैम, मौसम बढ़िया करवा रखा है आपने, कभी धूप कभी बारिश।
0: हाँ, ये मौसम चेंज होता रहता है, आपको गर्मी भी जरूरी है ताकि धूप निकले तो कपड़े सूखें, और बारिश भी जरूरी है ताकि गर्मी ना लगे।
1: जी
0: मैम, आप बताइएगा अपना नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है मैम,
1: बात करने की इतनी खुशी होती है ना कि बस बात हो जाए।
0: ओके, बात करने की खुशी में अपना नाम भी भूल जाते हैं, इतना एक्साइटमेंट होता है
1: जी?
0: मैंने बोला बात करने के चक्कर में आप अपना नाम भी भूल जाते हैं, इतना एक्साइटमेंट रहता है आपके अंदर।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ओके, तो बताएगा मैम, अभी राइट नाउ वेदर कैसा है बाहर का?
1: राइट नाउ अभी थोड़ी धूप निकलनी शुरू हुई है।
0: अच्छा, ओके, चलिए अच्छी बात है, धूप निकलना भी जरूरी है मैम। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जल्दी से धूप निकले, हम भी अपने कपड़े वॉश करके थोड़ा सा उनको सुखा ले।
1: मैं भी डालकर ही आई हूँ अभी पैरिस
0: पर। ओके, तो बताएगा आज क्या सुनने का मन है आपका मैम?
1: मैम सॉन्ग सुना दीजिए, दिल रोया इलाही तो अजे मेरे
0: वाहे। ओ हो, बिल्कुल जी, आपने हमें बुलाया और हम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: हाँ जी।
0: और बताइएगा एक तो मैम, क्या हो रहा है?
1: मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, कपड़े धो कर आई थी, बर्तन साफ कर रही हूँ।
0: हाय, कितना सारी काम करती हो आप। हाँ, आराम भी क्या करूँ,
1: आराम आप करेंगे, काम करके आराम ही करेंगे।
0: हाँ, जब काम करके आराम से हम बैठते हैं ना, उसका मजा ही अलग होता है।
1: मजा अलग होता है, सही बात है।
0: वरना टेंशन ही होती है, अभी तो ये काम भी रह गया, अभी वो काम भी रह गया है
1: जी।
0: अच्छा मैम, जब आप काम करके फ्री हो जाते हैं तब आप क्या करते हैं?
1: जी थोड़ा बहुत आपका रेडियो सुन लेते हैं, फिर इंस्टाग्राम चलाती हूँ तो उस पर रील देखती हूँ, आनंद सर की रील हो रही है उससे।
0: Okay.
1: शो में, क्योंकि मैं सुबह का शो मिस कर देती हूँ ना, स्कूल जाती हूँ, तो वो अपडेट सारी बाद में देखती हूँ मैं इंस्टाग्राम पर कि सुबह क्या खा रहे वीडियो में।
0: ओके, तो वो सारी एक्टिविटीज आपको वहाँ पर मिल जाती है?
1: हाँ, वहाँ पर मिल जाती है। फॉलो किया हुआ है आपका पेज एफएम रेडियो आनंद सर का।
0: आप हमें रेगुलर एक रील भेजती हैं, बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ जी,
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: वेलकम मैम।
0: तो सुनवाते हैं प्यारा से गाना, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम, नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय।
1: बाय बाय।
0: तो चलिए विवन, सुनते हैं एकता जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक। तब तक आप भी इस गाने को भी सुनिए और मुझे भी कॉल लगाइए, दोनों चीजें साथ हो सकती हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 98-378-96-896।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
5: कोई मिल गया,
6: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, अभी आपने एक प्यारा सा ट्रैक सुना है, अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले कॉलर से, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश। सो प्लीज़ अपने जो बैकग्राउंड में आपका रेडियो चल रहा है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर दीजिएगा, तभी आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच पाएगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ एवरीवन, जब भी आप मुझे कॉल करें तो अपने बैकग्राउंड में कोई भी साउंड क्रिएट ना हो, ताकि आपकी वॉइस प्रॉपर क्लियरली आ पाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ पाऊँ, ऑडियंस भी समझ पाए, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपके बैकग्राउंड में रेडियो चल रहा है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, एंड अगर डाउन नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़ मेरे दोस्त सुने, मेरी फैमिली सुने, तो फिर आपको थोड़ा सा रेडियो से डिस्टेंस मेंटेन करना है, ताकि आपकी आवाज़ अच्छे से आ पाए। और अभी सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत।

0: क्या बात है दोस्तों, अभी आपने खूबसूरत सा गीत सुना सुखविंदर सिंह जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। और दोस्तों अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम परी है।
0: परी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? मुरादाबाद से बात कर रही हूँ। बताओ परी, कैसे हो आप?
1: मैं सही हूँ, आप कैसे हो?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा आज क्या सुनोगे परी आप?
1: मैं
0: यस

0: ओके, ये कौन सी फिल्म का गाना है?
1: हेलो,
0: बताइए कौन सी फिल्म का गाना है ये? ओके, चलो मैं आपको एक प्यारा सा गाना सुनवाती हूँ, ठीक है? या तो चलिए एवरीवन, मैं सुनवा देती हूँ परी को एक अपनी पसंद का गाना। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाना मत भूल जाना। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, उसकी टेंशन आप मत लेना। नंबर हमारा है 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर है, इस पर आपको हमें कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ आपको कनेक्ट हो जाना है। तो इतना सिंपल सा काम है आपके लिए। और एक प्यारा सा गाना मैं सुनवाती हूँ यहाँ पर फाल्गुनी पाठक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़, और गाना भी बहुत ही प्यारा है। तो सुनते हैं बिना किसी देरी के।

0: तो दोस्तों, इस खूबसूरत से मौसम में इतना प्यारा गाना अभी आपने सुना, फाल्गुनी पाठक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। तूने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। हाँ, मैंने पायल है छनकाई, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक और फाल्गुनी जी की आवाज, ओए होए होए, दिल को छू जाती है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी पसंद भी यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, बताइएगा क्या नाम है आपका।
1: जी, हमारा नाम रियाजुल है।
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
1: जी, इस टाइम बात कर रहे हैं हम संत कबीर जिले से।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप।
1: जी बढ़िया मैम, इस टाइम काम कर रहे हैं।
0: जी बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
1: जी फरमाइश थी मैम, गाना सुनना था जाल मूवी का, हम सफर के लिए हम सफर मिल गया।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत आपको। आपने हमें, हाँ जी जी जी बताइएगा।
1: अपनी मैडम को डेडिकेट करना चाहते हैं मैम।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत आपकी मैम के लिए। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में, ये प्यारा सा गाना।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी जाल, अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और म्यूजिक डायरेक्टर थे आनंद राज आनंद, लिरिक्स थे समीर जी के। और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर? हाँ जी, काफी लॉन्ग टाइम के बाद आज कार्यक्रम में आप जुड़े हैं। बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: सावन की दादी की आज भी नियत खराब है।
0: अच्छा, और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: मौसम की वजह से।
0: अच्छा, मौसम की वजह से। कैसा मौसम है आपकी साइड?
1: हमारा बादल हो रहा है। अच्छा।
0: ओके, तो अभी बादल हो रहे हैं, तो सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको सर। जी
1: हाँ।
0: आपने हमें कॉल किया सर, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक। तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा।

0: देखिए दोस्तों, प्रॉमिस तो हमने भी आपसे किया था कि हम लौट कर आने वाले हैं इस प्यारे से गाने के बाद, लेकिन इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर आई थी मीनाक्षी जी की, और आई डोंट नो कैसे उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, मुझे भी नहीं मालूम हुआ, बट इतने खूबसूरत गाने की अब उन्होंने हमसे फरमाइश की और हम पूरी ना करें ऐसे कैसे हो सकता था। श्रोताओं, अगर आप भी कोई गीत हमें हम तक पहुंचाना चाहते हैं, मतलब हम तक आप चाहते हैं कि आपकी जो फरमाइश है वो हम पूरी करें, तो उसके लिए आप हमें जल्दी से कॉल कीजिएगा। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896, और मैं आपको समय बताती हूँ। तो वक्त हुआ है 4:41, और हमारे साथ हमारी कॉलर भी जुड़ चुकी हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: नमस्ते जी।
0: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सो
1: मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल।
0: जी बताइए, क्या कैसे हैं आप? हेलो।
1: सावन को आने दो फिल्म का गाना।
0: अच्छा, यही वाला गाना सुनना है आपको?
1: नहीं नहीं, फिर गाना सुनना है सावन को आने दो का।
0: कौन से गाना सुनना है बताइए? अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा से गाना।
1: कुछ कहें मैडम? नहीं।
0: हाँ जी,
1: मैं कह रहा हूँ कुछ कहें ये नहीं।
0: क्या कहना है आपको?
1: ये एक प्रेयर कहना था मैडम।
0: जी बताइए।
1: उनकी याद एक जख्म बन गई, उनकी याद एक जख्म बन गई, वरना भूल जाने का कुछ तो ख्याल था।
0: ओके, तो चलिए सर सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद आपको।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक सर की रिक्वेस्ट पर, और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ आपके प्यारे से कॉल का।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। देखिए दोस्तों, कुछ गाने ना सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो हमारी लाइफ से ना जुड़े होते हैं। और कुछ गीत तो हमें ढेर सारी खुशियाँ देते हैं और कुछ हमारी पुरानी सी यादों को फिर से ताज़ा कर देते हैं, है ना। अभी आप अगर सफ़र में हैं, ऑन द वे कार में हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर आप घर पर बैठ के आराम से सोच रहे हैं कि चाय बनाएं या नहीं बनाएं, अभी चलो बना ही लेते हैं, शाम हो ही गई है, 4:49 हो ही गए हैं, तो जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाइए अपनों के लिए और ख़ुद के लिए भी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं बात करती हूँ अपनी कॉलर से, कौन मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी कामेंद्र बोल रहा हूँ।
0: कामेंद्र जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी हम बढ़िया मैम, आप बताइए आप कैसे?
0: मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ कामेंद्र जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी गाने के बोल हैं, तुझे गीतों में ढालूंगा, कब सावन को आने दो, सावन आने में कुछ टाइम रह गया है, इसलिए वाला गाना।
0: जी सो कल का दिन है, परसों से तो सावन स्टार्ट हो ही रहा है,
1: शुरू हो जाएगा।
0: जी तो सुनवाते हैं गीत आपको, धन्यवाद आपने हमें कॉल किया। सर मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, अभी मुझे कॉल लगाएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896।

0: कितना खूबसूरत गीत है ना साथियों, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो। और सावन आने ही वाला है, सभी को भी सब्री से इंतजार है। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि उनको भी हमारा इंतजार है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका?
1: नमस्ते मैम।
0: आपको भी नमस्ते, नाम बताइएगा अपना।
1: जी मैम, मेरा नाम रवीना है।
0: जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हो? आप कहाँ से बात कर रही हैं, प्लीज बताइएगा।
1: मैम मैं ग्राम सावरी से बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम मेरी फरमाइश है, मुझे सॉन्ग सुनना है मीठी तेरे बोल पर।
0: ओहो वाओ, वैसे तो मीठा आप भी बोल रही हैं, नो डाउट। आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, बताइएगा ये गाना आप किसके लिए सुनना चाहते हो, खुद के लिए या फिर किसी की और के लिए?
1: मैम अपने लिए सुनना चाहते हैं।
0: अपने लिए सुनना चाहते हैं, ठीक है आपको सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। हरियाणवी गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है और मासूम शर्मा जी की आवाज़ बहुत ही प्यारी है दोस्तों। तो इस हरियाणवी गाने के साथ हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति, लेकिन आए आपसे हम वादा करके जाते हैं कि हम मिलने वाले हैं कल आपसे, टुमारो मॉर्निंग मुलाकात होगी आपकी और मेरी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इस मौसम में भी ख्याल रखिएगा अपना। अगर आप भीग जाए ना बारिश में अनजाने में, तो आपको क्या करना है, घर आकर तुरंत फ्रेश वाटर से आपको फिर से नहाना है और आपकी जो गीले बाल है ना इसको अच्छे से सुखा लेना है, कपड़े चेंज करने हैं और उसके बाद अदरक वाली गर्मा गर्म चाय आपको पीनी है, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखो, बाकी मुस्कुराते रहो और सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और UPA शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे दिखावटी भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना है। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। चीन के हांगझोऊ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मेंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है कि नहीं तेनू? मैं सारे घर च लभी जाना, तू तो शदैना वांगू नची जा।
1: क्यों, की होया?
0: आ हमेशा खिजदी।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 5:21 हो चुके हैं और आरजे रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है, यानी कि 2 घंटे के लिए ढेर सारी बातें करेंगे। अपडेट बहुत सारा मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं। और आज की तारीख यानी कि 28 जुलाई और कल है 29, यानी कि कल से सावन की शुरुआत हो जाएगी। सो देखिए, सावन की शुरुआत होने से पहले ही यानी कि झमाझम जो बारिश सुबह सुबह हो जा रही है ना भैया, एकदम फैंटास्टिक वाला वेदर। और ये वेदर अभी कल का मौसम भी ऐसा ही रहने वाला है। सो बिंदास रहिए और मौसम का आनंद लीजिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

किसान भाइयों, अगर आप खेती करते हैं, खेती के काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। यानी कि अब किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के लिए बार बार बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। सरकार के ई केसीसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जमीन से जुड़ी जानकारी तैयार रखें। पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें, फिर बैंक और फसल की जानकारी भरें, आवेदन को सिग्नेचर करके सबमिट कर दें। आपका आवेदन सीधे बैंक तक पहुंच जाएगा। अगर आप खेती के साथ साथ दूध का काम, पशु या मछली पालन का भी काम करते हैं, तो आप भी केसीसी का लाभ ले सकते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, केसीसी से मिला ऋण केवल खेती और उससे जुड़ी कामों के लिए ही इस्तेमाल करें। समय पर ऋण चुकाने से ब्याज में भी राहत मिल सकती है। अगर आवेदन करने में कोई भी परेशानी आए तो घबराइए मत, अपने नजदीकी बैंक या PSCS केंद्र में संपर्क करें और सही जानकारी लेकर ही आवेदन करें। खेती को बनाइए आसान और ईकेसीसी का लाभ जरूर उठाइए। और सुनते रहिए आरजे रीना को ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेड। जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ और आप सुन रहे हैं इवनिंग मस्ती शो। और समय की बात करूं तो 5:00 यानी कि 38 मिनट हो चुके हैं श्रोताओं। और आज की तारीख हमारे लिए बेहद खास है, बहुत खास है। जरा सोचिए, अगर एक सुबह उठे और चिड़ियों की चहचहाट ना सुनाई दे, पेड़ों की ठंडी छांव ना मिले, नदियों का पानी साफ ना बहे, तो क्या हमारी दुनिया वैसे ही रहेगी? ये बात मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि आज है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। यानी कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमारी जिंदगी है। हम पेड़ काट सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। हम पानी बर्बाद कर सकते हैं लेकिन हर बूंद की कीमत तब समझ आती है जब हमें प्यास लगती है और आपके आसपास पानी ना दिखे, तब हमें असली पानी की कीमत समझ आती है। प्रकृति की रक्षा सिर्फ सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की है। एक पौधा लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, अपने आसपास साफ सफाई रखना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर धरती का भविष्य बदल सकते हैं। आज सिर्फ बातें नहीं, एक छोटा सा संकल्प ले। प्रकृति से जितना लिया है अब उसे लौटाने का शुरुआत करें। अगर आप लौटाने का शुरुआत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी, उनका सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आज से ही खुद से ही निर्णय लीजिए कि हम कदम आगे बढ़ें।

उठाएंगे, क्योंकि धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमें इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों की उधार लिया है। बिल्कुल, हमने उधार लिया अपने पीढ़ियों के लिए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं। तो इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है, बहुत खास है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। यानी कि जब प्राकृतिक बचेगी तभी आगे आप कोई काम कर पाएंगे। और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे श्रोताओं, बस आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए एक और गाना सुनते हैं। और समय की बात करूं तो देखिए समय पूरी कगार पर है, यानी कि 5:41 हो चुके हैं। और वेदर तो आए हाय क्या बात करें जी, वेदर तो वैसे ही एकदम फैंटास्टिक वाला है। और मुरादाबाद के अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कभी धूप कभी ठंड कभी बारिश।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जोरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 5:52 हो चुके हैं और अब हम बात कर लेते हैं। यानी कि देखिए, आप सभी ऑफिस से घर के लिए निकल गए हैं, है ना, और बहुत से तो ट्रैफिक में होंगे और बहुत से अभी सोच रहे होंगे कि हाँ भाई निकल लेते हैं थोड़ा चाय के चुस्की के साथ। यानी कि जब भी ऑफिस से बाहर निकलते हैं ना, अगर आपको रेडी दिखे, चाय वाले भैया दिखे स्टॉल जो लगाकर खड़े रहते हैं, तो एक बार उनके पास जाके चाय ज़रूर पीजिए। और भाई जिनको गर्मी लगती है वो तो लेमन जूस पी सकते हैं, ठीक है जी, उस उनके लिए तो मतलब फैंटास्टिक वाला है। और वैसे भी इस टाइम जब आप निकलते हैं ना, तो आप देखेंगे जो भुट्टे इस टाइम बहुत मिलते हैं, आप सड़कों पर देखेंगे तो बहुत जगह रेडी लगा कर रखते हैं। यानी कि भुट्टे की खुशबू आपको दूर से ही सुगंध आ जाती है। तो बस इस टाइम ये समय ऐसा है कि आपको भरपूर ट्रैफिक मिलता है। और आज तो वैसे भी भैया सुबह से बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा इनमें आपने बच कर रहना है। जहाँ पर पानी ज़्यादा भरी है वहाँ पर जाने से आप बचिए और अपने आसपास का ध्यान रखिए। हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो आज आपको यानी कि खाकी कलर में मामा दिखेंगे नहीं, वो आपको दिखे ना दिखे लेकिन आप कैमरे के निगरानी में है, इसीलिए आप अपना ज़रूर ध्यान रखिए। और आप घर के लिए निकल चुके हैं तो वेल डन, आराम से गाड़ी चलाइए। और ऑफिस का जो टेंशन है ना, बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि ऑफिस की टेंशन ऑफिस तक, घर की जब घर जाएंगे तो एक अच्छे मुस्कान के साथ आप अपने घर जाइए, ताकि घर वाले जब देखें तो बोले कि हाँ चलो खुश है आप। क्योंकि आपके एक चेहरे के मुस्कान देखकर ही इंसान जज कर लेता है कि ये बंदा खुश है या अंदर से परेशान है या फिर कोई दिक्कत है, इसीलिए आपको इसका भी बहुत ध्यान रखना है। और हैप्पी रहिए, अपने चेहरे पर देखिए कुछ भी हो जाए लेकिन हमें मुस्कान ज़रूर रखनी है। और साथ ही साथ मैसेज आता है तो चलिए उनको भी शामिल करते हैं, क्योंकि मैसेज भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज आता है हमारे पास, भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबाड़ा से कनेक्ट होते हैं। राधे राधे रीना जी, राधे राधे सर, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और इनका कहना है कि समय, विश्वास और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता। बिल्कुल सही कहा, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। सही बात कही आपने, समय, विश्वास और संबंध, इन पर लेबल नहीं लगा होता है। अगर इनका जो अहमियत है अगर आपने खो दिया, तब आपको बाद में एहसास होता है कि हमने क्या कर दिया। इसीलिए समय, और सबसे बड़ी बात है विश्वास।

नहीं कर सकते हैं। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। ललिता जी कनेक्ट होती है नवीन नगर मुरादाबाद से, चाय पी लीजिए, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। और इन्होंने लिखा है कि आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है और सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है जी मैम। और इनका कहना है कि मैम आप भी पेड़ लगाते रहिए, हमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। एक पेड़ माँ के नाम, हाँ बिल्कुल लगाइए, एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाना चाहिए। आप लगाते हैं तो हमारा जो आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, वो स्वस्थ रहेगा, अच्छी हवाएं आपको मिलेगी। अगर अच्छी हवाएं आपको मिलेगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होएगा। इसीलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, अपने आसपास सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। और मानसून का जो मौसम है वो शुरू हो गया है, आप सभी को पता है, तो इस टाइम मच्छरे बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे। आपने क्या करना है, शाम के टाइम फुल स्लीव के कपड़े पहनिए, मच्छरदानी में कोशिश करिए कि मच्छरदानी में आप सोए। बहुत कहते कि मुझे मच्छरदानी में नींद नहीं आती, अगर आपको मच्छर से बचना है तो मच्छरदानी में तो आपको सोना पड़ेगा। और अपने आसपास है पानी इकट्ठा ना होने दे, बाल्टी में भी अगर आप पानी भर कर रखते हैं तो उसको ढक कर रखें रात के समय, और ताकि आप ढक कर रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। एक और मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं। बारिश पड़वा दी आपने, अरे बिल्कुल अच्छी बात है ना विक्की जी, बारिश आ रही है तो मौसम भी सही रहेगा, अच्छा रहेगा और गर्मी से आपको राहत मिलेगी, है ना। और ये विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं श्रोताओं। चलिए एक और गाना, उसके बाद न्यूज का भी टाइम हो ही गया है, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, और फिर उसके बाद हम 6 बजे कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ। दूसरे घंटे की शुरुआत जब होगी तब कनेक्ट होंगे। चलिए जी, बने रहिए आरजे रीना के साथ, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानवाधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोऊ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और श्रोताओं, अब हम बात कर लेते हैं, जरा वेदर की बात तो करना बनता है। अगर मैं वेदर की बात करूं तो अभी असम की हालत, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि फर्स्ट फ्लोर तक वहां पानी भर चुका है। इतनी मतलब बरसात इतनी ज़्यादा हुई ना कि वहाँ पर बहुत तो मर चुके हैं, बहुत पशु ऐसे पानी में बह गए हैं जिसका गिनती आप नहीं कर सकते। मतलब असम का इतना बुरा हाल है कि भाई कुछ शब्द नहीं कह सकते उनके बारे में। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे सिचुएशन आता है तो आपको अपने साथ अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए, अपने मेडिसिन अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। यानी कि उनके पास सिर्फ 15 मिनट था, वो सोच नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ जाए, कहाँ भागे ताकि हम बच जाएं। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन आती है तो अपने लिए ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो ज़रूर अपने साथ रखिए। और अभी बारिश यानी कि 2-3 दिन और बता रखी है बारिश आएगी, तो ऐसे में आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने मेडिसिन अपने साथ रखिए। बाहर जा रहे हैं आप तो रेनकोट छाता अपने साथ रखिए। हम यही सोच रहे हैं ना कि यार यार बारिश आ रही है तो मज़े आ रहे हैं ना, हमारे मौसम सही हो रहा है। हाँ सही हो रहा है मौसम, लेकिन उनके लिए पूछ के देखिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। यानी कि बारिश सही है लेकिन कहीं कहीं पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि तबाही मच जाती है, तबाही आ जाती है। ऐसे में हमें उनकी मदद करनी है, उनकी मदद करिए। और आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:13 हो चुके हैं श्रोताओं, और कुछ मैसेज हैं उनको भी साथ साथ शामिल कर लेते हैं। भैया ये हमारे साथ मैसेज आता है, यानी कि मुरादाबाद से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं और इनके कहने कि हम आपके प्रोग्राम में शामिल है। थैंक यू जी। अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अनजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप, ये सभी हमारे प्रोग्राम में कनेक्ट हैं। थैंक यू सो मच जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं और आप सभी के लिए कड़क सवाल भी हम लेकर आएंगे। सो बिंदास रहिए, बेधड़क रहिए आप।

0: छल्लो रानी, आय हाय क्या बात है जी। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और समय की बात करूं तो यानी कि 6:17 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। और यानी कि अब देश में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है 10 और 20 रुपए का नोट, वो भी प्लास्टिक वाला। एक ऐसा नोट जिसे गीला भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप कप धो भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि जब भी आप पापा के शर्ट अगर आप मशीन में डाल रहे हो ना बिना चेक करे, तो हमेशा नोट भीगे हुए उसमें पैसे रहते थे लेकिन ध्यान नहीं देते थे, जो कि वो गीला हो जाता था। फिर उसको सुखाने में बड़ी परेशानी होती थी कि यार ये आराम आराम से कर निकालते थे एक एक अलग अलग, भाई 500 का 1000 का रुपए अगर गीला हो जाता था ना उसको बड़े डर डर के हम अलग करते थे और उसको सुखाते थे कहीं ये फट ना जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यानी कि कहा जा रहा है कि 10 और 20 रुपए का नोट निकाला जा रहा है प्लास्टिक का, उसके बाद 500, 2000, 200 के भी नोट निकलेंगे भैया प्लास्टिक वाले, जिसे आप कैसे भी मड़ोड़ो कुछ भी करो कैसे भी आप उसको रखो तब भी उस पैसे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कैसा, आप सोच के देखिए कि वो हाथ में जब आप रखेंगे तो कैसा लगेगा, है ना। मतलब अभी वाले जो नोट होते हैं ना बड़े संभाल के रखने पड़ते हैं कि भैया थोड़ा सा ये फट गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये ऊपर से हम दुकान पर जाते हैं ना तो थोड़ा सा भी फटा हुआ नोट होता है तो हम उसको लेते नहीं है, नहीं नहीं अंकल ये ना मतलब आपके पास ही चल जाएगा, मैं कहीं और पे नहीं चला पाऊंगी इसको, एक्चुअल में वो अंकल लेंगे नहीं तो हम चेंज कर देते हैं। लेकिन अब आपके पास ऐसे कोई भी बहाने सुनने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपके पैसे जो चमचमाते हुए हैं ना वो हमेशा चमचमाते हुए ही रहेंगे, कोई भी उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। सो चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है श्रोता, उसके बाद कनेक्ट होते हैं एक कड़क सवाल के साथ। बस बने रही आरजे रीना के साथ।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ अब कनेक्टेड श्रोताओं, और इसी बीच अर्जुरीना आप सभी के लिए लेकर आ गई है कड़क सवाल। और आज का कड़क सवाल क्या होगा अब पता लग जाएगा श्रोताओं, यानी कि कड़क सवाल का कड़क आंसर क्या होने वाला है। समय की बात करूँ तो 6:29 हो चुके हैं और आज का हमारा कड़क सवाल ये है, जरा ध्यान से सुनिएगा, रेडियो का वॉल्यूम है ना वो बढ़ा लीजिए क्योंकि सुनने में ना आसानी हो जाएगी, आप भूल नहीं पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करके बताना है कि अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, उसका अपने नाम बताना है। बस अगर आप पहले नाम बताते हैं तो आप बनते हैं विनर। वंस अगेन एक बार और सुनिए, अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, उनका नाम बताना है आपने। आप सोचिए, फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: क्या बात है जी।
1: ओ मासे किंग,
0: अरे गाना सुनते सुनते आप सो गए क्या? अरे सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना है श्रोताओं। समय की बात करूं तो 6:38 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में।
1: तुम आजा किंग किंग।
0: और आपको बता दूं कि 1 अगस्त से बहुत से चीज़ें हैं जिसमें चेंजेस होने वाले हैं, जिसमें से है यानी कि तत्काल टिकट बुकिंग, यानी कि बुकिंग में तत्काल टिकट अगर बुक करते हैं तो उसमें चेंजेस होने वाले हैं 1 अगस्त से। साथ ही साथ LPG जो सिलेंडर है उसके दाम में आप देखेंगे कुछ चेंजेस आपको मिलेगा। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के जो नियम हैं वो बदले जाएंगे और भी बहुत चीज़ें हैं। बैंक चार्ज जो कि नियम में आप बदलाव देखेंगे, यानी कि 1 अगस्त से फिर से चेंजेस आने वाले हैं। हर साल यानी कि 1 अगस्त हम कहते हैं ना, हम अभी काम शुरुआत नहीं करेंगे, यानी कि 1 अगस्त से शुरू करेंगे, वही सही रहता है। यानी कि महीने की पहली तारीख हम हमेशा पहली तारीख की इंतज़ार करते हैं कि कब पहली तारीख आएगी और कब हम अपना काम शुरू करेंगे, वही अब हर 1 तारीख से यानी कि नियम चेंज होने शुरू हो गए।

यानी कि ये तत्काल जो टिकट बुकिंग है, आपने देखा होगा कि काउंटर पर बहुत ज्यादा भीड़ लगने के कारण इसमें बदलाव किए जाएंगे ताकि आसानी से भीड़ भी ना लगे और टिकट भी बुक हो जाए। के भी आया करो जी कदी साडी गड। चलिए जी, फिलहाल आपने क्या करना है, साडी गल जी अपने मैसेज करना है हमें व्हाट्सएप पर, नंबर है 9837896896। आज का कड़क सवाल यानी कि अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताना है आपने, कि यानी कि भारत अंतरिक्ष की सबसे पहले उड़ान किसने भरी थी, कौन है ये मोहतरमा जी, उनका नाम बताना आपने महसूस करके जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं साडी गली।

0: क्या बात है जी, साड़ी गली खुल के आया करो जी। मैं क्या जी, खुल के मैसेज किया करो 9837896896, यानी कि व्हाट्सएप नंबर जो कि आप सभी को पता है ना। तो मैसेज किया करो जी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये कभी भी आप एग्जाम देने जाएंगे या फिर कभी भी आप किसी के पास बैठेंगे तो ऐसे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए रीना ने भी अब स्टार्ट कर दिया कि भैया आप जनरल नॉलेज के जो है सवाल वही पूछा करेंगे, ताकि आपको भी याद रहेगा और आप एग्जाम देने जाते या फिर कहीं पर इन फ्यूचर आपसे कुछ पूछ लिया जाता है तो इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। और यानी कि जंतर मंतर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस टाइम आप देखेंगे सोशल मीडिया पर ना, तो तरह तरह की आप वीडियो देखेंगे जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द बात बोले गए। यानी कि जो आजकल के स्टूडेंट है, आजकल की जो जेंजी है, देखिए अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत अच्छी बात है, आवाज़ उठाइए कि पेपर लीक हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना सही है, लेकिन यानी कि प्रधानमंत्री को ही उनके माँ को गाली देना, अपशब्द बात बोलना, ये अधिकार हमें किसने दिया है? और ये किस स्कूल, किस कॉलेज में हमें ये सिखाया जाता है कि गाली दो, या फिर पेपर में तुम्हारे ना गाली पूछने वाले हैं, तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो तुम गाली दो, ये कहाँ, किस बुक में और किस स्कूल में सिखाया जाता है? मतलब आजकल के जो जेंजी हैं, जो ये आवाज़ उठा रहे, भाई आवाज़ उठाना सही है लेकिन ऐसे अपशब्द बात आप किसी को भी नहीं बोल सकते हो। यानी कि प्रधानमंत्री वो क्या अपने घर के लिए काम कर रहे हैं? क्या उनकी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है जो उनके लिए ज़मीन जायदाद हड़प के रख रहे हैं कि हमारे काम आएगा कल को, अगर मैं प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहूँगा तो मेरे लिए काम आएगा? क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं। अभी आपको बस एक गलती दिख रही है उसके पर आपने ट्रोल करना हम शुरू कर दिया है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने क्या किया है देश के लिए। इसीलिए आप सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ जो कि इस दुनिया में नहीं है उनको भी गालियाँ दिया जा रहा है, तो ये से साफ और साफ हमारे संस्कार पर बात आता है कि हमें किस तरीके के हमें संस्कार मिली है। यानी कि और भी स्टूडेंट है जिन्होंने इस तरीके की बातें नहीं बोली है। और ये मतलब अभी इंस्टाग्राम की अगर फेक आईडी 400 प्लस आईडी मिली है, फेक आईडी जिन्होंने जो गालियाँ वालियाँ दी, उस टाइम तो बड़े मज़े मज़े में फ्लो फ्लो में आपने गालियाँ दी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको साफ पता चल रहा है कि अब पुलिस उनके घर जा रही है। तो इसीलिए किसी के बारे में गलत बोलने का राय, गलत बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं दिया ये किसी के बारे में आप गलत बोले। आपने इतना कुछ बोला है प्रधानमंत्री को, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर वीडियो बहुत सारे, लेकिन उनके तरफ से कभी कोई भी गलत रिएक्शन नहीं आया, बल्कि उन्होंने रात के 12 बजे भी वीडियो बनाई है स्टूडेंट के लिए। यानी कि चेहरे पर थकान लेकिन चिंता स्टूडेंट के लिए, ना कोई बहाना, कुछ नहीं। ऊपर से उन्होंने वीडियो बनाई तो कैमरे के एंगल पर सबने आवाज़ उठाई कि कैमरा आपको पकड़ना नहीं आता है, इस तरीके से पकड़िए। उन्होंने दूसरी वीडियो भी बनाई, हमने उनको शब्दों को नहीं सुना, उनके कांपते हुए हाथ, कांपते हुए होठों को नहीं देखा, बस बोलना शुरू कर दिया। इसीलिए कहते हैं उतना ही बोले जितना आपको पता हो, फिलहाल मैं और नहीं बोल सकती क्योंकि बातें जब बोलो ना तो ख़त्म नहीं होती हैं, और मुझे लगा ये बोलना चाहिए हम सभी को। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ना पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सिखाने पड़ेंगे कि पहले पढ़ाई से पहले संस्कार सीखो फिर पढ़ाई करना। एक अच्छे स्टूडेंट की ये नहीं होती कि भैया तुम किसी को भी गाली दो, किसी के बारे में कुछ भी बोलो। फिलहाल आज का कड़क सवाल है श्रोताओं, बहुत ही सिंपल है, यानी कि अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला का नाम आपने बताना है कि फर्स्ट वुमेन वो कौन थी, क्या नाम था उनका, सोचिए। और ये गाना बहुत ही शानदार, और गाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक है, उसके बाद आप सभी के मैसेज की ही बारी है।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हाय हाय हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना इसके साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूँ तो 6:52 हो चुके श्रोताओं, और अब आप सभी के मैसेज की बारी है, जो कि आज मैंने आप सभी से कड़क सवाल पूछा है कि अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताना है आपने। सो, हमारे पास मैसेज आता है, यानी कि ये मैसेज आया है, सरन जी का मैसेज आता है, और इनका कहना है कि कल्पना चावला। ओके, चलिए और भी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जरा जोरों शोरों से। और देखिए, हाय हाय, ललिता कश्यप जी का कहना है कि कल्पना चावला। ओके जी, ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं आकाश राजपूत फ्रॉम राम गंगा बिहार मुरादाबाद से। इनका कहना है कि राइट आंसर है कल्पना चावला। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं, अंतरिक्ष में यानी कि जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। उनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। उन्होंने नासा के अंतरिक्ष मिशन में उड़ान भरी थी। क्या बात है जी, इन्होंने तो पूरी क्या बात है, सही बात है। पूछो एक एडवांस बताओ तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हर किसी को पता ना चलना चाहिए कि वो कहाँ के, यानी कि करनाल की रहने वाली थी। करनाल जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है सच में। बहुत शांति जगह, बहुत ज़्यादा। ये अगले मैसेज की बात करूँ तो हमारे साथ कनेक्ट होती है बबली अंजान जी, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप। और अरे मैडम, देखिए आपका नाम हम पूरा पढ़ते हैं, और आप इतना सारा नाम मेंशन कर देती है, ऑलरेडी बहुत मैसेज होते हैं, तो कृपया करके मैं मैसेज सारे ही पढ़ती हूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं कि मैं मैसेज नहीं छोड़ती हूँ। और इनका कहने की राइट आंसर होता है कल्पना चावला जी। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती संतोष भाभी जी, सीधा नाम बोलूंगी ना, संतोष भाभी जी, संतोष कश्यप। अगले मैसेज की बात करूँ तो राजा कश्यप जी कनेक्ट होते हैं हमारे साथ चौराहा गली से, और इनका कहना है कि मैं भी आपके प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ। थैंक यू सो मच जी, राजा कश्यप चौराहा गली से। आज इनका कहना है कि राइट आंसर होता है कल्पना चावला जी। विक्की सागर जी का कहना है कि राइट आंसर होता है कल्पना चावला जी। कल्पना चावला जी राइट आंसर होता है, और इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, इनके लास्ट 4 डिजिट है यानी कि 1572। अगले मैसेज की बात करूँ तो रूपाली जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहने की राइट आंसर है मैम यानी कि कल्पना चावला। और बहुत अच्छी आपने आज

और इनके कहने की राइट आंसर होता है कल्पना चावला जी, जो कि करनाल हरियाणा के रहने वाली है, रहने वाली थी। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, करनाल की रहने वाली थी वो। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ कुलदीप जी कनेक्ट होते हैं दिल्ली से, और इनके कहने की राइट आंसर होता है कल्पना चावला जी। दीपक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहने की राइट आंसर होता है कल्पना चावला जी।

0: और इन्होंने अपना नाम बता दिया है और इनका कहना है कि योर वॉइस सो स्वीट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू दिल से तहे दिल से थैंक यू। ये वंश जी कनेक्ट होते हैं और हमारे साथ यानी कि राइट आंसर सबसे पहले पहुंचाया है। वंश जी का कहना है कि राइट आंसर होता है कल्पना चावला जी, और यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैसेज आया था हमारे पास यानी कि ललिता कश्यप जी का, यानी कि ये बड़ी एक्टिव लेडी है सच में, जब भी इनको आप मैसेज करो एकदम आंसर भाई ऐसे टाइप कर देती है ना कि मतलब इनको हर चीज़ पता है। बहुत अच्छी बात है कि हमें पता होना चाहिए अपने देश के बारे में, अपने देश की बेटियों के बारे में जिन्होंने क्या काम किया है। लेकिन मैं अभी जाते जाते एक लास्ट मैसेज यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि देखिए बेटियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। यानी कि मीराबाई चानू के बारे में जब मैंने कल आपको बताया था कि बैकग्राउंड इतना मतलब अच्छा नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी पापा नौकरी करते थे छोटा मोटा, मम्मी चाय बेचती थी, वो लकड़ी जंगल से लकड़ी काट कर सिर पर उठा कर लाती थी ताकि घर वालों को कोई परेशानी ना होए। वही मतलब उस जब वो लकड़ी जंगल से लाती थी ना, उसका वजन इतना होता था कि कोई उठा नहीं पाता था। उनके खुद के भाई ने वो जो लकड़ी है वो उठा नहीं पाए थे और मीरा यानी कि मीराबाई चानू ने हंसते हंसते उस गड्डी को उठा लिया था। और उन्हें क्या पता था कि वो देश का नाम रोशन करेंगी और गोल्ड मेडल देंगी देश के लिए। तो इसीलिए बेटियों को पढ़ाइए और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप किस टॉपिक के बारे में क्या बोल रहे हो ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए संस्कार बहुत मायने रखते हैं। और इसी के साथ मैं लेती हूँ जाने की इजाज़त, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल तो कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो गया है और न्यूज़ का भी टाइम हो गया है, तो कल मिलते हैं श्रोताओं, ढेर सारी बातें करेंगे। और अभी के लिए आप मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी में यूँ ही मुस्कुराते रहिए। देखिए मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए लेकिन अपने चेहरे से मुस्कान कभी मत जाने दीजिए। चलिए जी, बाय बाय।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख

0: रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
1: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। चीन में ISF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नई

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात तो स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वादों की नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज की सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज़ें, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती हैं उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो मंगा उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांगटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती है दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: मैं हूँ आपके साथ आपकी आर्जरीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। टॉक शो में कनेक्ट हो गए हैं जी ढेर सारी बातें करने के लिए। और कहते हैं अपना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें जुड़ी होती है उम्मीदें, सपने और पूरी जिंदगी की कमाई। लेकिन सोचिए अगर वही सपना किसी बिल्डर की लापरवाही, देरी या धोखाधड़ी की वजह से अधूरा रह जाए तो क्या करें? क्या कानून आपके साथ खड़ा है और एक खरीदार के तौर पर आपके अधिकार आखिर का है? तो श्रोताओं, आज का प्रोग्राम हमारा बेहद खास होने वाला है क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके हैं या फिर किसी रियल एस्टेट विवाद का सामना कर रहे हैं, तो आज की यह बातचीत आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी, जो हमें सारे सवालों के आंसर देने के लिए आज मौजूद हो गए हैं। भाई काफी टाइम के बाद आज कनेक्ट हुए हैं सर, तो और जानेंगे इनसे रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों में खरीदारी के कानूनी अधिकार क्या है, किन दस्तावेजों का ध्यान रखना चाहिए और अगर बिल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो न्याय पाने का सही रास्ता क्या होगा। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी आपके बारे में, हमारे श्रोताओं को बताइए जो कि बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं, और बहुत बहुत वेलकम है जी।
2: देखिए मैं पहले तो आपके कम्युनिटी रेडियो 89.6 FM का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी सीरीज लीगल टॉक जो आपने चलाई है, खास तौर पे जो हम अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी बातें जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कुछ लीगल मुद्दे होते हैं जिसकी लोगों को जानकारी नहीं होती है।
3: बिल्कुल।
2: तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक तो अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं भी अपने श्रोताओं से बड़ा वेट करता हूँ इस प्रोग्राम का कि जल्दी से जल्दी ये वीक आए और आपका लीगल टॉक्स प्रोग्राम में मैं उनको नई जानकारी दे पाऊँ जिससे वो उनको कोई परेशानी है तो जो सजेशन है या जो भी अवेयरनेस है हमारी वो जागरूक बने और जो है अपने अधिकारों को जाने,
3: मतलब वही है जो उनके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाता
2: जी,
3: है।
2: जी बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और डेली दिनचर्या में जो भी उनका कानूनी अधिकार है उसको वो जान सके।
3: तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रियल एस्टेट में खरीदारी के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है?
2: देखिए खरीदार को समय पर, अधिकतर लोगों का एक सपना होता है कि मैं कोई भी अगर कोई दुकान ले रहा हूँ कहीं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कहीं किसी मार्केट में, या मैं एक सपनों का घर बना रहा हूँ, तो सबसे बड़ी चीज एक ये होती है कि उसे समय पर उसका कब्जा मिले, पोजीशन मिले उसका। फिर गुणवत्ता, उसका निर्माण कैसा हो रहा है, क्या क्वालिटी यूज हो रही है उसमें, जो पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए उसको कि भाई अगर हम कोई शॉप या मकान ले रहे हैं तो अधिकतर केसेस में हमारे पास आते हैं कि बिल्डर जो है उन्होंने कोई शॉप या कोई मकान बुक कराया है, बाद में वो बिल्डर की तरफ से डिमांड नोटिस निकाल दिया जाता है कि उसमें वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे कभी कंज्यूमर का हैरेसमेंट करता है, कभी कोई और चार्जेस का नोटिस दे देते हैं, और एग्रीमेंट के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं और कानून के अनुसार जो भी राहत पाने का जो भी अधिकार है, जो भी रेमेडी है आपकी, वो चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए।
3: ये तो सही बात है, क्लियर होगा तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा।
2: बिल्कुल।
3: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फ्लैट या दुकान खरीदने से पहले क्या क्या करनी चाहिए?
2: देखिए आजकल बहुत प्रलोभन वाले विज्ञापन अखबारों में और सोशल मीडिया साइट्स पे आ रहे हैं कि आप अपने घर बनाए, 1 लाख रुपए में प्लॉट ले, 2 लाख में प्लॉट ले, आप रोड पे भी निकल जाएंगे तो कई ऐसे होर्डिंग्स आपको दिख जाएंगे कि आपके सपनों का घर मात्र 50,000 में, 40,000 में। तो ये सब एक लुभावने विज्ञापन देके जो बिल्डर्स होते हैं वो एक आकर्षक स्कीम्स दिखा के जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है अगर आप कोई भी फ्लैट या दुकान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बिल्डर की साख देखिए, उसकी गुडविल क्या है मार्केट में, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसने सिर्फ होर्डिंग लगा दिया, उसकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं उसका कोई भी जो है लैंड नहीं है, उसके पास लैंड बैंक नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ एक विज्ञापन के माध्यम से उसने आपसे पैसे ले लिए और बिल्डर का कुछ अता पता नहीं और वो भाग जाए कहीं। दूसरा, ये प्रोजेक्ट की स्वीकृतियां देखें, जो प्रोजेक्ट वो दिखा रहा है अपने विज्ञापन में दिखा रहा है, अपनी जो भी स्कीम आपका उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव आपको बताने आया है, उसका अप्रूवल जो प्राधिकरण है या जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो भी बॉडी है गवर्नमेंट की, वहां से उसका अप्रूवल है या नहीं है, उसके पास भूमि की स्थिति क्या है, उसका लैंड बैंक कितना है, जिस प्रोजेक्ट को वो दिखा रहा है वो वास्तव में उसका मालिक है या नहीं है, एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं, जो उसने शर्तें लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़िए, भुगतान की क्या योजना है, क्या स्कीम्स हैं, उसको डीपली आपको चेक करना चाहिए। और रेरा सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में, आपको पता होगा कि रेरा जो एक संस्था है वो बिल्डर्स को, उसको बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन उसमें जरूरी है, रेरा एक कंज्यूमर्स के हित में एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है संस्था बना दी गई है, उसमें पंजीकरण की जांच अवश्य करें कि बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है।
3: पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी है आज के समय में।
2: देखिए, वो बिल्डर्स के लिए है कि जो ऑथराइज्ड बिल्डर है वो अगर कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है मार्केट में और कंज्यूमर से वो पैसा उठा रहा है तो उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और रेरा बिना कैसे किसी भी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं करता, वो सारे नॉर्म्स चेक करता है, वो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट ला रहा है उसके पास उतना लैंड बैंक है नहीं है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वो सारी चीजें पैरामीटर्स पूरी करने के बाद ही कोई बिल्डर वो रेरा में रजिस्ट्रेशन करा पाता।
3: क्या बात है, क्या केवल ब्रोशर देखकर संपत्ति खरीदना सही है?
2: नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट देख के या होर्डिंग देख के या अखबारों में विज्ञापन देख के आप ब्रोशर देख के कोई संपत्ति खरीद लें, ब्रोशर केवल प्रसार सामग्री हो सकती है, हमेशा लिखित एग्रीमेंट और आधिकारिक दस्तावेजों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसको डीपली चेक करें उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।
3: तो सर, अगर बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देता तो खरीदार क्या करे?
2: देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत आम हम लोग देखते हैं, कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि बिल्डर ने हमसे पैसा ले लिया है और या फिर हमने बैंक से फाइनेंस कराया है, बिल्डर जो है उसका पैसा भी उसको पहुंच चुका है और वो हमें पोजीशन नहीं दे रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, बिल्डर को पहले आप एक रिटन में लिखित नोटिस दें कि जो एज पर टर्म्स कंडीशन तय हुई है उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीजन है, और समाधान ना मिलने पर आप उपलब्ध आप कानूनी जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म से चाहे रेरा में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, कोई लोकल प्राधिकरण या लोकल बॉडी और डेवलपमेंट अथॉरिटी की वहां आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे गवर्नमेंट ने आज की डेट में रेमेडीज दी हुई है कंज्यूमर को कि वहां आप कंप्लेंट कर सकते।
3: क्या बिल्डर बिना बताए कीमत बढ़ा सकता है?
2: देखिए, समानता तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर आपके जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अगर कोई क्लॉज ऐसा मेंशन कर रखा है उसने पहले, यहाँ पे दोनों पक्षों की रजामंदी है, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है तो वो बढ़ा भी सकता है, लेकिन कीमत और भुगतान की शर्तें एग्रीमेंट के अनुसार ही तय होती है जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ होता है।
3: तो श्रोताओं, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। एक बहुत ही शानदार गाना आ रहा है आप सभी के साथ। देखिए, बातों के साथ गाने के तड़के ना लगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता है।

0: वंस अगेन एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए श्रोताओं, और आप सभी को पता है कि काम की बातें होती हैं, तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या हर प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है?
1: देखिए, कई जो परियोजना होती है उसके लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया गया है हमें सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ श्रेणियों में जो है कानून की तरफ से छूट भी दी गई है। तो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो रेरा मैंडेटरी है, लेकिन कुछ श्रेणियां ऐसी हैं कि वहाँ पे कुछ जो है क्लॉज ऐसे हैं कि उसमें कानून में छूट भी दी गई है।
0: सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, रेरा क्या है और खरीदार को इसे क्या फायदा मिलता है?
1: देखिए, रेरा एक रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के हित की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है, और इससे एक खरीदारों को ये फायदा मिलता है कि रेरा में कोई बिल्डर जब रजिस्टर्ड होता है तो उसको अपने काफी सारे जो पेपर्स हैं, जो अपना लैंड बैंक है, जो प्रोजेक्ट वो ला रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है, वो सारी रेरा में जो रेरा संस्था जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है उसको अवगत कराना पड़ता है, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो खरीदार है उसके लिए भी एक जो है फायदे की चीज है, और उसको भी एक बचाने का उद्देश्य है रेरा का, कि अगर कोई भी बिल्डर ऐसी सिर्फ ब्राउचर्स पे या एडवर्टाइजमेंट के बल पे अगर वो जो मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रहा है तो बिना रेरा के एक तो वो रोक लग जाती है उसपे, और सबसे बड़ी चीज अगर रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारे पैरामीटर्स उसके पूरे हैं, कागज पूरे करके वो अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है, तो खरीदारों का उस पर भरोसा भी बढ़ जाता है।
0: अगर बिल्डर रिफंड देने से मना कर दे तो क्या करें?
1: देखिए, अगर आपके एग्रीमेंट में कोई टर्म्स कंडीशन ऐसे तय हुई है कि बिल्डर्स पैर एग्रीमेंट में कि कुछ रिफंड अगर आपका क्लेम निकलता है तो आप उससे डिमांड करते हैं, तो पहले तो लिखित मांगे, दस्तावेज को सुरक्षित रखें, और अगर उसके बाद भी बिल्डर उसको टाल रहा है या कुछ लिंगर ऑन करने की कोशिश करता है तो जो भी आपकी कानूनी विधिक जो भी आपके पास राइट्स हैं, आपके से अच्छी एडवोकेट से राय लेके उसको आप जो है सू भी कर सकते हैं, कोर्ट में कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, रेरा में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको रिलीफ मिल सकता है।
0: श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिलहाल हम अगले एक कॉमन क्वेश्चन है सर, क्या कब्जा लेने के बाद भी शिकायत की जा सकती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपसे बिल्डर ने जो है आपको परमिशन दे दिया है और उसने जो एज पर एग्रीमेंट अगर उसने कोई भी क्वालिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज किया या उसने जो चीज आपको रिटर्न में दी है उस चीज को आपको प्रोवाइड नहीं कराया है या क्वालिटी लो क्वालिटी यूज करी है तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं।
0: सो एक बहुत ही ये मुझे लगता है कि कॉमन क्वेश्चन है, बिल्डर द्वारा वादा की गई सुविधाएं ना मिलने पर क्या अधिकार है?
1: देखिए, बिल्डर ने अगर कोई भी चीज आपको कमिट करी है और रिटर्न में कमिट करी है तो ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को अपने कंज्यूमर को जो आप जो एंड यूजर है उनको वो प्रोवाइड कराए, उसको फुलफिल करे, और खरीदार उन सुविधाओं की उससे मांग भी कर सकता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो आवश्यकता होने पर आप कानूनी कार्रवाई भी बिल्डर के खिलाफ भी कर सकते हैं।
0: क्या मौखिक वादा अदालत में मान्य होता है?
1: देखिए, अदालत में कोई भी चीज मौखिक नहीं होती है ना, सब चीज लिखित, दस्तावेज अधिक मजबूत साक्ष्य होते हैं, इसलिए हर महत्वपूर्ण बात को लिखित रूप में लेना जरूरी होता
0: है। मतलब जो लिखित है उसको मतलब ट्रस्ट किया जाता है।
1: कोई देखिए, कोर्ट में कोई भी चीज वर्बली नहीं होती है, हर चीज आपको रिटर्न में ही अगर होगी तो अदालत उसी पे संज्ञान ले।
0: बिल्कुल श्रोताओं, तो देखिए, मौखिक यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कितना भी ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वो मान्यता नहीं।
1: बिल्कुल, अगर कोई आपको ट्रस्ट कहे कि मैं आपको जो है पैसे डबल कर दूंगा या आपको इतने लाख में इतना प्लॉट दे दूंगा, या बिल्डर की तरफ से कोई आपको प्रलोभन या कोई स्कीम दी जाती है, तो कोई भी अगर उसका प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रपोजल है तो आप सारी चीज उससे रिटर्न में मांगिए, उसकी जांच पड़ताल करिए, क्योंकि कोर्ट में भी अगर आप जाते हैं कल को आपको पोजीशन की दिक्कत आती है या रिफंड की दिक्कत आती है तो कोर्ट कोई भी चीज को वर्बली नहीं मानती है,
0: मतलब रिटर्न में होना चाहिए,
1: हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए। बिल्कुल,
0: क्या बात है। खरीदार को कौन कौन से दस्तावेज संभाल कर रखना चाहिए?
1: देखिए, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है, हम अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट को हमें संभाल के रखना चाहिए, कोई बुकिंग कराते हैं हम किसी प्रोजेक्ट की तो बुकिंग फॉर्म होना चाहिए, जो भी हमें पेमेंट्स हमने करी है उस पेमेंट का स्टेटमेंट होना चाहिए, अगर हमने कैश दिया तो कैश की रिसिप्ट होनी चाहिए, अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट दिया तो बैंक के स्टेटमेंट्स होने चाहिए, बिल्डर की तरफ से कोई हमें रिसिप्ट अगर इशू करी गई है तो वो होनी चाहिए, कोई ईमेल हमने करी है या बिल्डर की तरफ से कोई ईमेल हमारे पास आई है वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, और आजकल जो है कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो व्हाट्सएप चैट्स भी जो है वो अप्रूव्ड हैं, तो आप व्हाट्सएप चैट्स भी आप ऐसे जो उसको रिकॉर्ड ले सकते हैं, कोई किसी समाचार पत्र में या किसी न्यूज़पेपर में कोई अगर उसने प्रपोजल या एडवर्टीजमेंट दिया उसको भी कॉपी आप संभाल के रख सकते हैं कि क्या प्रपोजल दिया था उसने। तो ये सारे जो पेपर्स हैं जितनी भी रिकॉर्ड्स की चीजें आपको संभाल के रख।
0: अच्छा सर, ऐसा भी है कि कोई बोल रहा हो अगर हम उसकी वीडियो बना के अगर दिखाए तो वो क्या मान्यता की जाएगी?
1: नहीं बिल्कुल, अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव बिल्डर तरफ

0: या बिल्डर खुद उस चीज को कमिट करके अगर आपको कह रहा है और आपने उसका कोई रिटर्न में या आपने वीडियो कोई साक्ष्य उसका बनाया है और कल को वो उसे ब्रीच करता है या हटता है तो आप उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
1: तो मान्यता है,
0: बिल्कुल है मान्यता।
1: क्या बिल्डर मनमानी मेंटेनेंस की फीस ले सकता है?
0: देखिए ऐसा है, बिल्डर अगर अपनी परियोजना को जो है वो पूरा कर लेता है और जो है उसमें आपके एक एग्रीमेंट में सब चीजें निश्चित उसमें लिखी हुई है कि अगर उसमें कुछ चार्जेस उसने लिखे हुए हैं कि वे मेंटेनेंस फीस मैं आपसे इतनी लूंगा, तो अगर एग्रीमेंट में आपका ऐसा कुछ है मेंटेनेंस का डिक्लेयर है उसमें तो वो ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता।
1: अगर बिल्डर परियोजना अधूरी छोड़ दे तो खरीदार क्या करे?
0: देखिए कई बिल्डर्स क्या करते हैं, हमने देखा है कई केसेस भी आते हैं कि बिल्डर ने क्या करा, अपना प्रोजेक्ट ही बीच में खत्म कर दिया, रिजॉल्व कर दिया या अधूरा बना के छोड़ दिया। तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं, जितने भी सभी खरीदार हैं वो मिलकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और जो भी आपके पास उपलब्ध कानूनी उपाय हैं वो आप ले सकते हैं। आप मिलकर एक कमेटी बना के सोसाइटी की तरफ से एक आप अपना क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी बना के आप केस फाइल कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं कि आप उसको बिल्डर के अगेंस्ट में कोर्ट में सू कर सकते हैं।
1: बहुत से सर डरते हैं कि क्या हम इसके ऊपर कर सकते हैं शिकायत या नहीं कर सकते हैं।
0: नहीं देखिए, आपका पैसा आपको रिकवर करना है तो ये तो आपका राइट है कि आपको पैसा चाहिए तो आपको तो केस तो या सू तो करना ही पड़ेगा, रिफंड कैसे मिलेगा नहीं तो आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है?
0: देखिए अगर आप परिस्थिति के अनुसार हाँ है, यदि मामला उपभोक्ता विवाद के दायरे में आता है तो हाँ बिल्कुल आप जो है कंज्यूमर फोरम में आप केस बिल्कुल फाइल कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं बस रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद और हमारी जो ये बातचीत है वो जारी रहेगी। बस आपने रेडियो की ट्यूनिंग हमें कनेक्ट करके रखना है, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: वेलकम बैक है श्रोताओं, एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं जहां पर ढेर सारी बातें हो रही है। देखिए, घर लेने से रिलेटेड अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो बेझिझक बिंदास होकर आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका अधिकार है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में, प्रॉपर्टी में आप पैसे लगा रहे हैं और इन फ्यूचर आपको वो नहीं मिल पा रहा है, आप सोच रहे कि हमें, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो रहा है, तो हम क्या करें, इसके लिए आप शिकायत कर सकते
1: हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है तो आप कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं, आपका राइट बनता है ये।
0: तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर बिल्डर दिवालिया हो जाए तो खरीदार का क्या होगा?
1: देखिए, बिल्डर का अगर दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आईबीसी बोलते हैं जिसको, है ना, आईबीसी की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट कोड, ठीक है। इसके तहत एक कानून है 2016 के अंतर्गत संरक्षित कर सकते हैं और आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक आपको केस बताता हूँ, जो पाशानाथ डेवलपर्स लिमिटेड है, पाशानाथ ग्रुप है, उसके अंगेंस्ट में ये इंसॉल्वेंसी बैंक कोर्ट की ये जो प्रोसेस है वो चल रही है और काफी जो क्लाइंट्स है उसका क्लेम भी उन्होंने फाइल किया हुआ है। तो पाशानाथ के विरुद्ध ये कार्रवाई इस समय नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में, लॉ ट्रिब्यूनल में ये जो है नई दिल्ली में चल रही है। अभी हाल ही में, हाल ही का केस बता रहा हूँ मैं आपको।
0: ओके ओके, तो मतलब सर क्लियर हो गया उनका?
1: नहीं, अभी केस चल रहा है वो, उसमें कई क्रेडिटर्स ने उस पर क्लेम किया हुआ है और अभी वो पूरा जो मैटर है वो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास में है, तो वहीं से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो आए हैं वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके तहत जो है, जो भी जितना क्रेडिटर्स का क्लेम है वो सब चेक कर रहे हैं, उसके बाद उस पर डिसाइड होगा क्या।
0: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या केवल नगद भुगतान करना सुरक्षित है?
1: देखिए, नगद भुगतान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बैंकिंग माध्यम से ही भुगतान करें और हर भुगतान की आपको रसीद जरूर लेनी चाहिए, या चेक से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, डीडी दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर आरटीजीएस है, नेफ्ट है, उसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं।
0: तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, मान लीजिए कि हमने घर ले लिया है और जो हमारा जो बिल्डर है उसके पास अगर कोई भी हमारी दिक्कत आती है, तो इन फ्यूचर कभी कभी ऐसा होता है कि वो फोन ही नहीं उठा रहे, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, बिल्डर तो हर समय तो देखिए वहाँ सोसाइटी में नहीं रहता है, उसके जो स्टाफ होता है वहाँ पे स्टाफ को बताइए मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यू है या और कोई प्रॉब्लम है। तो अगर स्टाफ फिर भी नहीं दूर करता तो आप लोकल जो आपकी बॉडी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लोकल आप डीएम से कंप्लेंट कर सकते हैं कि बिल्डर ऐसे ऐसे हमसे सुविधाएं कमिट करी थी या हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो निश्चित तौर पर लोकल अथॉरिटी से अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाता है मोस्टली केसेस में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके। लेकिन एक जाते जाते एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे खरीदारों के लिए, आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या रहेगा?
1: देखिए, घर या दुकान खरीदते समय सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम जीवन का सबसे बड़ा निवेश कर रहे हैं अपने, है ना। एक हर आदमी का सपना होता है कि मैं व्यापार के लिए कोई अपनी शॉप खरीदूं या अपने रहने के लिए, अपने परिवार के लिए कोई प्यारा सा छोटा सा घर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है, एक तो आपको पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको कोई भी प्रपोजल बिल्डर की तरफ से आता है तो आप उस सारे उसके डॉक्यूमेंट्स को, जो भी ब्राउचर है, जो भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, जो भी उसने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया है, उसको डीपली आप उसको चेक करें और उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लोकल अथॉरिटी से भी, जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां से भी आपको मिल सकती है कि ये प्रोजेक्ट उसका अप्रूव्ड है नहीं है, उसके पास बिल्डर के पास लैंड बैंक इतना है नहीं है, या सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए, मैलिफाइड इंटेंशन से मार्केट से पैसा उठाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, हर भुगतान का अगर आप उसे चेक से पेमेंट दे रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड रखना है, बैंक का स्टेटमेंट किस डेट में आपका चेक पास हो रहा है, अगर आप डीडी से पेमेंट कर रहे हैं तो डीडी की फोटो स्टेट रखिए, अगर आप आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करा रहे हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और अपने सबसे बड़ी बात अपने कानूनों जो आपको प्राप्त है उसके प्रति सजग रहें, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तभी आप जो है इन सारी जितनी भी ये जो चीजें हैं, जितने भी ये आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं, तभी आप इनसे बच पाएंगे। सजग रहना है सबसे बड़ी चीज में, और जो है बिल्डर्स की तरफ से अगर फोन पे कोई, उसकी टीम की तरफ से कोई आपके पास प्रपोजल आता है और यदि आपका विचार बनता है निवेश का, तो पहले प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लीजिए, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में जाके जानकारी लीजिए कि वास्तव में प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं है, ऐसी कोई आपको जो है मेलाफाइड इंटेंशन आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए।
0: बिल्कुल, और बिना जानकारी के आपको ये कह दे कि भैया पहले पैसे ट्रांसफर करो, तो इस पर यकीन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आज की इस बातचीत में हमें यही सीख मिली कि घर खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी फैसला भी है। सही जानकारी, सही दस्तावेज और अपने अधिकारों की समझ आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रीना,
0: जिन्होंने इतनी आसान भाषा में रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों से जुड़े कानूनी कारों की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा। उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आपके कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो अब आप अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो श्रोताओं, याद रखिए, सपनों का घर तभी सुकून देता है जब उसके साथ आपके अधिकार भी सुरक्षित हो। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए जी। बाय बाय।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और एक बार फिर से आपकी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खूबसूरत लोगों को स्टूडियो में हम लेकर हाजिर हो गए हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही कमाल के कलाकार मौजूद हैं, जो आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत और भी शानदार बनाने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, और साथ में अखिल भैया भी मौजूद हैं स्टूडियो में, और आज हमारे बीच में शाम को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए कमल शर्मा जी हैं। तो और वो क्या करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को वो जरूर बताएं अपने बारे में। और मैंने ऐसा सुना है कि वो पहले भी रेडियो पे आ चुके हैं, तो यानी कि उनकी आवाज पहली बार नहीं जा रही है श्रोताओं आपके कानों में, हो सकता है पहले भी आपने उनको सुना हो। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है।
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद आपका बहुत इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मेरा नाम कमल शर्मा है।
4: जी कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मुझे अपना नाम भी तो बताना पड़ेगा ना अखिल भाई, बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए।
6: आपका नाम आनंद है और यहाँ आनंद मैं सीन चल रहा है।
4: देखो A4 आनंद, A4 अखिल, एंड K4 कमल शर्मा जी। तो सर कैसे हाल चाल है आपके?
5: बहुत बढ़िया।
4: अरे वाह, जैसे मैंने बताया अपने श्रोताओं, क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं, तो पहले आप आ चुके हैं या मैंने मतलब वैसे ही फ्लो फ्लो में बोल दिया?
5: नहीं, पहले आ चुके हैं पर।
4: अच्छा, यानी कि आपने प्रोग्राम कर दिए हमारे स्टूडियो में, लेकिन मेरा और आपका फर्स्ट टाइम संवाद हो रहा है।
5: मे बी शायद टाइम
4: नहीं, हाँ मे बी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मिला सर से, इसलिए मैं, मेरे को लगा शायद आप पहले पहली बार आए हैं।
5: नहीं, हमारे जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे ज्यादा संडे में होते थे,
4: संडे में हमारी छुट्टी होती है ना, यही
6: संडे इज लाइक फंडे ना।
4: सही बात है,
5: क्योंकि संडे में शायद कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता नहीं है, तो इसलिए दोपहर में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते थे।
4: अच्छा जी, रिकॉर्डिंग वाला शो, आप समझ गया मैं। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज आप आए। तो आज हमारे श्रोताओं को आप बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, हमें सूत्रों से पता लगा है।
5: सूत्रों से?
4: कुछ लोगों ने हमें ऐसा मैसेज दिया है कि आज जो है कमल शर्मा जी हंसाने वाले हैं, और हमारे जो पड़ोस अखिल भैया बैठे हैं वो भी कुछ जो है आज बढ़िया सी चटपटी बातें करने वाले हैं। क्यों अखिल भैया, अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी अखिल भैया बताओ जरा।
6: मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर भी एक शायरी और एक पोइट्री वाली चीज है। मतलब क्या, मुझे भी उन चीजों से बहुत प्यार है और बहुत लगाव है, मैं बहुत सुनता भी हूँ इन सब चीजों को, और जो मेरे साथ है ना वो चलती फिरती आती है, मतलब एकदम एट रैंडम आती है,
4: रैंडम आती है,
6: और मैं एकदम आपको सुना देता हूँ। तो ये तो मेरे पास अच्छा मौका है।
4: मैं तो अखिल जी को जितना मैं जान पाया हूँ, ये वो आदमी, इनको जहाँ शिफ्ट कर देते हो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इनको शेरो शायरी में डाल दो आप वहीं शुरू हो जाते हैं, इनको RJ में डालो, इनको इंस्टाग्राम की रील में डालो ये वहाँ फिट हो जाते हैं। आज ही ये मेलोडी खा के आए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, ये मतलब ऑलराउंडर वाले हैं, बढ़िया वाले, जबरदस्त इंसान। तो सर आपका हम स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं।
5: मेरा नाम कमल शर्मा है
4: जी।
5: मैं यहाँ मुरादाबाद में ही जॉनसन जॉनसन सर्जिकल सेल्स में पॉइंट हूँ।
4: अरे वाह।
5: तो जैसे कभी बोलता हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक तरफ ये और एक तरफ लिखना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है?
4: जी ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे पॉसिबल होता होगा,
5: बट ये है कि अब अगर हम इस चीज को मैनेज कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर पाते हैं तो अच्छी चीजें निकल रही है। अगर दोनों विपरीत छोरों को मिलाकर हम एक नई चीज निकाल रहे हैं,
6: नहीं तो ये अच्छी बात है। ये तो आप ऐसे कहते हैं कि ये भी एक तरीके से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है।
4: करेक्ट करेक्ट, और ये भी एक क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं। और सर जो इंसान का लगाव होता है ना जिस चीज से, वो उसके लिए समय भी निकाल लेता है और टाइम भी मैनेज कर लेता है।
6: कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है आपके साथ कमल जी कि आप वहाँ बैठे हो और आपने वहाँ पे अपने सेल के, अपने प्रोडक्ट के साथ साथ शायरी भी सुना दी हो?
5: नहीं नहीं, अब तो ऐसा है ना कि जो खासम खास लोग हैं सब जानते हैं कि हाँ कमल कुछ लिखता है, तो जैसे कभी कभी बैठे होता अच्छा है चल कुछ सुना दो चल, तो फिर वो उस समय ये है कि अब आप उसमें मुकर नहीं सकते,
4: अंदर का जो शायर हो बाहर आ ही जाता
5: वो,
4: है।
5: नहीं नहीं, वो तो काफी बार आ चुका है।
4: अच्छा।
5: तो काफी बार आ चुका है, इतना बार आ गया कि एफएम पे भी आ गया।
4: अरे वाह बहुत बढ़िया। तो सर आज मैं भी सुनना चाहूंगा आपके वो अच्छी अच्छी शायरी और जो आपका अंदाज है उसको अपने श्रोताओं के साथ। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ खास सुनाएंगे आज?
5: तो पहले तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपना परिचय दे दूँ कुछ पंक्तियों।
4: मैं वही चाह रहा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए सर, मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर, पंक्तियों के माध्यम से दीजिए।
5: तो लीजिए पेश है कि जीवन अपना क्या है कमल,
4: जी
5: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है।
4: वाह।
5: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है, खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है।
4: क्या बात है।
5: खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है, कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं।
4: वाह।
5: कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं
4: है।
5: और अदरक वाली चाय कमल सुबह शाम पीनी
6: है। अरे क्या बात, बहुत खूब।
4: मजे की बात ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी
5: बिल्कुल,
4: है।
5: बिल्कुल बिल्कुल
4: ये है तो आपने आप सुबह हमने सेलिब्रेट किया और देखिए चाय की बात भी हुई है तो हम आपको चाय पिलाकर ही भेजेंगे और अदरक भी डलवाएंगे, आप चिंता ना करें। समझ गए हम आपकी बात, आपकी शायरी से। तो श्रोताओं ये जो मस्ती है जो फन है वो लगातार बरकरार रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 जी आनंद अखिल और कमल शर्मा जी के साथ।
7: Mixing it.

0: और फिर से वेलकम बैक है आज हंसने के लिए और कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमारे स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं कमल शर्मा जी। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर
0: जी। अदरक वाली चाय तो आपने हमें याद दिला दी, आप उम्मीद करेंगे कि हमें पिलवाई भी जाए। क्यों अखिल जी,
2: बहुत बहुत सही कहा आपने।
0: नहीं लेकिन इस वक्त कमल सर कह रहे हैं कि नहीं बेटा इस टाइम पे चाय आप हमें पिलवाइए, हमें ज्यादा जरूरत है, हम आपके गेस्ट हैं। जी सर।
1: यस सर।
0: जोक सपाट तो चलता रहेगा श्रोताओं, फिलहाल कमल सर हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने चार पंक्तियां सुनाई लेकिन वो जबरदस्त वाली थी, अब कुछ और हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए बढ़िया सा, जो अपने हाल फिलहाल में कुछ अच्छा लिखा हो।
1: हाल फिलहाल में क्या, बस अभी अपने घर से यहाँ तक आते हुए दो लाइनें दिमाग में आई थी।
0: अरे वाह, यही तो खूबसूरत होती है, खूबसूरती कलाकार की। जी सर।
1: कि बुढ़ापा कह रहा है जवानी दे दो।
0: वाह
2: क्या बात है।
1: बुढ़ापा कह रहा है
0: जवानी दे दो
1: और आत्मा कह रही है गिलास ठंडा पानी दे दो।
0: बहुत ही बढ़िया, क्या बात,
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: पानी की बोतल है कि ठंडी?
2: बगल वाला, बगल वाला नाई कह रहा है कि भाई साहब कलर वाली डाई दे दो।
0: चलिए मैं आपको
1: कली करवा लिया था, वो मैंने कली करवा लिया था।
0: सर को देख के लग रहा है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
2: आनंद तुम्हारी तरफ से शायरी बोलना चाहूंगा।
0: सर बिल्कुल, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, आप मेरी तरफ से।
2: मैंने पिछली बार तुम्हारी तरफ से बोली थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर।
2: मैं अभी अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि जो मेरे शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आनंद के शब्द हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ रहे हैं, जहाँ पे जूता पढ़ने की बात आएगी वो अखिल जी के शब्द हैं, आप थोड़ा समझ जाइएगा।
2: तेरी डीपी पे आज भी दिल जाता है।
0: वाह।
2: तेरा ऑनलाइन आना मौसम बदल जाता है।
0: वेरी नाइस।
2: अब मोहब्बत खतों में कहाँ मिलती है जनाब, अब तो टाइपिंग टाइपिंग में ही दिल बहल जाता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल तुम टाइपिंग टाइपिंग नहीं कर रहे, हम बातें बातें कर रहे हैं और वो भी हमारे कमल जी के साथ। बहुत ही अच्छा अखिल भैया आपने बताया, और ये अखिल जी ऐसे बीच बीच में अपने मजेदार शायरी से आपको हंसाते रहेंगे। और एक बार फिर से हम कमल सर की ओर आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपने वो दो शब्द तो सुना दिए जो आपके जहन में अभी आए, और बड़े मतलब इस्तफाक की बात है कि एकदम रियल वाले थे।
2: अच्छा,
0: ऐसा लग रहा है
1: दिमाग में आया,
0: अचानक तो आए, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं भी ये बात कहने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद। ठंडा पानी, ठंडा पानी पिलवाएंगे, चिंता ना करो आप। जी सर, आप थोड़ा सा कुछ और नया सुनाइए। सर
1: सर नया क्या सुनाऊं, बस
0: जो आपके पास है आज आप वो सुना दीजिए।
1: नाम की वजह से मतलब लोगों की नजरों में रहता हूँ हमेशा।
0: अरे वाह क्या बात है, आज से हम भी आपको अपनी नजरों में रखेंगे। आप
2: नहीं, मगर ये खिले हुए तो बहुत टाइम से हैं।
1: उसका कारण तो जानो ना।
0: जी जी सर प्लीज।
1: कि सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: कमल कमल कमल।
0: जी जी जी।
1: अगर आप उसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो फिर कमल, अच्छा पिछले 12 साल से इन्होंने तो जान खा रखी है, खाते ने रखी।
0: समझ सकते हैं सर, लेकिन आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ये वाले जो कमल है इनकी खूबसूरती कुछ अलग ही है।
2: हाँ।
0: तो आप अपनी बातों से और अपने शब्दों से इस कमल की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे सर आज की शाम।
1: तो लीजिए चार पंक्ति इसी के नाम पे लीजिए।
0: बिल्कुल सर।
1: कि रोज एक किस्सा नया सहने की आदत हो चुकी है।
0: वाह।
1: रोज एक किस्सा नया
0: सहने की आदत
1: हो चुकी है, क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है।
0: क्या बात है जी।
1: क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है
0: जी।
1: और हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर।
0: वाह।
1: हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर, जिंदगी लगता है तू भी भाजपा सी हो चुकी है।
0: अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त।
1: तो मैं तो इसको मतलब एक बहुत अच्छा, हम लोग जो होते ना लिखने वाले वो बड़े मतलब चारों तरफ निगाह रखते हैं कि कहाँ से सब्जेक्ट मिले लिखने का।
0: करेक्ट, कहाँ से कंटेंट मिले, आप करते रहते हैं आसपास में चल क्या रहा है।
1: क्योंकि मेरे साथ एक प्लस पॉइंट गए, माइनस पॉइंट गई है, मैं सुबह कम से कम आधा पौना घंटा अखबार पढ़ता हूँ, दो खबर।
0: बहुत ही बढ़िया,
1: ताकि एक नई चीज आपको पता चलती है, सब्जेक्ट आपको मिलता है कि आपके पास पड़ोस में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है।
0: ये तो सर रेडियो में बताते हैं, ये हम रेडियो में भी बताते हैं सर।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आजकल जरा आनंद जी बताएंगे क्या हो रहा है।
0: हम भी रिसर्च करते रहते हैं देश विदेश में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि लोगों को रेडियो का सुनने का फायदा भी तो होना चाहिए।
1: सही बात। अब कोई सोचे कि एक रुपए की टॉफी मशहूर हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
0: सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल की शादीशुदा लोगों के बारे में कुछ है आपके पास पंक्तियां, बड़े परेशान रहते हैं आजकल।
1: दुखती रख क्यों छेड़ दिया आपने?
0: मैं आपकी बात नहीं करना
1: चाहता, जरूरी था।
0: मैं सोच रहा हूँ जब आप आए हैं तो कुछ सुन लेते हैं।
2: एक बार भाभी ने इनसे पूछा भी
1: नहीं, हंसी माहौल का,
2: कितना प्यार करते हो आप हमें
0: जी,
2: तो इनका पता जवाब क्या है?
0: हाँ जी,
2: जितना फोन 1% बैटरी होने पर चार्जर से प्यार करता है।
0: ये तो जबरदस्त वाली बात कर दी आपने भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। अखिल भैया ने जो शायरी सुनाई है उससे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी शादी करूं और फिर मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। जी अखिल भैया, आप अपनी शायरी को थोड़ा संभाल के रखें, बाद में सुनूंगा। जी कमल सर, आप थोड़ा कुछ फरमाएं, चार पंक्तियां आपकी कुछ बढ़िया सी हो जाएं।
1: तो जो आपने बात करी ना शादीशुदा वालों
0: जी जी,
1: तो वो दर्द थोड़ा बाद में खोलेंगे भी, हंसी खुशी का माहौल चल रहा
0: है। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी जो है लोगों का दिल वैसे ही टूटा है आजकल, बहुत
2: जाके इन्हें बेलन ना चलाना पड़े,
0: हो सकता है इनके ऊपर चल जाए भाई, कुछ भी हो सकता है।
1: हंसी खुशी का माहौल तो अच्छी लाइन निकलती रहनी चाहिए।
0: अच्छी वाली सुना दो, पॉजिटिव वाली, मजा आ जाएगा।
1: अच्छा, मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग तो सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो ये कुछ पंक्तियां हैं मैंने लिखी थी कोरोना में।
0: अरे वाह।
1: क्योंकि सब्जेक्ट था बहुत बड़ा, सब्जेक्ट
0: बहुत
1: था
0: बड़ा टॉपिक,
1: और हम लोग तो क्योंकि ढूंढते रहते हैं तो हमारी तो अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल सर।
1: देखिएगा कि जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ,
0: वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ।
0: वाह जी वाह।
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ, और वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, बस ढक के चेहरा आजकल घर से निकलता हूँ।
0: वाह क्या बात है, बहुत
2: क्या बात है, बहुत खूब
0: शानदार। और एक मैसेज भी दे दिया, आजकल गर्मियां बहुत है तो चेहरा ढककर ही निकले, हो सकती है
1: ये बात आज भी लागू हो सकती है।
0: एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोल दिया। वेल दोस्तों, अभी रात में तो खैर आपको धूप नहीं मिलेगी, तो आप चेहरा उगाड़ कर भी चल सकते हैं।
2: आनंद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
0: प्लीज सर पूछिएगा।
2: इस मॉडर्न एरा चल रहा है अभी अपना,
0: जी जी,
2: उसमें प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है।
0: हाँ जी।
2: जो ट्रस्ट है ना आपस में, वो धीरे धीरे क्यों जल्दी खत्म होता है आपके हिसाब से?
0: मैं इस पे जरूर अभी लौट कर आऊंगा तो अपनी टिप्पणी करूंगा, लेकिन श्रोताओं भी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा, अपनी टिप्पणी करूंगा, अपनी राय दूंगा, अपनी पूरी वार्ता दूंगा, आप चिंता ना करें। बट अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वी कम बैक। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाँ
1: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि मुझे प्यार नहीं हुआ इसलिए मुझे वो ट्रस्ट भी नहीं पता है। सॉरी मैं माफी चाहूंगा गाइस, अगर आप में से कोई ये टॉपिक पे कुछ भी कहना चाहता है तो वो इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताओ ताकि मैं इनको इसका जवाब दे सकूं। मैं आगे बढ़ते हैं और शायद मुझे लगता है ट्रस्ट इसलिए भी खत्म हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट करने वाले लिए अब दुनिया बची नहीं है यार अखिल भाई, मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट। मगर अगर मैं अपने तरीके से देखूं तो बहुत ट्रस्ट करके देख लिया लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, बदले में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, धोखा
1: दगा।
0: तो इसलिए लोग जो है करते नहीं है ट्रस्ट। खैर हमारे बीच में सीनियर सिटीजन बैठे हैं एक सर, हम उनसे पूछ लेते हैं। आओ घूम फिर के जरा सर के पास चलते हैं। कौन सर आप बताइए इसके विषय में जरा, जो अखिल सर ने पूछा है अभी।
2: अखिल सर धीरे धीरे उसी विषय पे पहुंचना चाह रहे हैं,
0: आप समझ गए ना
2: शादी के बाद वाली।
0: हाँ करेक्ट।

0: नहीं बोलने जा रहे हैं।
1: मैं ज्यादा उखान,
0: अच्छा, मैं उसको नहीं भी, मैं उस हिस्से को भी छूना नहीं चाह रहा।
1: हाँ।
0: मैं सोच रहा हूँ हंसी खुशी का माहौल है तो थोड़ी बातें ऐसी चलती रहे।
1: हाँ, हाँ। नहीं ये उसमें भी खुश हो जाते हैं, ये वो उसमें के आदमी है, आप चिंता ना करें।
0: तो चार पंक्तियां देखिएगा
1: जी सर प्लीज,
0: क्योंकि शादीशुदाओं की बात चल रही है तो चार पंक्तियां समर्पित किसको हो सकती है,
2: ये तो बाय डिफॉल्ट है,
1: समझदार है।
0: देखिएगा कि लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया।
1: वाह
2: क्या बात,
1: क्या बात है।
0: लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया, गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया।
1: वाह जी वाह,
0: गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया। वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे।
1: क्या बात है,
0: वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे, बैठ कर संग चाय पीना तो बहाना हो गया।
2: क्या बात है,
1: बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब जी। अखिल जी आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे?
2: मैं इसमें
1: हाँ मैं आपसे भी पूछते रहूंगा, आपने बहुत सारी गूगल बाबा साहब निकाल के रखी हुई है सुबह से। हाँ
2: तेरी आवाज आज भी कानों में रहती है।
1: वाह,
2: तेरी बातें अब भी रातों में रहती हैं। तू दूर होकर भी दूर नहीं मुझसे, क्योंकि तू मेरी हर धड़कन में रहती है।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। मैं समझ सकता हूँ कौन रहती है, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे जी। कमल सर,
0: यस सर,
1: आप अब और क्या स्पेशल सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को? आप जो है लगातार बढ़िया बढ़िया पंक्तियां सुना रहे हो, ये चार पंक्ति के ना आप मुझे लग रहा है हमें सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। क्यों अखिल भैया?
2: बिल्कुल सही कह रहे हो, आजकल क्या है ना रिलेशनशिप जो है वो टूटते कम है, ईगो ज्यादा जीत जाता है उनमें। तो ऐसे जो है ना एक मतलब अगर आप छोटी सी सॉरी भी बोल दो किसी को तो बहुत ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आपका टूटने से बच जाता है।
1: अरे भैया आजकल सॉरी बोलने से भी कुछ ना होता, जिनको ब्लॉक करना होता है वो करके भाग जाते हैं, भले वो दो दिन बाद अनब्लॉक कर दें वो बात अलग है। खैर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो जेन्युइन ही है, आजकल के रिलेशनशिप में ईगो बहुत है क्योंकि सामने वाले का पहल वो करे और जो इस पार बैठा है उसको लगता है पहले वो करे, इस चक्कर में क्लैशेस होते रहते हैं और चीजें खराब हो जाती है, ऑलमोस्ट यही हो रहा है आजकल,
0: बिगड़ जाती है।
1: एब्सोल्युटली सर, क्योंकि वही रीजन है ना, सामने वाला चाह रहा है तू आ, वो चाह रहा है कि भैया नहीं तू आज इस
0: पहले आप, पहले आप,
1: पहले आप,
0: पहले ट्रेन निकल गई, ट्रेन चली गई लखनऊ से।
1: सही कह रहे हैं
0: बनारस,
1: इससे पहले हमारी ट्रेन निकल जाए हम सर आपके पास वापस आ जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप प्लीज कुछ सुनाइए हमारे लिसनर्स को और बढ़िया जबरदस्त सा श्रोताओं।
0: अगर जी अगर मेरे दोस्त राघव पंक्तियां सुन रहे हो तो मैं चार पंक्तियां उनको ये समर्पित करना चाहूंगा,
1: जरूर सुन रहे होंगे, जरूर सुन रहे होंगे।
0: कि महफिल का हर शेर उभरता उसका था,
1: अरे वाह,
0: महफिल का हर शेर उभरता उसका था, एक क्षमा थी, एक समाथी हर परवाना उसका था।
1: वाह,
0: एक समाथी हर परवाना जिसका था, वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे।
1: जी गजब,
0: वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे
1: जी,
0: चलो बताओ वो दीवाना किसका था।
1: अरे वाह क्या बात है राघव जी, देख लो सवाल छोड़ के जा रहे हैं सर, मैं पूछ लूंगा फोन करके आपसे। लास्ट टाइम राघव जी आए थे सर हमारे स्टूडियो में भी रिसेंटली, बहुत ही बढ़िया उनके साथ भी एक संवाद लगा हमने किया, अखिल भाई आप भी थे, बहुत अच्छा सेशन किया उन्होंने और बहुत ही कमाल किया, जबरदस्त लिखते हैं बोलते हैं।
2: आप ये चीज देखे ना, वो एज अ प्रोफेशनली वो एक एडवोकेट है, तो उनके यहाँ भी हल्की सी छाप थी रिश्तों को कैसे टूट रहे हैं और कैसे उसे बचा रहे हैं। और हमारे केमिस्ट साहब हैं हमारे इधर, सर्जिकल सारी सप्लाई इनके हाथ में है, तो इनके में भी वही छाप आ रही है हल्की हल्की सी कि कैसे किसी की तोड़ा है और कैसे किसे जोड़ना। आप क्या कहेंगे आनंद जी?
1: नहीं मैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आपसे मुलाकात करके, और जो हमारे श्रोता हैं जो हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं आई एम श्योर उनको भी बहुत आनंद आ रहा होगा, और बस यही है छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को हंसाती है। बट सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगती है एक आर्टिस्ट की कि जब वो लिखते हैं ना चार चीजों को सोच के जो वो लिखते हैं और जब उनसे एक नई चीज बनती है उसकी बात ही अलग होती है। शायद अब आप जो सुनाने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी होगी आई एम श्योर।
2: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे,
1: वाह,
2: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे
1: जी,
2: अब उसकी स्टोरी में कोई और नजर आता है,
1: अरे वाह,
2: और हम आज भी वही पुराने स्क्रीनशॉट संभाले बैठे हैं।
1: बहुत ही बढ़िया, मुझे दिखा देना, मैं भाभी को दिखा दूंगा।
2: तुमसे तो कुछ कहना ही गुनाह है, तुम तो हर बात पे एकदम जो है ना
1: भाभी को ले आते हैं,
2: बिल्कुल गृह मंत्री को ही पकड़ लेते हो, छोटे मोटे मंत्रियों को पकड़ा करो एकदम गृह मंत्री तुम।
1: अरे गृह मंत्री जो कर सकते ना वो छोटे मोटे मंत्री नहीं कर सकते ना, इसलिए हम सीधा वहीं पहुंच जाते हैं मेन पॉइंट पे। सर आप कुछ कह रहे थे?
0: अब अखिल भाई इतने समय से वो पन्ना खोलना चाहते, थोड़ा सा तड़का उसका लगा देता हूँ।
1: अरे सर बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली
0: तो तैयार है अखिल जी सुनने के लिए।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में,
1: क्या बात है,
2: बहुत खूब।
0: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, मिलकर भी वह मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में।
1: वेरी नाइस,
2: क्या कहा,
0: मिलकर भी वो मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में, लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया, लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया, घूम रहा लेकर कुंडली पीरों और फकीरों में।
1: अरे बहुत क्या बात, बहुत ही खूब, बहुत ही
0: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में। संगी साथी छूट गए, संगी साथी छूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, बेरंग जिंदगी लगती है कोई रंग नहीं तस्वीरों में।
1: अजी वाह,
0: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने,
1: जबरदस्त,
2: बहुत खूब,
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: और जो आपने धोखे वाली बात करी
1: जी सर,
0: कि दिल अंदर छलनी छलनी है, दिल अंदर छलनी छलनी है
1: जी,
0: पर बाहर से कोई घाव नहीं।
1: क्या बात है,
0: पर बाहर से कोई घाव नहीं, जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में। शमशीर मतलब तलवार,
1: तलवार जी जी,
0: जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में। और कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, रांझे की चिंता किसको है सब घिरे हुए हैं हीरों में।
1: क्या बात है, गजब गजब, शानदार,
0: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में। और कोई किस्मत बदल नहीं सकता
1: जी,
0: कोई किस्मत बदल नहीं सकता, कोई होनी पलट नहीं सकता, क्या पता कमल कुछ हो जाए शायद उसकी तदबीरों में, जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीर।
2: बहुत
1: वेरी नाइस सर, बहुत ही शानदार सर, पूरी हो गई
2: अंदर से निकल के
1: सर, लग रहा था और सुनता ही रहूं मैं तो, इतनी शानदार थी ये, वाह जी वाह, गजब,
2: अंदर से निकल के आई है,
1: बहुत ही बढ़िया, एकदम नेचुरल, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। और मैं बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस लौट कर आता हूँ श्रोताओं, और हम उसके बाद सर से कुछ पंक्तियां सुनेंगे दोस्ती के ऊपर। आज के टाइम में कहते हैं दोस्ती दोस्ती नहीं रही है, अब जमाना सेल्फिश हो गया है, आजकल जमाना मतलब ही हो गया है, तो थोड़ा सा इस विषय में भी हम सुनते हैं सर के दिल के जज्बात क्या लिखते हैं वो इस पर, बट अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
4: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, एक बार फिर से आपकी शाम को और शानदार बना रहे हैं मैं अखिल जी और साथ में हमारे कमल शर्मा जी। कुछ प्यारी प्यारी बातें वो कर रहे हैं आज की शाम, और वो बातें जो शायद कहीं ना कहीं आपके दिल को छू रही होंगी श्रोताओं, और जो शायद इस वक्त सुन रहे हैं उन आपको भी भैया दिल से हमारा सलाम है। अगर आप भी यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो हो सकता है अगला स्टेज अगली कुर्सी आपकी नाम हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें एक छोटा सा मैसेज करना है। अगर आप कुछ बेहतरीन लिखते हैं, आप कुछ बेहतरीन सुना आ सकते हैं, आपको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ बढ़िया शेर, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलेगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके भी मुझे DM कर सकते हैं। रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूं, वहां पर भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी बढ़िया सा शेर व शायरी का टैलेंट है, या आप कुछ बढ़िया लिखते हैं, या किसी ऐसे पर्सनालिटी को जानते हैं जिसके अंदर ऐसा टैलेंट है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे वो रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। क्यों अखिल भाई?
1: बिल्कुल सही बात, और इसी बात से मेरे को एक बात याद आ रही है प्लीज कि मैं सभी अपने दोस्तों से और उनके दोस्तों से भी बात कहूंगा कि इस बात को याद रखें, जो सच्चा प्यार है कभी खत्म नहीं होता।
0: क्या बात है,
1: बस लोग मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कुछ कि जो प्यार सच्चा करने वाला है ना, उसका एक अलग है, उससे आप किसी से मैच नहीं करवा सकते।
0: आई एग्री विद यू 100% सही बात है। अब सच्चा प्यार मिलता नहीं, वो बात अलग है, है ना?
1: कह सकते हैं।
0: ये भी सच्चाई है, बाकी अपना अपना लक है। क्यों कमल सर?
2: बिल्कुल
0: है ना। अच्छा कमल सर, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी फ्रेंडशिप के बारे में, मैं बोल रहा था दोस्ती के बारे में कि लोग कहते हैं कि आजकल दोस्ती जो है पहले वाली नहीं रही, मतलब ही होगी है, जहाँ काम होता है वहीं दोस्ती होती है, उसके बाद दोस्ती टाटा बाय बाय, तू किसका दोस्त, तू मेरा कौन सा दोस्त, वो चीजें चल रही है बेसिकली। अब भाई देखो कलयुग का टाइम है, बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, सच्चे दोस्त भी है आज की दुनिया में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: दोस्ती एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है
0: जी, ठीक है,
2: दो लोगों के बीच में,
0: ठीक है
1: भाई। मुझे तो
2: सिर्फ एक के दम पर नहीं चल सकती,
0: करेक्ट, वन साइड तो हो ही नहीं सकती, चाहे प्यार हो या
2: डेडिकेशन दोनों का होता है।
0: एब्सोल्युटली,
2: आपका भी सामने वाले का भी,
0: सामने वाले का
2: वो बॉन्डेशन आपकी सही है तो फिर तो दोस्ती हमारे।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना सर, राह चलते हैं हमें कुछ लोग मिलते हैं, हमारी वाइब मैच होती है, हमें लगता है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया दोस्त है, या सामने वाले को लगता है वो पर्सन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और इस चक्कर में कई बार फ्रेंडशिप हो जाती है, बट वो पता चलता है कि वो एक तरफ से ही थी, दूसरी तरफ से था ही नहीं।
2: अब वही कह सकते हैं ना कि हर चीज के दोनों साइड होते हैं।
0: हाँ करेक्ट,
1: कहीं कहीं दिमाग नहीं लगाया जाता ना,
2: डाकर भी है, लेटर भी है,
1: कहीं दिल लगाए जाते हैं, कहीं दिमाग लगाया जाता है, तो हर तरह की दोस्ती है, आप चाहे दिल लगाएं या दिमाग लगाएं।
0: सही बात है, बिल्कुल, मैं आपसे दोस्ती करूंगा, आप टेंशन ना ले, दिल तो नहीं लगा सकते।
2: हमें थोड़ी ना पता था कि उम्र के 4500 साल में हम अखिल भाई मिल जाएंगे,
0: सोचने
2: और चिपक जाएंगे बिल्कुल हमारे साथ।
0: सर दोस्ती में कुछ बढ़िया सी चार पंक्तियां हो जाए सर, जो दोस्त आपस में बैठ के इस वक्त गाड़ी में हमें सुन रहे हैं।
2: दो पक्के दोस्तों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है।
0: अच्छा,
2: पक्के दोस्त हैं लेकिन किसी विषय को लेकर कंफ्यूजन है दोनों के बीच में। तो एक दोस्त कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा है
0: जी,
2: हालांकि उसमें उसका प्यार ही कह लीजिए, गुस्सा नहीं है उसका।
0: ओके, बहुत ही खूबसूरत।
2: कि बदला वक्त जमाना बदला,
0: बदला वक्त जमाना बदला हाँ जी,
2: उसने आना जाना बदला।
0: वाह,
2: बदला वक्त जमाना बदला, उसने आना जाना बदला, इससे अच्छा बदले खुद को, इससे अच्छा खुद को बदले,
1: क्या बात,
2: उसने ठौर ठिकाना बदला।
0: वाह,
2: ठौर ठिकाना मतलब जो उसके रहने की जगह है
0: वो बदला,
2: उसने ठौर ठिकाना बदला,
0: ठीक है।
2: पहले उसने देखे सपने, पहले उसने देखे सपने, बाद में बदली आंखें,
1: अच्छा,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला।
0: वाह
1: क्या बात,
0: क्या बात है,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला, हरदम पाने की चाहत, मतलब आदमी में लालसा होती है कि ये भी मिल जाए, वो भी
0: मिल जाए, करेक्ट करेक्ट,
2: कि हरदम पाने की चाहत अब उसको इस हद ले आई कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला।
1: क्या,
0: वाह क्या बात है,
1: बहुत खूब, मतलब एक तरीके से इन्होंने एकदम एक 95% वाला सच बोल दिया इन्होंने,
2: कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला, सड़कें बदली, गलियां बदली, बदले सारे रास्ते, सड़कें बदली, गलियां बदली, बदले सारे रस्ते, घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला।
0: वाह,
2: घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला, और खुद अपना आकाश बनाकर, खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला,
0: बदले चांद सितारा बदला जी सर।
2: तो खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला। और आखिरी पंक्तियां देखेगा कि मैं लिए कलम और एक कागज, मैंने कलम और एक कागज, बस इसी सोच में बैठा हूं, मैं लिए कलम और इस कागज, एक कागज, बस इसी सोच में बैठा हूं कि उस पल में क्या होगा अगर वो शख्स दोबारा बदला।
1: क्या बात है, बहुत खूब,
0: बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। इन पंक्तियों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मुझे लगता है कि आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं, आई थिंक।
2: नहीं मतलब जैसे मैंने पहले बोला ना, डेडिकेशन है दोस्ती, तो दोनों तरफ से
0: करेक्ट, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई ना जो आपने बताया,
2: तो डेडिकेशन दोनों का है।
0: करेक्ट करेक्ट,
2: मैं समझता हूँ कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी साइड से तो वो क्लियर हो जाना चाहिए।
0: करेक्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला इंसान चाहता ही नहीं है तो फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है सर।
2: इसलिए जो भी कोई कोई वैसा पॉइंट है दोनों को कहीं पिंच कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा।
0: करेक्ट, और वो इतना बढ़ेगा कि एक दिन वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा,
2: रिश्ता खत्म हो जाएगा,
0: है ना, वो मतलब रिश्ता कम और वो टॉक्सिक ज्यादा हो जाएगा।
2: बिल्कुल
1: हमेशा आपके जो जितने भी पुराने दोस्त है ना, जो भी आपके साथ बैठे हैं, जो इस समय भी आपके साथ मौजूद हैं, चाहे गाड़ी में मौजूद हैं, चाहे बाइक पे मौजूद हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हैं, कहीं भी एक टाइम टुगेदर आप लोगों का चल रहा है, तो वो क्या है, पुराने जो दोस्त होते हैं वो ना एक गानों की तरह होते हैं, पुराने अच्छे गाने जो आप जिनकी बात आप हमेशा सुनना चाहते हैं, जिनको आप हमेशा
0: गुनगुनाना चाहते हो।
1: और जो आपके नए नवेले दोस्त बनते हैं ना, वो एकदम एक फ्री ट्रायल की तरह होते हैं, बस फ्री पैक आपका खत्म हुआ नहीं और वो आपके गायब हो,
0: आपका सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद जैसे ही आपका टाइम गया खत्म। चलो रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, मेरे दोस्त ये गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, जितने भी मेरे श्रोता साथी हैं, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनके लिए एक दोस्ती वाला गाना, इतनी सुंदर बातें हो गई हैं तो ये गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं।

वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आरजे आनंद के साथ हैं आप और इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। फिलहाल आज की शाम मेरा दिल चाह रहा था कुछ

0: बेहतरीन बातें सुनना और इन्हीं बेहतरीन बातों को जो है पेश कर रहे हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में। स्टूडियो में मौजूद हैं कमल शर्मा जी और साथ में अखिल जी। तो बीच बीच में आपको अब ऐसी चटपटी बातें और शानदार प्रोग्राम सुनने को मिलते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सर। और अखिल जी अपने जो है लैपटॉप में घुसे हुए हैं, शायद कुछ अच्छा निकालने के प्रयास में हैं। चलिए अच्छी बात है, उनका प्रयास जरूर मुकम्मल होगा। फिलहाल सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अभी आपने दोस्ती के ऊपर तो बहुत बढ़िया सुना दी और मैंने शुरू में आपसे बीबी और वो हस्बैंड बीबी के बारे में कुछ पूछा था, तो मुझे लगता है कि इसमें अब आपको सुना दो बढ़िया सा।
1: नहीं मैं समझता हूँ अगर हंसी खुशला चला तो वही चलता रहे।
0: अच्छा तो मतलब सर बार बार मुझे पीछे कहेगा, अभी तो छोटा, अभी तो बच्चा है तू, अभी तो ये जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है। जब
1: दो विवाहितों के बीच में आप गलत फंस गए हैं मुझे लग रहा है।
2: नहीं ये अभी ना इन्हें याद रहेगा क्योंकि जब
0: देखिए दोस्तों मैं आपके आपके फायदे की बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो दो विवाहित लोग हैं ना ये चाह रहे हैं कि भैया हमारे घर की जो है ना बीबी अगर हमें सुन लेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। शायद इसीलिए ये बोलना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों।
1: हम तो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आधी हो चुकी है।
0: देखिए सर आप अभी अखिल भैया को उस स्टेज में मत पहुंचाओ, अभी अखिल भैया को पहुंचने में बहुत टाइम है।
1: कहना चाहते हैं पूछना
0: अखिल भाई, देख लो भाभी सुनती रहती है, ध्यान से बोलना है आपने।
2: अभी मैं यही
0: तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा
2: आनंद से, तो मैं यही कहूंगा कि ये टाइम आप अपना अच्छे से एंजॉय करें। हाँ। क्योंकि अभी जो है ना आप अभी दोस्तों के साथ आपका समय बीतता है, जो दोस्तों के साथ अभी आप समय बीतता है ना, तो जब भी अभी आप तो मना कर रहे हो कि भाई मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी मैं किसी से मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, मगर हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो, जल्दी आपको कोई चाहने वाली ले, और जब ऐसा मिले तो आप अपने दोस्तों को मत भूल जाना।
0: ओके बहुत बढ़िया, इन्होंने जो ट्रैक था वो कहीं और शिफ्ट कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्सफुल टू यू अखिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आपकी ये बात भी पूरी होगी माशाल्लाह, कोई ना कोई मिली जाएगी, हम भी इसी मुराद में हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस सफर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जी प्लीज अखिल भाई आपको सुना रहे हैं क्या?
2: कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसास से जाने जाते हैं।
0: वेरी नाइस।
2: वो दोस्त कब मोहब्बत बन जाते हैं पता नहीं चलता। तेरे साथ बिताया हर लम्हा आज भी याद आता है।
0: क्या बात है।
2: कॉलेज की वो चाय और तेरा मुस्कुराना भी याद आता है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। मैं आपके कॉलेज जरूर घूमने जाऊंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा आप कैसे मुस्कुराते थे।
2: मैं तो कैंटीन में ही, मैं तो मेरे साथ तो ये था, मैं अपने कॉलेज में कैंटीन में ज्यादा मिलता था, क्लासेस में कम।
0: ओहो वेरी वेरी वेरी अमेजिंग, मतलब आप तो वो
1: जी सर उस हिसाब से तो सही प्रोफेशन में पहुंच गए ना।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बस वो प्रोफेशन का जो भांडा है मैं यहाँ फोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि फिर नहीं तो कई लोग पकड़ लेंगे उनके रेस्टोरेंट पे जाके। अच्छा तुम जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। जी सर आप जाते जाते अभी कुछ सुनाएं बढ़िया सा हमारे लिसनर्स को।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐसे विषय पे मैं एक कविता मैंने लिखी है और मैंने इसको काफी मंच पर सुनाया और लोगों ने काफी इसको पसंद किया।
0: जी
1: जो बच्चे हैं आज शिक्षा ले रहे हैं आपके घर में, आपके भतीजे भतीजी और बेटा बेटी, वो आपके कब तक हैं? सिर्फ इंटर तक, उसके बाद जाहिर सी बात है उनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना है।
0: बिल्कुल सर सही कहा।
1: तो कहीं ना कहीं वो एक घर से कट रहे हैं, उसके बाद वो वापस लौट के कभी नहीं आते
0: जी,
1: क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए, फिर कहाँ नौकरी लग रही है
0: जी,
1: फिर वो कब आते हैं? छुट्टी वाले बच्चे,
0: छुट्टी वाले ओकेजंस हो गए, छुट्टियां हो गई,
1: त्योहार।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो कुछ पंक्तियां मैंने उसके ऊपर लिखी हैं
0: जी सर,
1: और मैंने इसको जहां भी सुनाया काफी इसको पसंद किया लोगों ने। पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं।
0: वाह।
1: पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं, धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी बात।
0: छोटी थी बड़ी जानदार और शानदार थी सर ये।
1: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज, बदल गया आप सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था।
0: जी
1: बदल गया आप सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था, सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था।
0: वाह।
3: किसान भाइयों और बहनों आपके लिए खुशखबरी,
4: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक
3: 120 से अधिक वर्षों का विश्वास, विकास की नई पहचान।
4: EKCC पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पाना हुआ और भी आसान, खेती की हर जरूरत का भरोसेमंद समाधान,
3: बीज खाद सिंचाई और फसल की तैयारी, हर कदम पर आपका अपना बैंक,
4: आसान प्रक्रिया समय पर ऋण, किसान की उन्नति

0: विजिट करें।
1: वर्षों का विश्वास, किसानों के विकास का विश्वास।
0: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक,
1: आपका अपना बैंक,
0: सचमुच आपका।
2: और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
3: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
4: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है, ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
3: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
2: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
5: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
2: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
6: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
7: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। FIR वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
8: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
8: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
2: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
9: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
11: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में

0: की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की पहली तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविन्द्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके शायदे की बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो दो विवाहित लोग हैं ना, ये चाह रहे हैं
2: एक ऐसे विषय पे, मैं एक कविता मैंने लिखी है और मैंने इसको काफी मंच पर सुनाया और लोगों ने काफी इसको पसंद किया
0: जी।
2: जो बच्चे हैं आज शिक्षा ले रहे हैं आपके घर में, आपके भतीजे भतीजी और बेटा बेटी, वो आपके कब तक है? सिर्फ इंटर तक, उसके बाद जाहिर सी बात है उनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना है।
0: बिल्कुल सर, सही कहा।
2: तो कहीं ना कहीं वो एक घर से कट रहे हैं, उसके बाद वो वापस लौट के कभी नहीं आते
0: जी,
2: क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए। फिर कहाँ नौकरी लग रही है
0: जी,
2: फिर वो कब आते हैं? छुट्टी वाले बच्चे,
0: छुट्टी वाले ओकेजन्स हो गए, छुट्टियां हो गई,
2: त्योहार।
0: एब्सोल्युटली।
2: तो कुछ पंक्तियां मैंने उसके ऊपर लिखी है
0: जी सर,
2: और मैंने इसको जहां भी सुनाया काफी इसको पसंद किया लोगों ने। पाने को उच्च शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं।
0: वाह।
2: पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं। धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
3: क्या बात है, क्या बात है? बहुत खूब, बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी बात कही।
0: छोटी थी बड़ी जानदार और शानदार थी सर ये।
2: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज। बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था
0: जी।
2: बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था, सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था।
0: वाह।
2: सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था, माता पिता की फरियादे जो कर ना पाते दर्ज, माता पिता की फरियादे जो कर ना पाते दर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
3: क्या बात कही, बहुत ही।
2: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज। और क्या होली क्या रक्षाबंधन, क्या होली क्या रक्षाबंधन, और क्या बची दिवाली, माता पिता बस एक कमरे में सारा घर है खाली।
3: बहुत ही गहरी बात कही।
2: माता पिता बस एक कमरे में सारा घर है खाली, जो बच्चे ना जान सके माँ बाप के मर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों के कर्ज।
3: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही सही।
2: और इसकी अंतिम पंक्ति देखेगा कि घर के कच्चे रास्ते जिनको याद नहीं अब आते, घर के कच्चे रास्ते जिनको याद नहीं अब आते, छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते।
3: क्या बात कही, बहुत ही सुंदर।
2: छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ष, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ष, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
3: क्या बात कही, क्या बात कही। और ये चीज वाकई होती है, मगर अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, ये लोग समझ रहे हैं कि हाँ, चाहे आप कैसे भी रहें, किधर भी रहें, अपनी मिट्टी से जरूर जुड़े रहें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा अखिल सर। और दोस्तों, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा इस सेशन को डेफिनेटली। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप आए स्टूडियो में, कमल जी आपने तमाम बढ़िया बढ़िया बातों से, पंक्तियों से रूबरू कराया हमारे श्रोताओं को। और अब जाने का समय हो गया, क्योंकि आपको दोबारा भी बुलाना है सब कुछ। अगर आज ही जान लेंगे तो दोबारा कहां से फिर बुला पाएंगे ना, तो दोबारा बुलाने के लिए हमें कुछ तो बचा के रखना है अखिल जी, है ना। तो अखिल भाई का लैपटॉप तो हमेशा खुला रहता है, उनके गूगल बाबा उनके साथ हमेशा रेडी है, वो तो चाह रहे हैं कि मैं पूरी रात आपको सुनाता रहूं।
3: मेरा ये जो लैपटॉप है ना, इस समय बिल्कुल इस समय बैटरी डाउन है इसकी, सुबह से बैटरी डाउन।
0: नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अखिल भाई अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा यूज करते हैं, ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ये यहाँ से सीधा जहाँ जाएंगे वो सिर्फ कमल जी को पता है या मुझे पता है, और किसी को नहीं पता है। सो आगे बढ़ते हुए कमल सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, जाते जाते क्या कुछ खास चीजें आप सुनाना चाहेंगे?
2: बस ये मुलाकातों के दौर यूं ही चलते रहे।
0: हाँ,
2: और आप मेरे को बुलाते रहे और मैं जो अपना विषय आपके सामने रखता रहूं।
0: क्या बात है, आज आपको स्टूडियो में आके अखिल जी के साथ शो करके कैसा लगा?
2: स्टूडियो में पहले भी आ चुका हूँ, बस अखिल जी के साथ आज मिलके यहाँ
3: पहली बार अच्छा है। पहली बार हमारा रहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई अपने ही एकदम सब साथ में हैं और हम सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक आपस की बातें हो रही हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है।
0: क्या बात है अखिल जी, आप जो बोलते हैं ना एकदम जिंदा दिल इंसान है, आप दिल से बोलते हैं, मानना पड़ेगा, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं आप। एक दिन आप आरजे पक्का बन ही जाएंगे, ऑलमोस्ट तो बन ही गए और हम बाहर खड़े होंगे आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए, आप चिंता ना करें। जी सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आप भी जो है कुछ सुनाना चाहते हैं तो अखिल जी कैसे सुना सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करके?
3: हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे
0: जी,
3: और हमारे को आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9837896 पर।
0: पक्का अभी आरजे बन गए, मुझे मानना पड़ेगा, नंबर याद हो गया इनको, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है या आप किसी से टैलेंटेड पर्सन को जानते हैं तो आप बताइए, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा भी जरूर आएंगे। जाते जाते एक और कुछ बढ़िया सी लाइन, सर सोच रहे हैं कि ये लड़के ने क्या पूछ लिया, अभी तो ये बाय करने वाला था, अब इसने फिर से कुछ सुनने की फरमाइश कर दी है। सर जाते जाते कुछ एक बढ़िया सा सुंदर सा,
2: आपके श्रोताओं को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जज्बाती हाँ, कर देते हैं थोड़ा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते
2: कि जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है
0: जी,
2: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत है।
0: क्या बात है,
2: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत हैं, चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना, चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना, कहने को इस शहर में शमशान बहुत है।
0: क्या बात है, गजब, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। इन्हीं बातों के साथ अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, इजाजत, फिर जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बाय बाय।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्जेरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता हो और समय की बात करूँ तो 9:13 हो चुके हैं। अगर आप कोई भी गाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर कॉल करके आप गाना सुन सकते हैं, क्योंकि आर्जेरीना आज आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है। यानी कि आज रात को मौका मिला आप सभी के साथ कनेक्ट होने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का लुफ्त उठाया जाए और आप सभी के साथ यानी कि कनेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, बोलिए, क्या नाम है आपका?
1: नाम
0: क्या नाम है आपका? ओके, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया
0: बताइए, कौन से गाना सुनना चाहते हैं?
1: बाबुल प्यारे सोनी मेरा नाम
0: बाबुल प्यारे,
1: था।
0: ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ
1: लीला जी
0: जी सर, बोलिए।
1: एक शिकायत रह रही है आपके एफएम
0: हेलो,
1: से। हेलो, आपके एफएम रेडियो से एक शिकायत है सबकी बुद्धिजीवी प्रोग्राम में पांच पांच कॉलें हो जाती है, पैसे को नहीं फोन नहीं उठता।
0: सर, वो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। मैं आपको ये गाना सुनाती हूँ, ठीक है? तो चलिए श्रोताओं, इनकी रिक्वेस्ट पर गाना हम प्ले करते हैं और अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9837896896।

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है, ओ प्यारे बाबुल। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, समय की अगर मैं बात करूँ तो 9:20 हो चुके हैं, यानी कि आज देखिए अखिल जी आज थोड़े काम में व्यस्त हो गए हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब ऑफिस के कोई भी अगर काम में बिजी हो जाए तो और आरजे होते हैं आप सभी के रिक्वेस्ट फरमाइश को पूरा करने के लिए, तो आप बेधड़क बिंदास होइए और हमें कॉल करते रहिए 9823789689 पर। आई होप कि अभी बहुतों का यानी कि डिनर हो गया होगा, बहुत अभी सोच रहे होंगे कि अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ हमें ज़्यादा लेट तक डिनर नहीं करना चाहिए। बहुत आते हैं यानी कि ऑफिस से मतलब थोड़ा घूम उम के आएंगे 10 बजे तक घर, फिर वो 11-12 बजे तक खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, तो ये फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए मैक्सिमम कहा तो जाता है कि 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए अगर पर नहीं खा पाते, लेकिन अगर नहीं खा पाते अब तो 9, 9:30 बजे तक ज़रूर हमें रात का डिनर कर लेना चाहिए। फिलहाल चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हाँ जी, नमस्ते मैम
0: जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: जी। मैं बहुत ठीक, बढ़िया। मैं बरेली से आशु बात कर रहा हूँ जी।
0: हाँ जी आशु जी, बताइए कैसे हैं सब फैमिली में,
1: सब बढ़िया है। अब
0: क्या करते हैं आप?
1: जी मैं टीचिंग करता हूँ
0: ओके,
1: जी, बेबी
0: तो
1: सिक्स टीचिंग।
0: ओके, तो बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: मैं आज गाना सुनना चाहता हूँ, आतिफ असलम का है, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनू।
0: ठीक है जी, किसी के लिए सुनना चाहेंगे आप ये या फिर आप खुद के लिए?
1: जी, मेरे दिल के बहुत पास जो लोग हैं वो मुरादाबाद में हैं, मैं ये सॉन्ग जो है उन्हीं को डेडिकेट करना चाहूंगा। ओके
0: ओके ओके, तो आप
1: मैम जी,
0: नाम लेंगे या फिर उनको
1: नहीं, नाम नहीं लूंगा मैं, बट मैंने बोल दिया। हाँ
0: पता चल गया है?
1: वो जी, वो सुन चुके।
0: चलिए जी, चलिए फिर आपको ही हम गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी?
1: ओके ओके, थैंक
0: ओके
1: यू।
0: ओके वेलकम। तो चलिए श्रोताओं गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं, और आपसे भी यही कहना चाहेंगे सोने की तैयारी हो गई है तो सोने से पहले कॉल ज़रूर कर लीजिए और अच्छी नींद आएगी आपको।

0: subscribe now.
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 9:28 हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है, यानी कि आतिफ असलम जी की आवाज़ में, हिमेश समिया जी की आवाज़ में, दिल मेरी ना सुने, यानी कि सच में ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। और जब किसी से बे इंतहा प्यार हो जाता है तो दिल, खुद का दिल खुद की कहाँ सुनता है। पर इतना ही ज़रूरी है श्रोताओं, क्योंकि ये हर किसी को पता है कि एक अनजान इंसान से जब आप कनेक्ट होते हैं वो कैसे इतना प्यारा हो जाता है आपको भी नहीं पता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर लॉयल्टी है तो वही प्यार बे इंतहा होता है। चलिए बिना किसी देरी के अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
5: हेलो, नमस्कार मैम।
4: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
5: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान बात कर रहा हूँ।
4: हाँ जी सर, बताइए कैसे हैं आप?
5: मैम बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो?
4: बहुत बढ़िया। और बताइए सर, डिनर हो गया आपका?
5: जी मैम, खाना वाना खा लिया।
4: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, सोने की तैयारी चल रही है बस।
5: बस कार्यक्रम सुन रहे थे, नंबर ट्राई किया तो लग भी गया हमारा फोन।
4: ओके ओके, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
5: सॉन्ग है तेरी याद, वो
4: सुनना। तेरी याद?
5: हाँ, अदनान सामी की आवाज में।
4: ओके ओके ओके,
5: जी
4: जी ठीक है, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर?
5: जी
4: चलिए, तो चलिए श्रोताओं गाना सुनते हैं तेरी याद। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप कॉल करते रहिए, नंबर है 9837378 9387 8968 96 पर आप कॉल करके गाना सुन सकते हैं, अपना फेवरेट वाला गाना, ताकि आपको ना याद भी बहुत अच्छे, यानी कि आप सोएंगे ना तो आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो 9:35 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। तेरी याद आती है जब भी शाम होए कहीं, मतलब देखिए दिन में तो इंसान काम में बिजी रहता है, लेकिन जब वो शाम होती है ना, एक अलग ही एहसास, एक अलग ही मतलब याद आने लग जाती है। मतलब जो आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत मतलब कह सकते हैं कि दिल के जो करीब होते हैं, यानी कि शाम होते होते उनकी याद पता नहीं कहाँ से आने लग जाती है, कुछ भी नहीं पता लगता। लेकिन वो तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अकेले रहते हैं, तभी होता है। फिलहाल आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है, तो बिंदास रहिए और कॉल करते रहिए 9837896896 पर, और अपना फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं। एंड डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नाम मेंशन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको भी बताए कि 2 से ज़्यादा नाम मेंशन नहीं कर सकते हैं। फिलहाल चलिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और क्या उनकी फरमाइश है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैम, मैं ठीक हूँ। मैं गली नंबर 1 से आमिर खान बात कर रहा हूँ मैम।
0: अच्छा, गली नंबर 1 से हैं आप?
1: जी मैम।
0: तो फर्स्ट बेंचर या लास्ट बेंचर?
1: जी
0: मतलब मेरा कहने का मतलब ये है सर कि स्कूल में आप फर्स्ट बेंच पे बैठते थे या बैक बेंचर? चलो बहुत अच्छी बात है, गली नंबर भी फर्स्ट, बेंच नंबर भी फर्स्ट। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं ये बॉक्स बनाने की कंपनी है, यहीं रामपुर ड्राइव पे, वहाँ पर मैं काम करता
0: हूँ। ओके ओके, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, आज मैं तेरे नाम मूवी का सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। ये गाने के लिरिक्स हैं, तुमसे मिलना बातें करना बहुत
0: अच्छा लगता है। हिमेश रेशमिया की आवाज में है ये।
1: जी जी, और मैम आपका बोलने का अंदाज बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत क्यूट लगता है, आप बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो।
0: थैंक यू सो मच सर। तो किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी मैम, मैं अपनी फैमिली का ही नाम लेना चाहूंगा। सबसे बड़ी सिस्टर है हमारी हिना खान, उनसे छोटी है सबीना खान, और इसका सबसे छोटी जो है उनका अलीना खान था, और फादर नेम राशिद खान।
0: ओके ओके ओके, चलिए फिर आपको हम गाना सुनवाते हैं सभी के साथ, ठीक है?
1: ओके मैम।
0: ओके ओके, तो बहुत ही शानदार गाना है तेरे नाम, यानी कि जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना, हर कोई, हर लड़का, उसकी मांग भी बस तेरे नाम, तेरे नाम, मतलब ये ट्रेंड चल चुका था उस टाइम। जो भी अपने जुल्फे सवारता था ना, वो तेरे नाम करके जुल्फे सवारते थे। तो चलिए श्रोताओं, गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। अभी हमारे पास ना समय बहुत है, यानी कि 9:38 हुए हैं, तो आप बेधड़क रहिए, बिंदास रहिए और कॉल हमें करते रहिए। यानी कि ये गाना सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत, यानी कि म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करूँ तो हिमेश रेशमिया जी है, सिंगर है उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत ये गाना।

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। फिलहाल तो हमें आपसे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है जब आप कॉल करते हैं श्रोताओं और अपनी फरमाइश के गाने बताते हैं। आरजे टीना आप सभी के साथ कनेक्ट है और समय की बात करूं तो 9:00 यानी कि 43 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 9:43 हो चुके हैं। और आइए बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: आजी मोहम्मद उस्मान साजी बोल रहा की जारत के टीचर से, मोहम्मद उस्मान सा गुप्ता, और एक ऐसा गाना सुनना चाहते हैं दिल की आरजू थी के कोई दिल रुबा मिले।
0: चलिए जी,
1: रू तो लीजिए, खत है मुझ गरीब का जवाब तो दीजिए, चांदनी चांद से ये सितारों से नहीं मोहब्बत
0: हाँ मोहब्बत से एक से की जाती है, हजारों से नहीं की जाती है जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो चलिए सर, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: शुक्रिया साहब, पूरा गाना सुनवा देंगे तो अच्छा लगेगा सर।
0: अरे आप कहे तो मैं दोबारा चला के सुना दूं।
1: शुक्रिया सर।
0: चलिए जी, मैं आपको गाना सुनवाती हूँ, ठीक है?
1: मेहरबानी।
0: चलिए जी, चलिए। क्या बात है भैया, मौका ही नहीं देते बोलने का अगले इंसान को। नहीं भैया, सब कुछ हम बोल देंगे, आप बस परेशान मत होइए। क्या बात है, मतलब अलग ही तेवर है इनका तो। अरे क्या बात है, मजा आ जाता है ना बात करके। तो श्रोताओं देखिए, 9:45 हो चुके हैं और गाना भी बहुत ही लाजवाब, यानी कि ये मूवी रिलीज हुई थी 1982 में। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
4: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
4: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
3: से संपर्क कीजिए।
4: नियम और शर्तें लागू।

0: गए बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, यानी कि कुमार शानू की आवाज में, आशा भोसले जी की आवाज में, और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट। भैया समय की बात करूं तो 9:53 यानी कि 53 मिनट हो चुकी हैं। सो आइए अपने लास्ट लकी कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं
1: जी? हम तो बहुत अच्छे हैं, और आप बताइए, आपकी फैमिली में और स्टूडियो में सब ठीक है?
0: हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त हैं। क्या नाम है आपका
1: जी? हमारा नाम जितिन राजपूत, गुमतानी से बोल रहे हैं।
0: ओके जी, खाना हो गया आपका सर?
1: हाँ मैम, खाना तो हो गया, और आपका हो गया?
0: नहीं नहीं, अब मैं अभी मैं जाके पेट पूजा करूंगी सर। सर खाना खाना यानी कि पेट पूजा करना। तो बताइए कौन से गाना सुनेंगे आप?
1: जी गाने के बोला, बदल गई है दुनिया, बदल गया है जवाना, बदल गया है वो मेरा दोस्त पुराना।
0: हाँ, इसलिए कहते हैं खुद को बदलिए, दूसरों को नहीं बदलिए।
1: क्या करें, खुद ही बदलते जा रहे हैं तो क्या करें।
0: हाँ हाँ, तो किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? लास्ट कॉलर बने हैं आप, बताइए कैसा लग रहा है आपको?
1: जी बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत खुशी हो रही है। हाँ नाम लेना चाहूंगा मैं, मेरे दोस्त हैं वरुण भाई, अरुण भाई, पंकज भाई, चरण भाई।
0: ओके ओके ओके, इन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: ठीक है,
0: चलिए जी, गुड नाइट। भैया बहुतों को तो नींद आ रही होगी, है ना? मुझे भी आ रही है, क्योंकि मैं 10 बजे तक मतलब सो जाती हूँ, बट आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा चलो यार शो कर लेते, आप सभी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज मेरा फिक्स टाइम है 10 बजे, सो जाओ। फंक्शन में हो तो अलग बात है, और घर पे हो तो फिर देखो ज़्यादा लेट तक हमें जागना भी नहीं चाहिए, यानी कि भरपूर मात्रा में नींद लेनी चाहिए, ठीक है? और हमारी मुलाकात होगी कल शाम, यानी कि शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इवनिंग मस्ती शो में। अभी के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, गुड वाली गुड नाइट है जी।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

अज समझे

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: गोला चतुर
1: एक पैर है ना, या गोला बोलना या चतुर बोलना।
2: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली

0: पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।